5:30 और 15 सेकेंड। मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जहां पर नई सुबह उम्मीद की रोशनी और जिंदगी की नई उम्मीद लेकर आती है। और भोर सुहानी में बात हम आने वाले वक्त की, आने वाले मुश्किलात की, उसे किस तरीके से डटकर मुकाबला करें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसकी बातें करते हैं। दोस्तों कहते हैं जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरों को दूर कर देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच जीवन को रोशन कर देती है। मायूसी चाहे कितनी भी गहरी हो, हौसलों की एक किरण, हौसले की एक शमा नई राह दिखा देती है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में विश्वास की जीवन ज्योति को जरूर जलाएं और मुस्कुरा कर नए दिन का इस्तकबाल करें, क्योंकि ये नया दिन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हर गहरी अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है, एक रोशन सुबह जरूर होती है जो हमारे जिंदगी में उजाला लेकर आती है। इसीलिए कहते हैं मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर भोर हमें ये याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है।

जीवन ज्योत जले। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोर सुहानी में। हर नई सुबह हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ते जाने का। और आगे वही बढ़ता है जो सकारात्मक सोच लेकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मुश्किलात हर शख्स के जीवन में बार बार आती हैं, लेकिन वही कामयाब होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो बस चलना जानता है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपनों का साथ देते हुए, अपनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। अगर दिल में उम्मीद हो और होठों पर मुस्कान हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है और रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। बीती हुई बातों को रुखसत कीजिए, पीछे छोड़िए और आज की सुबह का इस्तकबाल पूरे हौसले और यकीन के साथ कीजिए, क्योंकि जो इंसान जिंदगी का गीत गुनगुनाता है उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ता, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। गाते हुए गुनगुनाते हुए उसकी राह में खुशियाँ खुद ब खुद दस्तक देने लगती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोफेसर प्यारेलाल, फिल्म से किशोर कुमार साहब और मनहर उदास साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर स्वागत है आपका भोर सुहानी में। नई सुबह की यह सुनहरी रोशनी हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है सीखने का, आगे बढ़ने का और मुस्कुराने का। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता में अपने मन की शांति न खोइए। जब सोच सकारात्मक हो, अच्छी हो और दिल में यकीन हो तो हर चुनौती एक नई सीख बन जाती है।

ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे फिल्म सन्यासी से। आवाज है मुकेश साहब और लता जी की। तो आइए इस नई भोर के इस नई सुबह में हम भी एक अहद करें, एक इरादा करें कि हर दिन अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ाएंगे कदम अपना और हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई 2026। सुबह के 5:53:30 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:57 और 21 सेकेंड। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़े कि हमारे साथ आगे आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुरति जिंदल। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री राम चरित्र मानस का गान, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 123। 6:55 का समय होगा संस्कृत में समाचारों का और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. Mr. Modi will lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha Temple, revered as maternal aunt's abode of Lord Jagannath. The yatra, which starts from the Puri Temple, will end at the Sri Gundicha Temple, covering a distance of nearly 3 kilometers. Multi-layer security arrangements have been put in place to ensure the smooth conduct of the festival. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that Prime Minister Modi had always believed that even a common man should be able to fly. The state's aviation policy has been built on this very idea. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels yesterday. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in US to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. In men's cricket, second one-day international of three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in first ODI at Edgbaston in Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं भक्तिमय अंदाज में एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। जय श्री राम।

जय श्री राम। इंसान के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों में जो अनुभव और सीख मिलती है, जानते हैं, वो सीख दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परेशानियों से डटकर लड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही परेशानियां अनुभव और सीख देकर जाती हैं।

कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, मेरे यानी सुरति के साथ, और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और भजन की ओर।

जिंदगी में एक ही नियम रखना चाहिए, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे ना वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे।

अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ अब वक्त हो गया है श्रीराम चरितमानस का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर श्रीराम चरितमानस का अगला भाग।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर

राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है, देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ठीक 6:55 पर सुनना न भूलिएगा संस्कृत में समाचार, 7 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 7:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना न भूलिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। लेकिन अभी वक्त हो गया है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढीकरणाय 570,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, समुदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मन्त्रिमण्डल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमिकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मन्त्रिमण्डलेन 565,000 करोड़ रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत

0: मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर विश्वासम व्यक्तवान यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार सन्धि निष्पक्षम न्यायसंगतम संतुलितंच निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयो सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी

भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी सुरेती के साथ। वक्त हो गया आप सभी ये अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को इस प्यारी सी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हर सुबह अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती है और रात भर हम इंतजार करते हैं सुबह के होने का। जानते हैं हर नई सुबह बस एक ही बात सिखाती है कि इंतजार की घड़ियां चाहे जितनी भी लंबी हों एक दिन उजाला जरूर आता है। और इंतजार जो है

अलावा सिर्फ एक ठहराव नहीं है बल्कि ये उस खूबसूरत पल का नाम है जो आने वाले कल को और भी प्यारा बना देता है। तो इसलिए अगर आपको भी किसी पल का, किसी खुशी का या किसी बदलाव का इंतजार है तो वो एक नई सुबह के साथ जरूर होगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह की शुरुआत हम बहुत तरह से करते हैं। काफी सारे लोग हैं सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, व्यायाम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज से हटकर, योगा से हटकर बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए काफी सारे प्रयास हम करते हैं खुद को एनर्जेटिक।

बनाए रखने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करते, तो वो ऐसा क्या करें कि चेहरे की जो रंगत है वो निखरे, चेहरे पर ग्लो आए सुबह उठने के बाद। कहते हैं ना कि अगर हम सुबह कुछ अच्छा कर लेंगे तो पूरा दिन बेहतरीन बना रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सोकर उठने के बाद सबसे पहले पानी पीना। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इससे शरीर के सारे विषाक्त पदार्थ यानी कि सभी तरह की गंदगी बाहर निकलती है और त्वचा में अंदर से नमी आती है जो कि चेहरे की रौनक को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा सुबह उठिए, उठने के बाद अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से ना धोएं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे, तो इसे सामान्य पानी या फिर ठंडे पानी से आप धो सकते हैं, जिससे कि चेहरा जो है एकदम बेहतरीन चमकता रहे। कई सारे लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए आइस क्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक हल्के से कपड़े में लपेटकर 5 मिनट के लिए अगर आप चेहरे पर लगाएं तो उससे भी फायदा होता है। इसके अलावा हमारा खान पीन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह के नाश्ते में वाइटामिन सी यानी कि नींबू, संतरा, पपीता ले सकते हैं। ये त्वचा को जो है सूरज की किरणों से बचाता है और रंगत भी निखारता है। साथ ही साथ अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक है और उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचता, तो बादाम और अखरोट ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से फायदा होगा ही। और बेसिक क्लीनिंग रूटीन यानी कि चेहरे को क्लीन करें, सीरम लगाएं, मॉइस्चराइज करें और सनस्क्रीन लगाएं, ये ही आपके लिए बेस्ट रूटीन है अगर आप घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कई लोग घर से बाहर निकलकर वर्क करते हैं, तो ऐसे में अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए ये छोटे छोटे बेसिक टिप्स हैं जो सुबह की शुरुआत के साथ यदि किए जाए तो पूरे दिन भर में हमारी स्किन को हेल्दी भी रखेंगे और धीरे धीरे धीरे आप अपनी स्किन में ये सब करने से सुधार भी देखेंगे।

और इसी के साथ अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो भाई आज का मौसम जो है खुला खुला खिला खिला रहने वाला है, यानी कि खिली खिली धूप का आप आनंद लेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल बेहतरीन गानों का आनंद लेते रहिए FM गोल्ड पर।

0: गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। ठीक 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली में करूंगी आपके साथ ढेर सारी बातें। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नास।
1: नमस्कार, आई एम शगुन चोपड़ा।
0: जी बिल्कुल, कहते हैं सुबह की बेहतरीन शुरुआत आपके पूरे दिन की ऊर्जा और मूड को तय करती है। सुबह सूरज की रोशनी और उम्मीदों से भरी हुई होती है, इसीलिए अपनी सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचें और आने वाले पल को जाने ना दें। तो क्यों ना सुबह की शुरुआत किशोर कुमार के इस प्यारे से गीत से करें।

0: बिल्कुल, आने वाले पल के लिए अपना आज खराब ना करें, हमेशा अच्छा सोचें।
1: जी, पल तो जाने वाले होते हैं, सो वी शुड एंजॉय द मोमेंट। एंड वेल, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑल लिसनर्स एज वी वेलकम अ ब्रांड न्यू डे फिल्ड विद फ्रेश पॉसिबिलिटीज। दिस सॉन्ग ऑल्सो सजेस्ट दैट रिन्यूड एनर्जी एंड द स्टोरीज दैट मैटर। सो एज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन लाइट अप इन द मॉर्निंग एंड द सिटी बिगिंस टू कम अलाइव, वी आर हियर टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, inspired and ready for the day ahead. So over the next 30 minutes roughly, we'll bring you the top headlines from India and around the world, followed by Metro City updates covering various things, traffic, transport, weather and everything that you need to start your morning smoothly. We'll also take a look at today in history, remembering remarkable personalities who were born on this day and paying tribute to those whose lives and legacies continue to inspire us. So whether you're enjoying your first cup of coffee or tea, heading to work, or simply easing into the day, thank you for making Aaj Savere a part of your morning.
0: जी बिल्कुल शकुन, सुबह के 7:32:44 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जहां पर हम मुख्य समाचारों के अलावा महानगरों की खबरों का भी जिक्र करेंगे और इसके अलावा मौसम का हाल जानेंगे कि राजधानी दिल्ली में जो उमस है उससे कब राहत मिलेगी हम
1: लोगों।
0: जी बिल्कुल, और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी हम याद करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है शगुन, रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC वेबसाइट का एक नया वर्जन जारी किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग टिकट जब बुक करवाते हैं तो उसमें इतने सारे एड आ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो ये टाइम बचत करने के लिए IRCTC ने इस वर्जन में चार बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या भी कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर सकते हैं जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध रहेगा। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का भी अनुरोध किया है, तो आप जो है एक बार यूज करके देखिए और अपना फीडबैक जो है वो आप रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर दे सकते हैं।
1: Well, yes, it'll make a lot of difference. So listeners, now this next update that we have for you, it's about world famous Rath Yatra. Well, Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri, this Jagannath Yatra in Odisha. So during the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath has his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha temple, revered as the maternal aunts abode of Lord Jagannath.
0: जी बिल्कुल शंगुन, काफी लंबे अरसे से श्रद्धालु जो हैं वो इंतजार कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का, जो आज से शुरू हो चुकी है और दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भगवान और भक्त के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक भी ये माना जाता है।
1: So lakhs of devotees from across the country and abroad have converged to witness the divine procession, well, of the Holy Trinity. And our correspondent has more details on this. So let's listen in to this report.
2: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. With the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri, an ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to their respective chariots. The ceremonial Chhera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Dev atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhwaja and Devi Dalana before devotees begin pulling them along the grand road amid reverberating chants of Jai Jagannath. Elaborate security, crowd management and emergency response arrangements have been put in place even as authorities remain on high alert in view of the prevailing inclement weather, and the Indian Meteorological Department issuing a red alert for Puri for this morning under the influence of a low pressure area over the Bay of Bengal. Prakash Das, Akashwani News, Puri.

0: और श्रोतापुरी के बाद अब सीधे चलते हैं झारखंड, जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा श्रद्धा के साथ पारंपरिक तरीके से निकाली जाएगी। रांची के ध्रुवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता महविश रहमान।
1: राजधानी रांची के ऐतिहासिक ध्रुवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। जिला प्रशासन ने पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: सो फरत, नाउ लेट्स हेड टू गुजरात।
0: जी,
2: सो द 149th रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कमेंस टुडे फ्रॉम द 400 इयर्स ओल्ड जगन्नाथ टेंपल इन जमलपुर एरिया ऑफ अहमदाबाद टेंपल इन ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद अमिड टाइट सिक्योरिटी। सो डेविटीज इन लार्ज नंबर्स, दे हैव थ्रोंग्ड द टेंपल प्रेमिसेस टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ द डेइटी। And we'll now find out more details from our correspondent now.
3: In Ahmedabad, the century-old tradition of annual Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated today with immense religious fervor and gaiety on the auspicious occasion of Ashar Shukla Dwitiya. Earlier this morning, Union Home Minister Amit Shah participated in the Mangala Aarti at a historic Jagannath temple and sought blessings of the Almighty. Following this, Chief Minister Bhupendra Patel performed the symbolic Pahind Vidhi, cleansing of chariot route with a golden broom, and officially flagged off the procession. The majestic chariot of Lord Jagannath, Brother Balbhadra and Sister Subhadra are moving along the traditional 16-kilometer route, accompanied by dozens of akhadas, bhajan mandalis and vibrant folk dance troupes. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
0: और शगुन, आज राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। उनका कहना है कि बचपन से उन्हें श्री जगन्नाथ जी की अनेक प्रार्थनाएं और भजन याद हैं और हमेशा वो भजन गाकर ही महाप्रभु को अपने निकट पाते थे। और यहां तक कि भक्त कवि मधुसूदन राव का गीत भी उन्होंने हमसे साझा किया है। मेरे पास दिन रात रहते हैं महाप्रभु परमेश्वर, मेरे पास दिन रात रहते हैं महाप्रभु परमेश्वर, ये बात याद कर हृदय में पूंजूंगा उन्हें मैं निरंतर।
2: That's so great.
0: जी बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आस्था का जो दिन है वो हमेशा बना रहे।
2: And they have the time of their life.
0: जी,
2: so there is also something to like be happy about basically. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. And this state's aviation policy has been built on the very idea that Prime Minister Modi had always believed that even a common man should be able to fly. So that's why, the passenger should be happy about it. The citizens should be happy about it. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. So speaking on the occasion, Dr. Mohan Yadav, he said that Prime Minister Modi had always believed that a common man should be able to fly, and the state's aviation policy has been built on this very idea that a common man, a common citizen, should be able to fly.
0: और शगुन, आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश की एक और खबर हम साझा कर लेते हैं अपने श्रोताओं से। इंदौर में कल बलराम कृषि महोत्सव का आगाज हो गया है। प्रदेश में इस साल को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में यह आयोजन हुआ है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर और खंडवा में आयोजित किया जाएगा।
2: First in men's cricket, second one-day international of 3-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today, and the match will begin at 5:30 p.m. Indian Standard Time. So earlier, India defeated hosts England by 6 wickets. This was the first ODI at Preston in Birmingham, and this happened on Tuesday to lead the series 1-0. So third ODI will be played at Lord's Cricket Ground in London on Sunday. This is about the third ODI.
0: और अब बात FIFA विश्व कप की। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे

सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। वहीं 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई।

0: और अब श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का। तो शगुन, सबसे पहले आपके पास चलते हैं, चेन्नई में जानते हैं क्या है खास।
1: So actually I'm going to begin with the Greater Chennai Corporation, which has extended the news about it, the update about it, which has extended its special property tax collection camps till 31st of July. So of the 14.23 lakh assessed property owners in the city, only 6.98 lakh have paid the tax so far. Around 7.25 lakh property owners, they are yet to clear their dues. The civic body's annual property tax collection is around 1800 crore rupees, and of this 96 crore rupees was collected during the special camps between 3rd and 15th of July. And there was an earthquake tremor of 3 magnitude which occurred at Krishnagiri in Tamil Nadu last evening, with mild tremors felt in parts of the adjoining areas of Karnataka. The quake, it occurred at 7:52 p.m. at a depth of 10 kilometers, with its epicenter located in Thenkanikottai, Hosur region near the Tamil Nadu-Karnataka border. And there were no immediate reports of any damage to property or injuries. This happened yesterday. Another update. The Vice Chancellor of Indian Maritime University, Dr. Malini V. Shankar, inaugurated the new IMU Startup Entrepreneurship Accelerator setup at its headquarters in Chennai yesterday. This initiative, it marks a significant milestone in strengthening India's maritime innovation as well as the startup ecosystem. And this newly established Maritime Innovation Hub has been envisioned as a dedicated platform to nurture maritime innovation, entrepreneurship and enterprise development among students, alumni, researchers and aspiring entrepreneurs. This was all that I had from Chennai.
0: जी शगुन, चेन्नई से सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का। जी, दिल्ली का लाल किला परिसर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। वहीं राजधानी दिल्ली के हौज खास में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने इसके लिए यातायात परामर्श भी जारी किया है। आज दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक, याद कर लीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुम चंद मार्ग और गौतम नगर रोड पर यातायात बाधित रहेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक सार्वजनिक यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है। ये पहल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के दैनिक यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें शहर के सबसे व्यस्त रास्तों पर सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान बिना किसी रुकावट के आरामदायक सफर की सुविधा मिल सकेगी।
1: सो फरद, नाउ लेट्स हेड टू बेंगलुरु। Karnataka secured investment commitments worth 2,821 crore rupees through 12 memoranda of understanding signed at BharatTex 2026. BharatTex, this was the event in New Delhi. The projects are expected to generate 11,020 jobs across the state's textile as well as the apparel sector. Karnataka was the only state to sign the MOUs at this event, BharatTex 2026. And these investments, let me tell you in brief, they cover spinning, apparel manufacturing, textile processing, technical and medical textiles, hygiene products and integrated textile parks across 9 districts. Another update from Bengaluru. So the Election Commission of India has extended the schedule for the special intensive revision of electoral rolls in Karnataka by nearly 2 weeks. And under this revised schedule, booth level officers will complete house to house visits by August 8, while the draft electoral rolls will be published on August 17. The final electoral roll will now be published on October 19 instead of October 7. October 19 instead of October 7th. So Chief Electoral Officer V. Anbukumar said that over 95% of voters identified from the 2002 electoral roll, they have already been issued revision forms. Now let's head to Mumbai.
0: जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने कहा है कि राज्य सरकार

0: गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को नकली बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक व्यापक बीज नीति तैयार करेगी। मुंबई में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये नीति QR कोड पर आधारित होगी और इसमें बीज उत्पादन, परीक्षण और बिक्री में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री भराणे ने कहा कि ये नीति किसानों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी और सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो किसानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है।
1: True, Farhat. Now we'll focus our attention on Hyderabad. The Hyderabad Metro Rail Limited is set to upgrade its services and infrastructure across the existing 69-kilometer Phase 1 corridor. And chairing a high-level review meeting, the Hyderabad Metro Rail Limited Additional Managing Director, B. Ajit Reddy, directed officials to draft comprehensive plans focusing on passenger amenities, safety, cleanliness and crowd management. And to address the heavy passenger rush, the additional MD instructed officials to expedite talks with manufacturers for procuring additional coaches.
0: और शगुन कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आज रथ यात्रा के शुभ अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी आज दोपहर 12 बजे मध्य कोलकाता के अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हुगली में होने वाली 630 साल पुरानी और ऐतिहासिक महेश रथ यात्रा को भी हमेशा की तरह भव्यता और अपार उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और अब मौसम का रुख कर लेते हैं।
2: वेदर अपडेट्स।
0: yes. जी बिल्कुल, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही लोग परेशान हैं। बारिश होती है, उसके बाद दो दिन ऐसा आता है कि फिर गर्मी शुरू हो जाती है, तो वो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अब बर्दाश्त।
2: वी आर वेटिंग, वी वांट रिस्पाइट फ्रॉम दिस वेदर, राइट?
0: जी बिल्कुल, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दो दिन और उमस भरी गर्मी रहेगी और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये तो थे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल।
2: सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी 39 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is expected to have again generally cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have again generally cloudy sky with the possibility of light rain or drizzle. The temperature, minimum temperature was around 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees Celsius in Hyderabad. Farhat.
0: जी, मौसम के बाद अब इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। और आज बहुत ही खास दिन है जिसकी तैयारी हम लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं और इस पर कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है लोगों
2: Already.
0: को जागरूकता लाने के लिए।
2: सो टुडे एक्चुअली लेट्स ब्रेक द सीक्रेट, ब्रेक द न्यूज एक्चुअली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अप्रिसिएशन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टुडे। वेल दिस डे It, of course, it celebrates country's growing role in the global AI landscape, and from tech hubs like Bengaluru and Hyderabad to rural areas, artificial intelligence, it is transforming healthcare, education, agriculture, governance and industry in the country.
0: बिल्कुल, AI के क्षेत्र में भारत की तरक्की सालों की योजना और सहयोग का नतीजा है। सरकार के AI for all vision और AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मकसद AI का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि लोगों का जीवन और बेहतर बनाने, सबको साथ लेकर चलने और समान को बढ़ावा देने के लिए भी करना है।
2: True, Farhat, and India's AI journey began in 1960s with early computer science research. A major step came back in 1986 with the knowledge-based computer systems project. So in 1990s, organizations like CDAC, Advanced Supercomputing, and early AI work.
0: बिल्कुल शगुन, और आज भारत AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन रहा है। यहाँ का सॉफ्टवेयर टैलेंट और बड़े डेटा स्टेटस तक पहुँच चुका है। असरदार AI समाधान बनाने में मदद करते हैं। भारत की अलग अलग जरूरतें AI की असल दुनिया में टेस्टिंग के लिए भी मौके देती है। खेती की बात हो या फिर हेल्थ केयर से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल की, पब्लिक सर्विसेज, सब जगह AI मौजूद है.
2: सो टू सपोर्ट दिस ग्रोथ द गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक द स्किल इंडिया AI पोर्टल, नेशनल AI स्किलिंग प्रोग्राम एंड AI यूथ बूट कैंप. सो दीज इनिशिएटिव्स ऑफर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स टू स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स.
0: जी, और एक बहुत ही अच्छी खबर, सरकार फंडिंग प्रोग्राम और ऐसे नए सेंटर्स के जरिए AI रिसर्च में भी निवेश कर रही है जो शिक्षा और इंडस्ट्री को जोड़ते हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनर

0: वह इशूड बाय स्टॉकहोम बैंको इन स्वीडन।
1: 16 जुलाई 1790 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने रेजिडेंस एक्ट पारित कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया। वहीं 1856 में सामाजिक सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सतत प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक को भारतीय विधान परिषद ने पारित किया, जिससे हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस विधेयक को 26 जुलाई 1856 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली और ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बन गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भारतीय समाज सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
0: In 1929, the Indian Council of Agricultural Research was established. In 1935, the world's first parking meters were installed in Oklahoma City.
1: और 1969 में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को लेकर अपोलो 11 मिशन का प्रक्षेपण फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया।
0: In 1990, यूक्रेन अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट सॉवरेंटी, अ मेजर स्टेप टुवर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन।
1: और अब श्रोताओं, आइए याद करते हैं हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरुणा आसिफ अली की। 16 जुलाई 1909 को पंजाब के एक ब्राह्मण परिवार में अरुणा का जन्म हुआ और इनका पूरा नाम था अरुणा गांगुली।
0: वेल यस, अरुणा आसिफ अली, प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, द एजुकेटर, शी प्लेड अ की रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे, इन मुंबई।
1: जी बिल्कुल शगुन। और अरुणा आसिफ अली के योगदान के लिए उन्हें 1975 में लेनिन शांति पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी मिला। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसिफ अली का निधन हो गया और निधन के बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
0: सो यस, हियर्स टू द मैन, द टोर्नेडो ऑफ इंडियन हॉकी, धनराज पिल्ले। वेल, ही रीडिफाइंड द स्पोर्ट विद हिज लाइटनिंग स्पीड एंड अनमैच्ड स्किल्स। Well, the retired field hockey player and former captain of the Indian national team. Today it's his birthday. He's the member of the ad hoc committee of Indian Hockey Federation formed after the suspension of somebody, Kanwar Pal Singh Gill. As a player, he's regarded as one of India's best ever. He's the one only player to have played in 4 Olympics as well, 4 World Cups and 4 Champions Trophies. Well, we have a dialogue, especially a monologue we can say, where he tells us about his inspiring journey.
2: Discipline, dedication and determination. Every athlete should have these 3 things. I was not in India when Rajiv Gandhi Khel Ratna Award announced. I was playing in Germany. I was the luckiest person. I was the happiest to see that my mother was going to Delhi and receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. I am the only player in this country, played for 15 years on AstroTurf and received whatever I dreamed. If you want to achieve all that, you need to dream also. Without dream or without hard work, you will not reach there where you want. Till the last breath or till the last minute of the whistle, I used to fight. Anything can happen. So don't give up, because till last minute or last 10 second also, table can change.
1: और श्रोताओ, आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक, जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर के। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वो रेडियो में लेकर आए, सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर, सब उन्होंने जो है।
0: So, Jagdish Chandra Mathur initiated several projects of significance and he came into fame actually by his first play Konark. His other famous works include Shardiya, Dasrath Nandan, Bhor Ka Tara as well. Today we are remembering T.R. Sundaram as well, producer, director and studio founder. Well, one of the pioneers who gave South Indian cinema an industrial foundation. As the founder of modern theatres in Salem, he produced and directed films across several languages, and his studio created opportunities for technicians, performers and filmmakers while helping regional cinema develop a professional production system.
1: और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की उम्दा एक्ट्रेस, जिन्होंने थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन तीनों जगह अपने किरदारों से लोगों के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़ी। और सुरेखा ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म किस्सा कुर्सी का, लेकिन वो सबसे ज्यादा कहीं फेमस हुई तो वो था दादी सा से। तो आइए सुन लेते हैं उनका ये डायलॉग।
3: अरे को अपने माँ बाप उनकी इज्जत के आगे कुछ न देख रहे ना आनंदी, तो ठीक है अभी इसी वक्त बच्चे घर छोड़ के अपने

0: बापू के घर जा रहा
1: हूँ। और इस सीरियल में इन्होंने दादी से किरदार में जान फूंक दी थी और इस शो ने उनके करियर को नई दिशा दी। ये शो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ।
2: That is true, Farah. Listeners, today we are also remembering the historian Barunde. Today it's his death anniversary. He served as founder director of the Center for Studies in Social Sciences in Kolkata. And he was chairman of the West Bengal Heritage Commission as well. So he, as this holder of this scholarship, he taught students of the college. In addition to his academic work, he was secretary, treasurer and president of the Oxford India Majlis.
1: और श्रोताओं, आज भारतीय फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ का भी जन्मदिन है। इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया के साथ बॉलीवुड में सफलता अर्जित की। भाषाई बाधा को पार करने के लिए इन्होंने हिंदी और उर्दू के विशेष कोच भी नियुक्त किए और फिल्मों में अपना लोहा मनवाया। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: Well, she is also a beauty with brain. She always surprises viewers with her deep understanding of human nature, deep humor. और श्रोताओं, अगर आप आज राजधानी दिल्ली में हैं तो आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाना ना भूलें। शाम 7 बजे से दस्टीन ऑडिटोरियम में नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा शाम 3 बजे से लेक्चर रूम में एआई के लिए बौद्ध दृष्टिकोण पर पुस्तक चर्चा आयोजित होगी।
1: तो आज एंड विजिट
0: जी बिल्कुल, आज का दिन आपका बन गया। तो इसके साथ ही शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत, और आप हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।
1: थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में

0: सिक्स पिलर्स है। पिलर वन है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का

0: अगर उमड़ पड़ा है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडिचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

0: के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43 kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River.

0: नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मजकूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
0: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर

0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेरे असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ चक्कानैन लीला चलवारे।
3: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
2: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरैन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन

0: इनिंग्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज़ हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुलअमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में 2 नौमुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूं मैं सुरति। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आज से शुरू हो रही है जो कि 9 दिन तक चलेगी। भाई आज का दिन बेहद खास है, बहुत लोगों की जिंदगी में आज के दिन काफी सारे बदलाव आने वाले हैं और कईयों के तो आज जन्मदिन भी है। तो ऐसे में इस खास दिन का आनंद लेते हुए बहुत ही प्यारे से गाने के साथ म्यूजिकल दिल लगी की करते हैं प्यारी सी शुरुआत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अगर आप भी ट्रेन से सफर करने से पहले टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। इसमें नो पॉपअप, कम कैप्चा और एक ही जगह सभी क्लास की टिकट सीटें, ये देखने से आपको इजीली बुकिंग करने का मौका मिलेगा। यहां तक कि आप यहां पर तत्काल और आम टिकट बुकिंग भी देख सकते हैं, ये भी आप

अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बेस्ट इसमें क्या हुआ है या क्या नया हुआ है, तो आपने देखा होगा, आप नोटिस करते होंगे कि जब हम टिकट बुक करते हैं तो बार बार कैप्चा आता है, जिस वजह से कई बार टिकट हाथ से निकल जाती है, मिस्टेक कर देते हैं अगर हम कैप्चा भरने में। तो अब ऐसे में इस नए वर्जन में इस परेशानी को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। इससे हटकर कई बार पुरानी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर कई तरह के विज्ञापन, पॉपअप और चमकती हुई चीजें हमारा ध्यान भटकाती थी, तो अब ये आपको टिकट बुक करने के दौरान नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ तेज चेकआउट और आसान पेमेंट भी आपके लिए इस वेबसाइट में किया गया है, यानी कि ऐसे स्टेप्स जिनके जरिए आप बहुत ही फास्ट पेमेंट कर सकें वो इस वेबसाइट में डाला गया है। और हाँ, बार बार आपको जानकारी अब नहीं भरनी पड़ेगी, इस नई वेबसाइट में आपकी जानकारी जो है वो सेव हो जाएगी और आपको दोबारा जो है उसे नहीं भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। और अगर हम बात करें इस नए बीटा वेबसाइट की, तो आप इसे सीधा www.irctc.co.in/e-ticket पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मौजूदा आईआरसीटीसी की वेबसाइट है उसके होम पेज पर भी आपको इस नए बीटा वर्जन का लिंक मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव अगर होते रहें तो यात्रियों की काफी सारी परेशानियां जो है समाप्त हो जाएंगी, और हमारे फीडबैक के जरिए, यानी कि आने वाले टाइम पे जो यात्री हैं जो भी फीडबैक देते हैं उसके बेसिस पर इसको ये वेबसाइट को और ज्यादा अपडेट करेंगे ताकि हमारे लिए ये बेहतरीन तरीके से वर्क कर सके। फिलहाल बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से गाने की ओर, और ये प्यारा सा गाना है धर्मात्मा फिल्म से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली का ये सफर यूं ही जारी रहेगा नीतू के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। इसमें पहला, फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीज नहीं होंगी। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम की गई है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। इससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है। IRCTC की वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रथों में बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिन तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की ब्रसेल्स में आयोजित पहली बैठक में संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे जोरदार धमाके के बाद ईरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने अगले 2-3 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज लू चलने का अनुमान है। दिल्ली में दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गर्म और उमस भरे मौसम रहने का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एजिस्टन में पहले 1 दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometer between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the other project is related to the development of around 43 kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
2: वरुणा नदी के किनारे किनारे
3: द प्रोजेक्ट इज अ फुली एलिवेटेड 6-lane एंड 4-lane कॉरिडोर अलोंग द वरुणा रिवर। इट विल हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 43 किलोमीटर्स विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,998 करोड़ रुपीस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 4 years। द फुली एलिवेटेड 6-lane कॉरिडोर रनिंग अलोंगसाइड द गंगा रिवर, इट विल स्पैन 46 किलोमीटर्स एंड इज एस्टिमेटेड टू बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 14,448 करोड़ रुपीस।
2: 448 crore rupees.
1: Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made 4 major improvements in this new beta version. First, it does not have unnecessary captures, pop-ups, flashing graphics or other distracting elements. Second, passengers can view seat availability across all classes. Third, it offers a faster checkout process, significantly reducing the number of steps required to book tickets. And fourth, the website will now save passengers' details, making repeat bookings easier. The website can be accessed at www.irctc.co.in. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till 80th Independence Day celebrations on 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every day ahead of Independence Day every year. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha Temple, revered as the maternal aunt's abode of Lord Jagannath. Lakhs of devotees from across the country and abroad have converged to witness the divine procession of the Holy Trinity. In Jharkhand, the annual Rath Yatra is being celebrated across the state today with traditional fervour and devotion. The 149th Rath Yatra of Lord Jagannath also commenced today in Gujarat from 400-year-old Jagannath Temple in the Jamalpur area of Ahmedabad amid tight security. United States has said that it has launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in US to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. In men's cricket, second one-day international of three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और ये है म्यूजिकल दिल लगी। और आज से शुरू हो रही है जगन्नाथपुरी में अद्भुत रथ यात्रा। जब रथ यात्रा का समय आता है ना, तो पुरी की गलियों में सिर्फ भीड़ नहीं होती, एक अनोखी प्रतीक्षा उतर आती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर की सीमाएं छोड़कर स्वयं भक्तों के बीच आते हैं और जैसे ही विशाल रथ आगे बढ़ता है, हजारों हाथ उसकी रस्सियों को थामते हैं, तो मानो आस्था जो है ना, एक साझा स्पंदन बन जाती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि उस भाव का उत्सव है जहां ईश्वर और भक्त के बीच की दूरी क्षण भर में मिट जाती है। आस्था, परंपरा और जन समूह की अद्भुत ऊर्जा का जीवंत संगम है ये। इसी यात्रा को अद्भुत, अद्वितीय और भावपूर्ण बनाते हैं जब स्वयं प्रभु अपने भक्तों के बीच आकर दर्शन देते हैं। तो ये विशाल रथों को जो खींचने की परंपरा है ना, वो इसी विश्वास से जुड़ी है कि जो ईश्वर है ना, जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, वो स्वयं हमारे साथ हैं।

आज हम याद कर रहे हैं साहसी स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली को उनकी जयंती पर। गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ना जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दी थी और वो ऐसा करने वाली प्रमुख महिला थी। खास बात ये रही कि वो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आई बल्कि भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करती रही। आजादी के बाद भी वो सामाजिक राजनीतिक कार्यों से जुड़ी रही। उन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, उसके दौरान मुंबई के गोवलिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल लगी, जिसे आप सुन रहे हैं 100.5।

एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं, जो कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में सहूलियत मिलती है। ये योजना किसानों की आय सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इसी धरती पर लगते हैं बड़े बड़े पेड़ और गर्मी आती हैं तो बस आम की बहार आ जाती है। और जुलाई में ना जगह जगह मैंगो फेस्टिवल्स भी होते हैं। आखिर आम को पसंद करने वालों में आम और खास सभी शामिल हैं। आम खाकर गुठलियों को तो फेंक ही दिया जाता है, आमतौर पर हम सभी फेंक देते हैं, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छिलकों और गुठलियों से बटर और तेल बना दिया। बटर का प्रयोग खाने के अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जा सकता है। आम की गुठलियों से ऐसा हाइड्रोजेल भी बनाया गया जिसका उपयोग मिट्टी में नमी के संरक्षण, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने में भी किया जाएगा। तो देखिए, सपने देखना देखते रहना चाहिए, क्योंकि सपने देखते हैं तभी उनको हम असल में जमीनी लेवल पर ला पाते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी लेकर नीतू है आपके साथ और बात करते हैं जरा घूमने फिरने की, क्योंकि छुट्टियां भले ही बीत गई हैं लेकिन ट्रेंड्स पे ट्रेंड्स बन रहे हैं छुट्टियों के घूमने के। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, जगह तय करते हैं या फिर ये तय करते हैं कि आपको कैसा फील लेना है? आप फेमस जगहों पर जाएंगे तो भीड़ मिलेगी मिलेगी, इसीलिए अब ये देखा जा रहा है कि लोग अकेले रहने या शांति से कुछ दिन बिताने के मूड से जगह चुनते हैं। वैसे एक चलन और भी है जो कि अच्छा है, स्किप जनरेशन वेकेशन। ये दादा दादी नाना नानी नाते पोतियों की वेकेशन है, यानी कि पेरेंट्स को स्किप कर दिया गया है। यहाँ पर पेरेंट्स के पास इतना काम है, वैसे भी उन्हें वेकेशन पर जाने की फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन मिलकर छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह बुजुर्ग भी अकेला फील नहीं करते और बच्चे भी। लेकिन एक और ट्रेंड भी चल रहा है, स्कूल के दिनों में बच्चों को घुमाने का, यानी कि गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो तो पीक सीजन होता है, इसीलिए टिकट से लेकर होटल रूम्स तक सब महंगे होते हैं। और अपने ट्रैवल को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए पेरेंट्स जो है वो छुट्टियों के पहले या बाद में बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं। अच्छा तरीका है, अगर आप समय निकाल सकते हैं तो बजट फ्रेंडली छुट्टियां हो तो ना टेंशन भी कम होती है ना।

शहरों में जुगनू दिखना जरा मुश्किल है। शहर तो खुद रात भर जगमगाते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी ये तमन्ना रखते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश शायद जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर में नाइट वॉक की योजना बन रही है। जैसे ही ये योजना जो है वो अमल में आती है, आप रात के प्राणियों के संसार से रूबरू हो सकेंगे, जैसे कि जुगनू, उल्लू या दूसरे कीट पतंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि मेघालय में वैज्ञानिकों ने जुगनू की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम बहुत ही भारी भरकम है। जुगनू इतना सा होता है, पता नहीं इतना लंबा सा नाम क्यों रखा है, पाइगो लुसियोला मॉसिनराम। चलिए, नाम में क्या रखा है, गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं।

देखते रहते हैं क्योंकि मौसम है ही ऐसा, कभी भी अचानक कुछ भी हो रहा है आजकल। और जलवायु परिवर्तन जिस तरह से बढ़ रहा है ना, बुजुर्गों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जो कि आमतौर पर मौसम अचानक बदलाव होता है तो उनके शरीर पर उसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन सिर्फ शरीर पर ही नहीं, लोगों के मन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है। ज्यादा गर्मी हो, बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए या प्रदूषण बढ़ रहा हो तो लोग घर में बंद होकर रह जाते हैं। और उस तरह से उन्हें सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया ना आपका अकेलापन और ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन आम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप मिल नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। एक जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो नहीं होता। जो हमारे समाज का जो असर हमारे मन पर पड़ता है ना, जो असल में लोगों से मिलकर होता है, खासतौर पर जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो जो मजा मस्ती हम करते हैं वो उस वक्त नहीं होता है। तो ये जो अकेलापन है ये लोगों में बढ़ रहा है। तो इसका जो तरीका है वो यही कि कभी हफ्ते में एक बार, जब आपको लगे कि हाँ अब ये सही मौसम है, अब हम मिल सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए ताकि आपका अकेलापन भी दूर हो और उनका अकेलापन भी दूर हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसकी आसान प्रतिक्रिया पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए

0: पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. Our correspondent has filed this report.
2: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. With the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri, an ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt's abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to their respective chariots. The ceremonial Chhera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Dev atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhwaja and Devi Dalana before devotees begin pulling them along the grand road amid reverberating chants of Jai Jagannath. Prakash Das, Akashwani News, Puri.
1: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to people in India and abroad on the sacred occasion of Jagannath Rath Yatra. In a social media post, the President said that it is popular belief that during the grand procession, Mahaprabhu Sri Jagannath along with Chakraraj Sudarshan, elder brother Balbhadra and sister Subhadra comes out to meet the devotees. Mr. Radhakrishnan said that the sacred Rath Yatra reflects the values of faith, devotion, equality and collective harmony, bringing people together beyond all differences. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings to the people on the sacred occasion of Rath Yatra. In a social media post, Mr. Modi described the Rath Yatra as a radiant expression of India's timeless spiritual and cultural heritage. The Prime Minister prayed that Mahaprabhu Jagannath bless everyone with good health, happiness and prosperity. He also expressed the hope that the Lord would give strength to all in their endeavours and further deepen the spirit of togetherness in society. The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes. Under the revised rates, the export duty on diesel has been increased to 15.5 rupees per litre, while the duty on aviation turbine fuel exports has been raised to 14.5 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been reduced to 2.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from today. There is, however, no change in the existing excise duty.

0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। भारत, यूरोपीय संघ, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद सुरक्षा और रक्षा साझेदारी तथा गतिशीलता को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में शुरू। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर नए हमले शुरू किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेना ने कल ईरान पर दूसरा बड़ा हमला किया। इसका मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को समाप्त करना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान की पकड़ को कमजोर करने के लिए अमरीकी सैन्य अभियान को बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को प्रभावी कर दिया गया है। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य पर हमले किए हैं। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली टैंकर को रोक दिया है। अमरीका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू किए जाने के बाद ये पहला जहाज है जिसे रोका गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने दिसंबर 2024 से हिरासत में रखी गई एक अमरीकी महिला को रिहा कर दिया है और उन्होंने तेहरान के इस सद्भावनापूर्ण कदम की प्रशंसा की है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA सुरक्षा और रक्षा साझेदारी तथा गतिशीलता को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वाभाविक जुड़ाव है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित बताया, जो दोनों देशों के हर क्षेत्र के लिए लाभकारी समझौता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का

0: दृष्टिकोण नवाचार आधारित भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार विकास साझेदारी की ओर है। उन्होंने कहा कि ये बैठक इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक से भारतीय यूरोपीय संघ को चर्चाओं से बढ़कर क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने और विश्वसनीय एवं विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की ब्रसल्स में पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, यूरोपीय मामलों और विकास सहयोग मंत्री मैक्सिम प्रिवोत ने की। डॉ जयशंकर ने कहा कि यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव में बेल्जियम का विशेष स्थान है। श्री प्रिवोत ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में बेल्जियम के आर्थिक मिशन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की मजबूती और गतिशीलता को बढ़ाया है। सम्मेलन में डॉ जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद उपस्थित थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ आज से शुरू हो गई है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: और अब खेल समाचारों के साथ हैं फरहत नाज।
4: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। वहीं 90वें मिनट में लुचारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। भारत ने बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। उधर हंगरी के बुडापेस्ट में कल पोलियाक इमरे, वर्गा जानोस और कोजमा इस्तेवान मेमोरियल

0: कुश्ती टूर्नामेंट के पहले दिन भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक और 65 किलोग्राम भार वर्ग में विशाल काली रमना ने कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता के पहले दिन भारत के पदकों की संख्या 3 तक पहुंचा दी। भारत का अभियान आज भी जारी रहेगा। ये सत्र का चौथा और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग श्रृंखला का अंतिम टूर्नामेंट है।
1: अमरीकी मध्यस्थता में रोम में दो दिन तक चली वार्ता के बाद लेबनान और इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। यहां इजरायली सेनाएं पीछे हटेंगी और नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंप देंगी। अमरीकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। विदेश विभाग ने कहा है कि वार्ता सार्थक रही और दोनों पक्ष पायलट जोन प्रक्रिया की संरचना और दिशा निर्देशों पर सहमत हुए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और लागू किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। भारत, यूरोपीय संघ, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद सुरक्षा और रक्षा साझेदारी तथा गतिशीलता को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में शुरू। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. US launches new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. India, European Union Trade and Technology Council advances cooperation across security and defense partnership and mobility framework. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today in Puri, Odisha. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The United States has said that it has launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. We have a report.
3: U.S. President Donald Trump is weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. Air defenses were activated in Tehran and residents were awoken by a loud explosion. It came after Iran claimed it has struck U.S. military targets in the region, including in Bahrain and Kuwait. On the other hand, U.S. military said it has disabled an empty oil tanker sailing toward Kerg Island, an economic lifeline for Iran. It marks the first vessel disabled since the U.S. naval blockade went back into effect. Meanwhile, Iranian Foreign Ministry spokesperson said Tehran has no plans for negotiations with the US. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels yesterday. He said that India and the EU have a natural affinity.
4: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. India and Belgium have agreed to deepen

दिल का मेल बॉक्स लेकर नीतू हाजिर है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो पहला गाना आ रहा है, ये है सुशील पठानिया, चंदा पठानिया, अंजलि सचिन की फरमाइश पर। आप भी अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो fmgold@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, और अगर फरमाइश पूरी नहीं भी होती है तो भी क्या है, गाने तो सुनने हैं ना। आप अपनी पसंद के गाने सुने तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी सुने तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ सॉन्ग सुनने को मिल

गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और इंसान हैं इसीलिए गलतियां कर लेते हैं। एआई से भी गलती हो जाती है, फिर हम तो इंसान हैं। जब मशीन गलती कर सकती है तो इंसान भी तो गलती कर सकता है ना। तो माफ कर देना चाहिए जब कभी कोई आपसे माफी मांगे तो। लेकिन अगले गाने की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो गाना सुनना चाहा है सुनील गायकवाड़, अनन्या और राजवीर ने। और ये जो गाना है फिल्म है जिगरी दोस्त, उस फिल्म से है ये गाना। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल भले ही खो गया हो लेकिन आपका मैसेज नहीं खोया है। ये गाना जो हीर रांझा फिल्म से था, इसे सुनना चाहा था अफरोज शेख ने और मुझे लगता है आपने सुन ही लिया होगा। दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जिसे सुनना चाहा है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशाने। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना।

प्यार को भी नापते हैं आकाश के तारों से, जर्रों से, लेकिन प्यार को नापने की क्या जरूरत है? अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसमें छोटा बड़ा, कम ज्यादा, ये थोड़ी ना कुछ होता है। प्यार तो प्यार है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नहीं, चलिए, इस प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने जा रहा है, तो आखिरी गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी की पसंद का। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। बैराग फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाज में। नीतू को इजाजत दीजिए, आज आपका और मेरा साथ यहीं तक है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में देश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा आज से उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा,

पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड फॉर द डे. इन दिल्ली द मेट डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट फॉर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस विद पार्टली क्लाउडी स्काई ड्यूरिंग द डे. Heat wave conditions are also expected at isolated places over Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. Two-time Olympic medalist PV Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yu of China in straight games and stormed into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. Sindhu registered a commanding 21-16, 21-14 win over Chinese shuttler in their second round contest. And in FIFA World Cup football, defending champions Argentina advanced to the final after defeating England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA last night. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. And that is the end of this news bulletin.
1: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Chitra Puri in Odisha, for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majitia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
2: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko Mahaprabhu Jagannath Ji ke Dham, Odisha ke Pavan Kshetra पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखाल सुने के विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में. आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले.
3: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ. आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक यहां उपस्थित हैं. मंदिर प्रशासन की जो कार्यालय है उसके छत पर हमें इस बूथ में हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने तीन सुसज्जित रथों पर ठाकुरों के हम दर्शन करेंगे और सामने मेरे श्री मंदिर है. श्री मंदिर की शिखर पर नील चक्र है, नील चक्र से बंधा हुआ पतिता पावन ध्वज है और यह समूचा दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन लग रहा है. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्रोताओं को, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अभी तक जो मंदिर की अंदर की जो नीतियां थी भगवान के पूजा की, उन्हें सुबह जगाकर उन्हें रात के वस्त्र को उतारकर नए वस्त्रों से सजाकर उनकी जो दिनचर्या होती है वो सारी नीतियां समापन होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक रथों पर उन्हें लाया जा रहा है. सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन महाराज, उन्हें रथों पर लाया जाता है. जैसे कोई बहुत ही गणमान्य व्यक्ति किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उनके सुरक्षा अधिकारी वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और संतुष्ट होने के बाद वो खबर भेजते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है. उसके बाद वो गणमान्य व्यक्ति वहां पधारते हैं. ठीक उसी प्रकार सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सुरक्षा अधिकारी हैं. सबसे पहले उन्हें सेवक लोग अपने दोनों हाथों से उचक कर आगे पीछे झूला झुलाते हुए लाते हैं और तीन रथों में बीच का जो रथ है देवी सुभद्रा जी का रथ, जिसे देवदलन या दर्पदलन कहा जाता है, काले और लाल वस्त्र से आच्छादित बहुत ही सुंदर कारुकार्य है, बहुत ही सुदृश्य है, उस रथ पर उन्हें विराजमान किया जाता है सुदर्शन महाराज को. उसके बाद आते हैं बड़े भाई दाऊ जी बलभद्र जी. बलभद्र जी उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को पकड़कर पीछे रेशम की डोरी से बांधकर सेवक लोग उन्हें झुलाते झुला झुलाते रथ पर विराजमान करवाते हैं. ये दोनों

0: अभी उपस्थित हो चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है श्री मंदिर के भीतर से ठाकुरों को बाहर बड़दांड पर लाना और रथों पर विराजमान कराना, इस प्रक्रिया को यहाँ की जो श्री मंदिर की जो भाषा है उसे पहंडी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहंडी शब्द जो है वो संस्कृत के पदहुंडन शब्द से आया है। पदहुंडन मतलब एक एक कदम। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री बलभद्र जी को, माता सुभद्रा को उस पहंडी प्रक्रिया में लाना जाता है। देवी सुभद्रा, उनके हाथ पांव नहीं है तो उन्हें सेवक लोग अपने कंधों पर उचक कर लाते हैं, जिसे शून्य पहंडी कहा जाता है। वो सेवकों के कंधे पर सोते हुए आसमान की तरफ अपना मुंह करके उन्हें लाया जाता है और बीच वाले रथ में उन्हें विराजमान करवाया जाता है। पहले सुदर्शन महाराज, फिर बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। बलभद्र जी का रथ जो है वो लाल और हरे रंग के वस्त्र से आच्छादित है, उसका नाम है तालध्वज। और अब सभी बहुत ही आतुर होकर देख रहे हैं कब अपने इष्ट देव जगत के नाथ, कल्याणकारी भगवान श्री जगन्नाथ पधारेंगे। जैसी कि हमें सूचना मिली है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की पहंडी शुरू हो चुकी है। घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ सभी भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, धुआंधार बारिश को नजरअंदाज करके सभी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बड़दांड में। ये बहुत ही रोचक दृश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे, रत्न सिंहासन को त्याग कर रथ पर बने काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होंगे, दोनों हाथ फैलाए अपने जो भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को वो आलिंगन करने के लिए आतुर होंगे और भक्त एक नजर उन्हें देखने के लिए तरसता होगा। ये बहुत ही अद्भुत जो समारोह है रथ यात्रा का। ऐसी स्थिति में मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही पुरानी कहावत है, डोले तू डोलो गोविंद रथेचु, डोले चु डोलो गोविंद चापे तू सुधा ना रथे तू वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न लभ्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दोल पूर्णिमा जो होली का समय है, तब भगवान को दोल वेदी पर, दोल मंडप पर, स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप पर, और जो नौका विहार करते हैं वहां भगवान जगन्नाथ जी को, रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पर मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पा लेता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा, अंग्रेजी में वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जय जगन्नाथ।
1: थैंक यू मजीथिया जी। माय ब्रदर कमेंटेटर, आई एम रजनीकांत नायक, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हु जगन्नाथ और जगतर नाथ जगन्नाथ, मीनिंग ही इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स एंड द Emperor of the whole world. I am wishing you, brothers and sisters of mine, a benign good morning. Even the fact is, the climatic conditions here in Puri this morning has been rather sodden because it has been raining almost intermittently since last evening. But despite that, the interest or the enthusiasm of the thousands and the lakhs and millions of devotees who have assembled here in the Grand Avenue of Puri, literally from all over the world. And I don't know what is the exact count of the devotees, but every year it is customary for us by now to expect around 10 to 15 crores sorry 10 to 15 lakhs of devotees who come, as I said, from all over India and also from foreign countries, because Lord Jagannatha is a very popular

0: Is proud of our ancestry, and we have a very honorable pride in our Lord or in the cult of Jagannatha, which is inextricably mixed with Odia pride, and this rolls on unabated even today, because every Odia, as I know, is prepared to swear by the name of the Lord Jagannath. And for each of them, it can be said that Ashada is the month when the clouds rumble in the sky. In fact, they have been rumbling a bit more since yesterday, and it is predicted that there will be rains for the coming 2 days also. And with this, and promising you to speak more, I am handing over the mic to my fellow commentator, Sri Mohan Majithia ji, to continue with the commentary with Hindi.
1: Dhanyavad, Professor Naik. Varshbhar Mahaprabhu Sri Jagannath ji Sri Mandir ke bhitar Ratna Singhasan par virajman hote hain aur bhakton ko apne isht dev ke darshan hetu mandir ke bhitar jana hota hai. Bas यही एक ऐसा दिन है जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं. इसीलिए रथ यात्रा में शामिल होने की इच्छा लेकर देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी आ पहुंचते हैं. वैसे तो भारत के कई छोटे बड़े शहरों में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित मंदिर हैं और उन शहरों में रथ यात्रा का आयोजन भी होता है, परंतु चार धामों में श्रेष्ठ ये श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि पुरी शहर, यहाँ की जो रथ यात्रा है ये देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपनी ओर. कोई भी भक्त एक ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता जहाँ उसे अपने इष्ट देव के अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन उसके सामने बड़दांड पर मिल जाएं. बड़दांड यानी कि श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का करीब 3 मील का सीधा रास्ता, जिस रास्ते तीनों रथ यहां से खींचे जाएंगे एक के बाद एक. सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाएगा, फिर देवी सुभद्रा जी का, और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े आराम से बड़े भाई को और बहन को आगे भेजकर फिर बाद में अंत में वो आएंगे. वो अपने मन के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं. जब रथ खींचे जाएंगे तब करीब करीब 3 बजे 3:30 बजे का समय जो है उस समय खींचे जाएंगे. अभी हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि बड़े भाई दाऊ जी महाराज वो अपने तालध्वज रथ पर विराजमान हो चुके हैं. माता सुभद्रा देवदलन रथ पर विराजमान हो चुकी हैं और उनके रथ में सुरक्षा अधिकारी के रूप में चक्रराज सुदर्शन भी मौजूद हैं. इंतजार है तो बस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का. किसी को चकानयन के दर्शन की इच्छा होती है तो किसी को रथ खींचने की लालसा, और अगर रथ खींच न सके तो रथ की पवित्र रस्सी को छू भर लेने से जो आत्मसंतोष मिलता है उसी से ही भक्त प्रसन्न हो जाता है. भक्त और भगवान के मिलन का ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है. महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाते हैं. बड़े बड़े चक्राकार नयन जिसकी पलक नहीं पड़ती, प्रभु जी के ऐसे रूप को देखकर भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का लहर उठने लगते हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छंद याद आ रहा है. बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी. अर्थात निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कई प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुख के जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं, और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं. ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना स्वाभाविक

0: it is called his birthplace because it was Lady Gundicha, the consort of the mythical king Indradumna, to whom goes the credit of having made the gods from out of the log of wood which was floating in the ocean. That is why he is called, I mean Lord Jagannatha is called Daru Devata. All the lords are Daru Devatas here. And since Indradumna is the king who literally made it possible for Jagannatha to come in his present avatar. In fact, when we talk of the avatars, there are four yugas which are talked about. In the Satya Yuga, there was Nrsimha or Vishnu. While in the Treta, there was Lord Sri Rama. In the Dwapara, it was Lord Sri Krishna. While in the Kali, it is Lord Jagannatha. So as I was telling you, my dear sisters and brothers, the occasion turns unbelievably poetic. For everyone here does strongly believe that to every desperate call from the below, through the parched lands, the mute hills and dales, for mercy, suffering as everyone does from a torturous summer sun, the benign skies seem to open up on this pious day when the Asada clouds rumble and masses of heavy clouds come tossing and tumbling, pouring down divine benediction, as it were, in torrents of rain. In fact, we have been having sufficient rain since last evening, as I told you, and Lord Jagannatha comes cascading from his Niladri or the Blue Mountain to the lowliest of the lowly among us, because he is supposed to be in his Patita Pavana avatar. Patita Pavana means he is a savior of the lowliest of the lowly, savior of the fallen. And he proves once for all that God is not exclusive or remote, but he is accessible to human prayers, to the riches of man. In fact, that Godhead being accessible to humans is also the subject of matter of great classics like Prologue of Chaucer, the Iliad of Homer, the Odyssey of Homer, or even our very own Ramayana and Mahabharata. With this, I pass on the mic to my fellow commentator, Majithia ji, to continue the commentary in Hindi. Majithia ji.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. जैसा कि मैंने अभी श्रोताओं को बताया कि पहंडी प्रक्रिया से बड़े भाई बलभद्र, देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी को इंतज़ार है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का. और ऐसा लग रहा है मंदिर के भीतर कुछ हलचल हो रही है. कदाचित जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन से नीचे उतर आए हैं. मेरे सामने रथों के आगे कई तरह के भक्त अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो यहां से मैं देख पा रहा हूं. कुछ नृत्यांगनाएं ओडिशा की पारंपरिक नृत्य कला ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं. यही ओडिसी नृत्य वो जगन्नाथ जी को समर्पित करती हैं. कोई हनुमान जी का वेश धारण कर, कोई शिव जी का वेश धारण कर भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है. ये एक रस्सी से बना चक्र घुमा रहे हैं, जिसे बनाटी कहा जाता है. यहाँ की ये पारंपरिक कला है जिसको यहाँ ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं. इस प्रकार जो जिस भी कला में माहिर है, वो अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. अभी तक जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से बाहर आने की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है. बल्कि जो हमें लग रहा है, भक्तों में जो उत्साह लग रहा है, जय जगन्नाथ की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे. इतने में मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को

0: बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को सर पर एक सुंदर सा मुकुट नुमा टाहिया पहनाया जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे टाहिया कहते हैं। टाहिया वो एक बहुत ही सुंदर मुकुट है, बहुत ही पवित्र और पारंपरिक आभूषण होता है, जिसे रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ठाकुरों को पहनाया जाता है। मुख्य रूप से टाहिया सोल से बना होता है। सोल यानी एक प्रकार की प्राकृतिक घास जो बहुत ही हल्की और स्पंज जैसी मुलायम होती है। इसे छीलकर अंदर का सफेद और चमकदार गुदा निकाला जाता है और उस गुदे से सुंदर कलाकृतियां बनती हैं, जैसे कि सोल से बनी कमल की पंखुड़ियां, मोर के पंख के आकार की नक्काशी और सोल से ही बने कदंब के फूल टाहिया को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। ये इतनी नाजुक और बारीक कारीगरी होती है कि इसे बनाने में कई दिन और कई कारीगरों को काफी समय लगता है। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार टाहिया, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्री बीजे के दिन देवताओं को पहनाए जाते हैं। जब भगवान रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की ओर जाते हैं तब इसे बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनके सिर पर पहनाया जाता है, उन्हें सिर पर धारण कराया जाता है। लेकिन रथों तक आते आते उनके जो आतुर भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो टाहिया को खींचकर उससे एक टुकड़ा अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। भगवान भक्तों का ये जोश, ये उल्लास, ये उन्माद देकर स्वयं खुश होते हैं और ये कहते हैं कि चल आज तेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाए, ले जा मेरे टाहिया का एक अंश, उसे संभाल कर रख, तेरा मंगल हो। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान भक्त की इस मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ ही देर में लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे और अब आगे का हाल सुनाने के लिए प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से मैं अनुरोध करूंगा। रजनीकांत जी, जय श्री जगन्नाथ।
1: As I was telling you, this annual Jatra of the Lords entails mythology, history and folk belief of the rarest of rare cult, that is the cult of Jagannatha. In fact, there are so many books written on different rituals which are performed almost round the year in order to celebrate the different functions which are webbed round the worship of Lord Jagannatha, that it will not be possible to talk about all of them here at one go. But suffice it to say that the most adored and loved deity, that is Lord Jagannatha, happens to be a Lord whose inception itself is a triumph of human endeavor in its eternal search for redemption or fulfillment. And as my fellow commentator has been telling you, the Pahundi BJ, the process is on. The Lords come one by one. In fact, there are two types of Pahundis, Chhera Pahundi or Gothi Pahundi. Gothi Pahundi is said to be there when the Lord comes one after the other, while when they come back from their birthplace on the Bahuda journey, it is called Gothi Pahundi. So there are two types of Pahundis. Now the first phase of this Pahundi BJ is on, and Pahundi is not complete because the Lord of the Lords Jagannatha is yet to climb his car. Yes, and the other Pahundi I was telling you is Dhadi Pahundi. I'm sorry, I called it Gothi Pahundi. Gothi Pahundi is on the reverse journey, while Dhadi Pahundi happens when the Lords come from the sacred altar or the bejeweled altar to climb their respective cars. And this, the Lord Purushottama, or the Purushottama Khetra as it is known, is full of mythological, you know, antecedents. Goddess Lakshmi is supposed to have described it this way to Yamaraj. She says, I quote,

गाढ़े लाल या पीले रंग का होता है। इसका आकार त्रिकोणाकार होता है और इसके बीच श्वेत रंग से चंद्र और बिंदु उसमें बनाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर। मंदिर के शिखर पर से नील चक्र पर बंधा हुआ ये पतिता पावन ध्वज बहुत ही आकर्षण होता है। इसका प्रतिदिन संध्या समय पुराने ध्वज को नीचे उतारा जाता है और नया ध्वज बांधा जाता है। इस कार्य के लिए विशेष सेवक होते हैं जिन्हें गरुड़ सेवक कहा जाता है। ये गरुड़ सेवक यानी कि उनके इष्ट देव गरुड़ होते हैं। ये गरुड़ सेवक प्रतिदिन संध्या में नए ध्वज लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज बांधते हैं और जब मंदिर से शिखर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर की ओर पीठ करके नीचे उतरते हैं। ये परंपरा रही है, विशेष परंपरा नील चक्र पर बाना बांधने की और बांधकर उतरने की, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। 12वीं सदी में बना ये भगवान का मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। देश भर से विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें परंपरा अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, इसीलिए शायद रथ यात्रा का ये अवसर है। भगवान पहले मानवीय लीला के अंतर्गत बीमार होते हैं और 15 दिनों तक वो दर्शन नहीं देते हैं अपने भक्तों को, फिर स्वस्थ होकर जड़ी बूटी और विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि से उनकी चिकित्सा होती है, फिर भगवान स्वस्थ होकर नव यौवन का भेष लेते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ पर विराजमान होकर श्री गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है श्री मंदिर की जो सामान्य परंपरा। प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसा एक अलौकिक ये अवसर होता है जब वो अपने भगवान को अपने सामने देख पाते हैं। ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भक्त सालबेग का। भक्त सालबेग जिसकी समाधि इसी बड़दांड में श्री मंदिर से गुंडीचा जाते समय बीच में आती है। भक्त सालबेग वैसे यवन थे, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के हर प्रत्येक घर में आज भी उनके रचित उड़िया भजन गाए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। जैसा कि एक भजन है, आहे नीलो सवेलो प्रबल मत्त बारण मुआर त नलिनी बन कु कर दलन। एक कवि ने हिंदी में इसका अलग भावांतर किया, ऊपर नीला अंबर है नीचे सागर नीला, नील शैल के नील माधव अनोखी तेरी लीला, अनोखी तेरी लीला। इस समय अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु आतुर होकर श्री मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार की ओर देख रहे हैं, कब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, उनके चक्राकार नयन देखकर मैं अपने आप को धन्य हो जाऊंगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, वरना फिर अगले वर्ष मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अगर मैं रथ की रस्सी को छू नहीं पाया, अगर रथ को खींच नहीं पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये श्रद्धालु अभी भी आतुर होकर जय जगन्नाथ हरी बोल की गूंज कर रहे हैं और हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में एक अद्भुत तरंग उन्माद है। सभी बड़े आतुर होकर सिंह द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान अभी तक नहीं आए। वो अभी बड़े अभी भी वो बुला रहे हैं कि भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आओ हमें दर्शन दो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो और अभी तक हम इंतजार में हैं। आप सभी भी इंतजार में रहिए। अभी तक की जो यहाँ हमारे समक्ष जो घटा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब दूसरे चरण में दोपहर 3:10 में मैं फिर से आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथी कमेंटेटर

0: प्रोफेसर रजनीकांत नायक और मैं मोहन मजीठिया आपसे विदाई लेते हैं और आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को ले जाते हैं। चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। श्री जगन्नाथ जी की इसी रथ यात्रा के दूसरे भाग का आंखों देखाल हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 3:10 से।
2: यू आर लिसनिंग टू द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बींग सेलिब्रेटेड एट पावन क्षेत्र पुरी ओडिशा। Our commentators were Shri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English. The second phase of the live commentary of Shri Jagannath Rath Yatra will be broadcast from 3:10 PM onwards. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.

सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। तो स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कल्पना का प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम पूछने वाले हैं आपसे एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपके लिए ये है कि आपने अपने हाथों से कोई पौधा कब लगाया था और वो पौधा कौन सा था। तो आपके जो जवाब है उनकी हमें प्रतीक्षा है। आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर अपने उत्तर, और हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, वो है fmgoldga@gmail.com। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भेज दीजिए और तब तक सुनिए आप ये मीठा मीठा सा गीत प्यार किए जा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, आप पुकारते हो और हम घर आंगन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाते हैं। और आज मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको देना है। आज का प्रश्न मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कौन सा पौधा आपने अपने हाथों से लगाया था और वो किस चीज़ का पौधा था। तो ये आपको लिख भेजना है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर यानी जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक नगर भ्रमण करते हैं। ये रथ यात्रा भगवान के भक्तों के बीच स्वयं आने का प्रतीक है। साथ ही यह उत्सव प्रेम, समानता, सेवा और लोक कल्याण का संदेश देती है। और कहते हैं कि जन सेवा में भी ईश्वर की सेवा होती है। तो आइए हम भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लें, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। और यदि आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर नई दिल्ली में 16 जुलाई से 27 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 12 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। और भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे स्वरूप हैं और उनका एक स्वरूप है श्याम का। तो आइए हम भी श्याम रंग में रंग जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत येसुदास की आवाज़ में अपने पराये फिल्म से।

दोस्तों, और देख रही हूँ कि हमारे बहुत से श्रोता जुड़े हैं और हमें ईमेल भी भेज रहे हैं। उनके ईमेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देनी है कि भाई देखो, एक बात है कि हर दिन है खूबसूरत, हर दिन नया फसाना, वाकिफ रहे ज़माना, ये हमने मन में ठाना। इसलिए सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई आज क्या खास है। आज है जयंती भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता अरुणा आसफ अली की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका तथा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। उनके जनहित संबंधी कार्यों और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके लिए ये शेर कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही आज है एक और जयंती हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में आकाशवाणी नाम का आधिकारिक नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था। महानिदेशक के पद पर रहते हुए देश की सभी भाषाओं और कला साहित्य की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को उन्होंने मंच दिया और हिंदी भाषा के विकास पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर भी हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म से सुन रहे हैं।

और दोस्तों देखिए, बहुत सारे हमारे पास ईमेल आ गए हैं। हमने अपने श्रोताओं से आज प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था, तो हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है ईमेल। तो पहला ईमेल है नवीन भाटिया का। नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि लास्ट 1 मंथ पहले उन्होंने गुलाब का पौधा लगाया था। अरे वाह, आप तो खुशबू बिखेरने का काम कर रहे हैं। और साबिर सिद्दीकी जी लिखते हैं कि मैंने जामुन का पेड़ लगाया था 1993 में और ये बहुत ही लाभदायक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इतना समय पहले लगाया था, अब और भी लगाइए। इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, एक पेड़ माँ के नाम, देश के नाम, तो और भी आप पेड़ लगाएं, हमारा तो यही कहना है। और चरणदास जी लिखते हैं कि हम खेती करते हैं, पूरा दिन पौधों का एक काम है। अपने पैसे से 8 साल पहले 700 पौधे लगाकर गाँव में बांट दिए तथा घर में खाली डिब्बे में पौधे तैयार करके गाँव में दे देते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बहुत बड़ी दौलत है। तो हमारा जो FM गोल्ड है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, और पेड़ तो हमारे लिए दौलत है ही। तो मैं पेड़ लगाता भी हूँ और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है चरणदास जी। और राधा शुक्ला का एक ईमेल है, वो कहती हैं कि बचपन में बड़ी सुंदर सी घास थी, उसे लगाया था और हमारे बड़े भैया ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। फिर हम बहुत गुस्सा हुए कि भैया खुद तो पेड़ लगाते हैं और हमारा उखाड़ के फेंक दिया। तो भई आपने घास का पेड़ लगाया था ना, कुछ ऐसा यूजफुल सा लगाती तो वो शायद नहीं फेंकते उखाड़ के। और बहुत टाइम हो गया बचपन के बाद, अब तो अगर आप बड़ी हो गई हैं तो फिर आप और भी वृक्ष लगाइए। तो ऐसे ही सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, ये भी हमारी नियमित श्रोता हैं। और इन्होंने भी कहा है कि भई उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और वो सुन रही हैं और वो ज़रूर पेड़ लगाएंगी। तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में। और अब आपके लिए एक जानकारी, क्योंकि मनोरंजन ही नहीं जानकारियों का खजाना भी है हमारा घर आंगन कार्यक्रम। तो अब हम समय समय पर अपने श्रोताओं को अनेक उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज जानकारी लेकर आई हूं दिल्ली लक्ष्मी योजना की। ये योजना दिल्ली सरकार की एक महिला कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से प्रस्तावित थी, जिसे बाद में दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया। योजना के लिए पात्रता मानदंड तय हो चुके हैं, जिनके अनुसार महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो और कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की वो निवासी हो। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी

जानकारी आपको इन सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी। दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद आपको सुनवाती हूँ ये प्यारा प्यारा सा गीत और दूसरा आदमी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

शहर का तब्दील होना, शाद रहना या उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी भारतीय महिलाएं वैसे तो स्वयं में संतुष्ट रहती हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें सबको साथ लेकर चलने की आदत होती है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं इस समाज से, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। महिलाएं समाज से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि समान सुरक्षा और समान अवसर की अपेक्षा रखती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बराबर अवसर मिले, उनके विचारों को सुना जाए, उनकी मेहनत की सराहना हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं तो मैं समझती हूं कि महिलाएं क्या चाहती है। हर महिला का सपना होता है कि वो बिना भय के अपने जीवन के निर्णय ले सके, अपने परिवार और समाज के विकास में बराबरी से योगदान दे सके और उसकी पहचान केवल रिश्तों से नहीं बल्कि उसकी योग्यता और व्यक्तित्व से भी हो। और इसी पर ये सटीक पंक्तियां याद आती हैं कि देवी नहीं मानो मुझे, नहीं भगवान मानो, नारी हूँ नारी का मान होना चाहिए, काहे थाम लेते बागडोर अपने हाथ में तुम, मेरा भी तो अपना स्वाभिमान होना चाहिए। अब जब समाज महिलाओं को सम्मान, विश्वास और अवसर देता है तो केवल एक महिला ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहाँ हर बेटी, बहन, माँ और महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके। तो सहयोगी बनिए, साथ दीजिए, तारीफ कीजिए।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे, ये सुन रहे थे अभिमान फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इससे पहले आपको जो गीत सुनाया था मैंने, आंखों में काजल है, ये दूसरा आदमी फिल्म से, इसे भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने गाया था। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल। हमने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा था कि भई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था अपने हाथों से, हमें लिखकर भेज दीजिए। तो भास्विता का मैसेज आया है हमारे पास, वो लिखती हैं, ईमेल आया इनका कि मेरी याद में पहला पेड़ मैंने शादी के बाद नाशपाती का लगाया था जिसमें अब मीठे फल आते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिठास बांट रही हैं। गौरी शंकर जी लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम। राम राम आपको। पौधों का शौक तो बचपन से ही रहा है, बाहर तो नहीं घर में जरूर लगाते हैं, जैसे तुलसी है, ग्वार पाठा है, गुलाब है, गेंदा है, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर में भी पौधे लगाने चाहिए। बहुत लोग पार्क में लगाते हैं लेकिन अपने घर में भी इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। भूमिका लिखती है, मैंने तो अपनी शादी के बाद तुलसी का पौधा लगाया है बस। मेरे पापा को पेड़ लगाने का बहुत शौक है, वो बहुत तरह के पौधे लगाए भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पौधे हम सबको लगाने चाहिए क्योंकि भाई पौधे हमारा जीवन है, हमारी जो प्राणवायु है हमें वहीं से प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे ईमेल्स के लिए आपका धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं की। हम महिलाएं कुछ भी बेकार नहीं जाने देती, कभी चावल बच गए तो फटाफट मौसमी सब्जियां मिलाकर फ्राइड राइस तैयार कर देती हैं, और कभी रोटी बची तो सब्जियां भरकर स्वादिष्ट रोल बना देती हैं। लेकिन क्या आपको

है कि बची हुई या पुरानी चूड़ियां मिल जाएं तो महिलाएं क्या करती हैं? मुझे पता है सब श्रोता जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला उपाय वो है वॉल हैंगिंग। चूड़ियों को रंगीन धागों, मोतियों और घंटियों से सजाकर आकर्षक दीवार सजावट तैयार की जा सकती है, या फिर चूड़ियों पर धागा लपेटकर पंख और मोती लगाकर सुंदर ड्रीम कैचर तैयार करें। इसके अलावा कैंडल होल्डर भी बनता है और चूड़ियों को एक के ऊपर एक चिपकाकर आकर्षक मोमबत्ती स्टैंड भी बनाया जा सकता है। पुराने फोटो फ्रेम पर चूड़ियां और छोटे मोती चिपकाकर नया लुक दे सकती हैं। घर में कोई पूजा या उत्सव हो तो चूड़ियों को रंगीन धागों और फूलों के साथ जोड़कर दरवाजे पर बंधनवार की तरह सजाया जा सकता है। साथ ही जो पौधों के गमले हैं ना घर पे, जैसे हम पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उनको इस तरह से आप डेकोरेट कर सकती हैं कि भाई उन पौधों के गमलों पर चूड़ियां चिपकाकर उन्हें नया और सुंदर रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही त्योहारों की जो सजावट की बात आती है, तो जैसे दीपावली हो गया, तीज, करवा चौथ या रक्षाबंधन जैसे जो अवसर होते हैं ना, इन पे कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, कुछ अलग तरह की सजावट करना चाहती हैं, तो चूड़ियों से आकर्षक सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। याद रखिए, पुरानी चीजें बिल्कुल बेकार नहीं होती, बस उन्हें नए नजरिए और थोड़ी सी रचनात्मकता की जरूरत होती है। और बात चूड़ियों की हो रही है तो आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा शेर कि हाथ मलवाती हैं हूरों को तुम्हारी चूड़ियां, प्यारी प्यारी है कलाई, प्यारी प्यारी चूड़ियां। हरे कांच की चूड़िया फिल्म से अब आपको एक मीठा सा गीत भी सुनवा देती हूँ इसी बात पे, जिसे गाया है आशा जी ने, यानी कि आशा भोंसले ने।

यूं लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, जिस पल मेरी उंगली थामे मेरा बेटा चलता है। और ये हर माँ का दायित्व भी होता है दोस्तों, जीवन के हर वय में यानी कि हर उम्र में बेटों को सही गलत बताएं। देखिए बेटियों की बात तो बहुत होती रहती है, लेकिन आज बेटों के लिए भी कुछ बेहद जरूरी सीखें हैं मेरे पिटारे में, जो उन्हें सिर्फ एक माँ समझा सकती है। पहली बात ये कि हर स्त्री का सम्मान करना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी, मित्र या कोई अनजान महिला हो।

सबसे भला और उचित व्यवहार करना, उनसे बात करते समय अपनी शब्दावली बेहद सोच समझ कर चुनना, गलती अगर हो जाए तो माफी मांग लेना। इसके अलावा बेटों को यह भी बताएं कि कभी भी बिना खटखटाए किसी महिला, भले वो मित्र ही क्यों ना हो, उसके कमरे में नहीं जाना है। उसके पर्स बिना अनुमति नहीं खोलें, अलमारियां और दराजों में भी ना जाके, कुछ जरूरत हो तो स्पष्ट बोलकर मांग लें। याद रखें, सही व्यवहार और बातचीत से हर महिला आपके साथ सहज महसूस करती है और आपसे कोई भी बात बताने में नहीं हिचकती। इसके अलावा माएं अपने बेटों को घर के काम करना भी सिखाएं, खाना बनाना, सफाई करना और अन्य जिम्मेदारियां निभाना। जरूरत पड़ने पर अपने घर की या बाहर की महिला की जो है वो हेल्प कर सके उनके कामों में, ताकि आपका जो बेटा है, अगर आप घर के काम सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन साथी बनेगा और अच्छी तरह से साथ दे पाएगा। साथ ही अपने बेटों को अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी सिखाएं। हम कहते हैं ना कि बच्चे रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि भाई रोना, दुख या डर बताना कोई कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य होने के आवश्यक गुण है और उन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्हें हर मानवीय भाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाएं। इसके साथ ही उन्हें समय की कीमत भी सिखाएं, रुपयों का उचित उपयोग भी सिखाएं, सच्चरित्रता सिखाएं, कृतज्ञता, स्वावलंबन और सहयोगी बने रहना भी सिखाएं। याद रखें कि एक माँ अपने बेटे को केवल चलना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन की राह पर सिर ऊंचा रखकर दूसरों का सम्मान करते हुए और अच्छे इंसान बनकर कैसे चलना है, क्योंकि हर बच्चे के व्यवहार में उसकी माँ परोक्ष रूप से शामिल होती है। माँ ही वो कलम होती है जो बच्चे के कोरे कागज जैसे मन पर अच्छी अच्छी बातें लिखती है। और इसी बात पे आपके लिए प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

और दोस्तों घनांगन कार्यक्रम में हम आपको सैर कराते रहते हैं पूरी दुनिया भर की, लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो दिल्ली में भी घूमने का एक बहुत अच्छा अवसर है।

जा सकते हैं राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय दिल्ली में। यूं तो हमेशा एक पारंपरिक हस्तशिल्प का बाजार वहां पे लगा रहता है, लेकिन 10 जुलाई से 19 जुलाई तक इस बार एक खास बाजार लगा हुआ है जिसका नाम है इंडी हाट। ये ऐसा हस्तशिल्प बाजार है जहां देश भर के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियां, टिकाऊ वस्तुएं और अनूठी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और शिल्प कला का सुंदर संगम है जहां आगंतुकों को खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो यदि आप मन बना रहे हैं यहाँ जाने का तो जानकारी नोट कर लीजिए कि ये बाजार 10 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक लगा रहेगा, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी और भैरव मार्ग प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रवेश जो है वो निःशुल्क है। यहाँ देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियां, लाइव क्राफ्ट डेमो, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लोक नृत्य और लोक धुन पर आधारित गीत भी देखने सुनने को मिल जाएंगे। और आइए फिर जब लोकगीतों की बात हो रही है तो आपको एक लोक धुन वाले प्यारा सा गीत सुना देती हूँ अपना देश फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

और दोस्तों देखिए, हमारे पास एक और ईमेल आ गया है। हमारे श्रोता हैं नवीन कुमार जी, वो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तब दादाजी ने कहा था, बेटा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना। उसी दिन हमने आम का एक छोटा सा पौधा लगाया, रोज उसे पानी देते, उसकी देखभाल करते और मन ही मन सोचते कि ये कब बड़ा होगा। और सुदर्शन मुखी जी का भी एक ईमेल आया है, उन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में राम और श्याम तुलसी के पौधे लगाए हैं। आपका दिन और जीवन बहुत मंगलमय हो। आपका दिन भी और आपका जीवन भी बहुत मंगलमय हो।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से, जिसे रफ़ी साहब और आशा भोसले गा रही हैं। उनकी आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे हैं। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो सखी को अनुमति दीजिए, कल्पना का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी गोल्ड पर। 1:11:07 हुए हैं इस वक्त। कलाकार बेमिसाल भारतीय सिनेमा के जाने माने पार्श्व गायक जिनका जिक्र होगा आज, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए एक ऐसे गायक जिनकी मखमली आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। गजल हो या गीत, फिल्मी हो या नॉन फिल्मी, सभी तरह की गायकी से उन्होंने लोगों का मन जीता। बात कर रहे हैं गायक भूपेंद्र सिंह की। मौसम फिल्म का गीत याद है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, आज भी प्रासंगिक लगता है ये गीत। उनका स्टाइल, उनका तरीका और आवाज का जादू जिसने लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह की गायकी की सत्ता को कायम रखा। महान गायक भूपेंद्र सिंह के बारे में बहुत सी बातें साझा होंगी आज आपके साथ। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जाने माने गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह। पंजाब के अमृतसर में 6 फरवरी 1940 को जन्म हुआ भूपेंद्र सिंह का। इनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह भी एक अच्छे संगीतकार थे। जाहिर सी बात है, खून में ही रहा इनके संगीत। गाने और गिटार बजाने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिलती रही अपने पिता से, और उनकी आवाज का जादू ज्यादा समय तक लोगों से दूर नहीं रह पाया। उनके सुरीले सफर का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। सबसे पहले उनकी गजलें आकाशवाणी में सुनी गईं, और इसके बाद दिल्ली दूरदर्शन में भी उन्हें अवसर मिला गायकी का। 1968 में संगीतकार मदन मोहन ने किसी कार्यक्रम में उनकी आवाज सुनकर उन्हें मुंबई बुला लिया। मदन मोहन साहब उनकी आवाज और उनके अंदाज से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी अगली फिल्म में मौका देने का ठान लिया। आगे भी बातें जारी रहेंगी, सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह से जुड़ी बहुत सारी बातें जो अभी हैं हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा

0: 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर इस वक्त हम तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं जाने माने गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह की। गायन और गिटार बजाने में माहिर भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी मिताली सिंह की जोड़ी ने फिल्म संगीत और गजलों की दुनिया में खूब धूम मचाए। गुलमोहर, शबनम, अर्ज किया है, दूरियां, तेरा प्यार, चांद परोसा है जैसी म्यूजिकल एल्बम्स के अलावा फिल्मों में भी उनकी आवाज का जादू किसी से छिपा नहीं। मिताली सिंह से भूपेंद्र जी की मुलाकात एक संगीत समारोह में हुई थी। भूपेंद्र सिंह जी को मिताली जी की गायकी ने काफी प्रभावित किया। संगीत समारोह की ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1980 में दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए।
3: दीवाना,
4: एक दीवाना शहर में,
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की आवाज हर किसी को प्रभावित कर जाती है। यूं तो उनकी आवाज की तारीफ में संगीत जगत के दिग्गजों ने काफी कुछ कहा है, लेकिन दिग्गज लेखक और फिल्मकार गुलजार साहब का अंदाज़े बयां ही कुछ और है। गुलजार खुद भूपेंद्र सिंह की आवाज के मुरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र की आवाज किसी पहाड़ी से टकराने के बाद बारिश की बूंदों की तरह है। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: आकाशवाणी गोल 100.1 और बातें हो रही हैं जाने माने गायक भूपेंद्र सिंह की। मौसम फिल्म के गीत दिल ढूंढता है से भूपेंद्र सिंह को काफी शोहरत मिली। इनका मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया गीत हो कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, और ये भी गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। और उनके लोकप्रिय नगमों की अगर बात करें तो इन गीतों का नाम लिया जा सकता है, दुनिया छूटे, यार न छूटे, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां, दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा, और भी अनेक हिट सॉन्ग्स हैं लिस्ट में उनके गाए हुए। तो चलिए सुन लेते हैं एक और बहुत ही शानदार गीत फिल्म सितारा से। आपको भी जरूर पसंद आएगा भूपेंद्र सिंह और

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह का जिक्र हो रहा है। इस वक्त सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। पत्नी मिताली सिंह के साथ उनके डुएट सॉन्ग्स भी काफी सुने जाते हैं। दो दीवाने शहर में, कभी किसी को मुकम्मल जहां, एक अकेला इस शहर में जैसे हिट सॉन्ग्स, फिल्म सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां, हकीकत और भी कई अन्य फिल्मों के यादगार गानों के लिए भूपेंद्र सिंह को याद किया जाता है।

गायक भूपेंद्र सिंह बॉलीवुड का वो चमकता सितारा रहे जिन्होंने अपनी गायकी से गीतों का एक अनमोल खजाना हमें सौंपा है। अपनी आवाज का दमदार जादू चलाते हुए उन्होंने अपने फैंस का खूब दिल जीता है। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने हमारी यादों में हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। उनकी अनमोल आवाज, उनकी पहचान हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज किया है कि वो पांचवीं या छठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान युई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाज़ियात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसला कुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की पांचवीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब डोभाल ने कहा कि दुनिया को तनाज़ियात और जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरतेहाल का सामना है और मुल्कों को सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के रुकन मुमालिक ने दहशतगर्दी, सरहद पार से किए जाने वाले मुनज्जम जराइम, साइबर खतरात और बहरी सलामती के चैलेंजों से निमटने में इश्तराक को खातिर खा मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिम्स्टेक मुमालिक नए और उभरते हुए खतरात से एक साथ मिलकर निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन में रखना समेत इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक रुकन मुमालिक के दरमियान करीबी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। जनाब डोभाल ने इस बात को भी उजागर किया कि बिम्स्टेक बुहेराए हिंद के इंतहाई अहम और फाल खित्तों को जोड़ती है, जिसकी मजमूई GDP तकरीबन 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार की कोशिश एक ऐसे भारत की तामीर की है जहां सरहदें न सिर्फ महफूज हों बल्कि इंतहाई मरबूत भी हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सरहदी सड़क तंजीम BRO टेक सिंपोजियम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस न हो कि वो असल धारे से अलग है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल और सेला टनल जैसे अहम प्रोजेक्ट BRO की सलाहियतों का मजहर हैं। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में BRO की सताइश की।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज CBSE निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत आलिया ने तजवीज किया है कि उसे पांचवीं या छठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज से जबानी तौर पर कहा है कि वो नवी जमात की सतह पर तीसरी जबान मुतारिफ न कराए। ये रायजनी मद्रास हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दरखास्त पर समाअत के दौरान की गई, जिसमें रियासत के हर जिले में जवाहर

0: मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संग मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे जो अब तक तैयार की गई हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्जन सिस्टम है जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये रेलगाड़ी जींद सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जेर जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत जर्मनी जापान चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो माहौल के लिए साजगार रेल खदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कान तलाश रहे हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बरामद से मुतालिक टैक्सों के अपने 15 रोजा हालिया जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शरहों के तहत डीजल पर बरामदाती महसूल बढ़ाकर 15.50 रूपये फी लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF बरामद पर ड्यूटी बढ़कर 14.50 रूपये फी लीटर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी कीमती है। जनाब वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक बेंच ने जोर देकर कहा कि जनाब वांगचुक की अदालत की हालत सरकारी डॉक्टरों से रोजाना चेक कराई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए, कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और जनाब वांगचुक की रोजाना तिब्बी जांच कराने पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक में 2 मर्तबा तमगा जीत चुकी भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान यूई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। PV सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जुग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज किया है कि वो 5वीं या 6वीं जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security.

0: आगे बढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।

0: वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित।
2: बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम किसान की बात हमारे श्रोताओं जब लगातार सुनते हैं, एक उत्साह रहता है, कोशिश रहती है हमारी भी कि नए नए विषय पर हमारे साथियों से हमारी बातचीत होती रहे।
1: बिल्कुल, और विषय ऐसे हों जिन पर पूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ अक्सर मौजूद रहते हैं हमारे एक्सपर्ट, जो विषय पर आपको लगभग हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, और कोशिश और प्रयास यही रहता है कि उस जानकारी से आपका लाभ ही लाभ हो।
2: बिल्कुल भाई, और किसान भाइयों ये भी आपको बता दें कि वो देश के वैज्ञानिक बेटे, विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और जिन्हें ये उपाधियां देते हैं, अनुसंधान का अवसर मिलता है, जो भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान कृषि का है, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ये बड़े ही गौरव का विषय है और रोम रोम रोमांचित होता है कि जहां से पढ़ के लिख के देश के वैज्ञानिक बेटे बनके उस अनुसंधान को हमारे खेत की क्यारियों तक पहुंचा देते हैं और उसी से प्राप्त होने वाली वो फसल जो हमारी थाली में पहुंचती है, रसोई में पहुंचती है, देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, हमें स्वास्थ्य देती है, इस स्वास्थ्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है, मैं कहूंगा हमारे देश के किसान भूमि पुत्रों के साथ मिलकर के इस देश के वो वैज्ञानिक बेटे जो वहां से निकल के आए, सभी को अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अमित, आज का जो हमारे कार्यक्रम है ये फोन इन कार्यक्रम है, सभी जानते हैं कि इस पर अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न जो विषय से जुड़ा हुआ हो, यानी कि आज का जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में और यहां से आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से।
2: बिल्कुल नीरा, और विषय भी ऐसे हों जैसा समय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आज मौसम चल रहा है हमारे कृषि में कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है इस बारिश के मौसम की। हम बहुत खुश होते हैं, खेत खलियान खिलखिलाते हैं कि भाई किसान के लिए बड़ा आनंददायक है, कहीं ना कहीं परिश्रम हम कहते हैं लेकिन किसान का परिश्रम बढ़ जाता है, रोग कीट खरपतवार ये भी सब आते हैं। और वहीं जो हमारे किसान भाई बहन आज आधुनिक तौर तरीके से कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, भाई उनका भी तो रखरखाव जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल जरूरी हो जाता है अमित, और साथ ही साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो समय रहता है कि जब अगर आपने जरा सी भी चूक की, जरा सी भी सावधानी हटी, तो जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो अभी वही समय है कि आप अपने जिन यंत्रों के उपयोग से आप कृषि के नए नए अनुसंधानों, और मैं कहती हूं कि बहुत सारी नई कृषि के हम आयामों को छू पा रहे हैं, वहां तक पहुंच पा रहे हैं, और खेती एक नए अंदाज में आप सभी के सामने आ रही है, तो उन उपकरणों का रख रखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
2: और उन्हीं कृषि यंत्रों के रखरखाव के विषय में उनकी सुरक्षा हम कैसे करें, कैसे उन पर ध्यान दें, इसी के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम काफी समय से यही कह रहे हैं कि उपकरणों का रखरखाव बेहद जो है महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि क्यों जरूरी है रखरखाव, और इस मौसम में क्या ऐसी खास बात है कि भाई वो जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है।
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, बारिश का हम बहुत इंतजार करते हैं, सभी फसलों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, धरती बहुत तपती है और जब बारिश आती है तो एक खुशी की लहर जुड़ जाती है, और फसलों के लिए तो बहुत ही मतलब आवश्यक है ये बारिश का होना। बट ये जैसे आपने बोला कि यंत्रों के लिए कुछ चुनौतियां हो जाती हैं कि मतलब उनका रखरखाव उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पानी पड़ रहा है हमें, और ज्यादातर जितने यंत्र हैं वो लोहे की धातु से बने हैं और ये सारे यंत्र मिट्टी और जैविक पदार्थों से जुड़े रहते हैं और इन सब के अंदर नमी को एब्जॉर्ब ये करते हैं, और जैसे ही नमी को सोखते हैं और लोहे की धातु के साथ लगे रहते हैं तो उसके अंदर जंग लगने का जो समस्या है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर हम देखें खाद के, मान लीजिए कि आप देखें कि कोई खाद का बक्सा है, अगर उसके अंदर खाद के कण रह गए तो वो फिर नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसी तरह से वो उस चादर को, जो लोहे की चादर है, उसको गला देंगे।
2: जी,
3: तो इससे क्या होगा कि जब आप अगले सीजन में इन यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी और उस समय हमारे पास समय किसान भाइयों को बहुत कम होता है, तो आप धन का की हानि होगी, समय की हानि होगी।

0: आपकी जो उत्पादकता है उसकी हानि होगी। तो इसलिए इनका रखरखाव बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो यंत्र हो चाहे ऊर्जा स्रोत हो। मान लीजिए ट्रैक्टर को ही हम लें, ट्रैक्टर आजकल चल रहा है, हम लोग पडलिंग करते हैं धान की बुआई के लिए, उसके साथ रोटावेटर को लगा लेते हैं और वो पानी में चलता है। तो उस समय हमें चाहिए कि जब हम उसको निकालते हैं काम करने के बाद, तो हमें उसको सुरक्षित तरीके से रखना है। हमें देखना है कि जितनी उसके ऊपर मिट्टी कीचड़ जो भी लगा है हम उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद हम उसको सुखा लें जितना संभव हो, और उसके बाद ही हम उनको रखें। तो उससे ये सारे यंत्र आपको लंबे समय तक अच्छी उत्पादकता देंगे।
1: जी, और साथ ही साथ हमें ये भी बता दें कि जो श्रोता नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको ये बता दें कि अगर आप वो जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम के साथ, तो उन्हें डायल करना होगा 2342-1081 और 83, और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करेंगे तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि कृषि यंत्रों का रखरखाव क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार हमारे किसान भाई ऐसे भी जानना चाहते हैं कि अगर इसके जो दुष्परिणाम हैं, कहीं अगर उसे हम आर्थिक स्तर से देखें, समय के स्तर से देखें, जैसे भी आपने बताया, तो कौन कौन से ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं कि जो फिर हमें भुगतने पड़ेंगे यदि हम ये कार्य नहीं करते तो।
0: बिल्कुल, अगर आपने उसका रखरखाव, देखिए आपने इतनी लागत लगाई है इन यंत्रों को खरीदने के लिए, ट्रैक्टर को खरीदने के लिए, जो भी आप मशीनरी खरीदते हैं उसके लिए आप बहुत लागत लगाते हैं, तो आपका ये रहता है कि ये अच्छी तरह चले और लंबे समय तक चले। तो उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा और अपना जो है एफर्ट डालना है कि हम उनका रख रखाव बहुत अच्छी तरह से करें। मैंने जैसे कहा कि ज्यादातर लोहे से बने हैं, या उनके अंदर केमिकल या सीड या जो भी बीज मिट्टी अगर उनके अंदर रहेगी तो वो आपको यंत्रों को खराब कर देगी। हमें क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी है। अगर आपने मान लीजिए हम थ्रेशर को ही लेते हैं, अभी आपने थ्रेशिंग करी, उसके अंदर कुछ अवशेष बच जाते हैं
2: जी,
0: तो आपको ये देखना है कि आप थ्रेशर को पूरी अच्छी तरह से साफ कर ले, चाहे हवा मार के करें, पानी मार के करें, उसके बाद उसको हमको सुखा के रखना है। ये ना हो कि उसके कॉन्केव के अंदर पानी पड़ा रह जाए, अगर वो वहां रह जाएगा उसकी ड्रमी के अंदर तो वो आगे जाके जंग का कारण बनेगा। हमें ये मतलब बिल्कुल एश्योर करना है कि वो एकदम सूख गया है, और जहां तक हो सके ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप उसके अंदर जंग रोधक पेंट का इस्तेमाल कर सकें और उसका एक पेंट कर दें उसके अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर आप एनामल वगैरह कर दें, तो उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे, सूखी जगह पे रखें क्योंकि आपकी लागत लगी, अगर हो सके तो शेड के नीचे, छत के नीचे रखें। अगर आप छत के नीचे नहीं रख सकते तो अच्छी तरपाल का प्रयोग करें कि आप तरपाल को ढक के रखें उसको, जिससे कि आप अगले सीजन में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने फिर बताया कि आप मरम्मत कराएंगे तो उस टाइम आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपका समय भी व्यर्थ होगा। मान लीजिए आपका सीजन निकल गया, आपने बिजाई करनी और सीजन निकल गया, तो उसके अंदर एक अलग तरह का आपको हानि होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इनका रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं बैटरी की खासतौर पर, है ना, तो उसके रखरखाव में क्या अधिक सावधानी?
0: हाँ, बैटरी आजकल काफी चीजें बैटरी से उपयोग में आ रही है। अगर आपने उसको लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करना तो आप कोशिश करें कि बैटरी को डिसकनेक्ट कर दें, उसके टर्मिनल पे ग्रीस या जेली लगा दें जिससे कि उसका डिस्चार्ज नहीं होगा। और बीच बीच में मैं ये भी कहूंगा कि उनको चार्ज करके रखें जिससे कि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बैटरी की लाइफ बनी रहेगी, और जब अगली बार आप उस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने स्प्रेयर के साथ कोई बैटरी लगी हुई है या किसी और उपकरण के साथ आपकी बैटरी लगी हुई है, तो वो अच्छी तरह से आपका कार्य में कार्य कर सकेंगे उससे आप।
1: जी
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हम देखते हैं कि मोस्टली जितने भी हमारे कृषि यंत्र हैं इनमें अधिकतर इनमें सभी में प्रयोग ट्रैक्टर का होता है।
0: हाँ
2: भाई, हैरो है, टिलर है, या हमारा जो है रोटावेटर है, या हमें अपना खेत का लेबलर करना है, तो हाँ। मतलब ट्रैक्टर ऐसा हो गया कि वो सभी के साथ में रहना ही रहना है। और सबसे ज्यादा समस्या भी अगर देखने में आए तो रखरखाव कहीं किसान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर का सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन अब हम केवल अगर ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में बहुत कुछ है। अब पंप है, रेडिएटर है, फिल्टर है, टायर है, इंजन है, बैटरी है, सबका। तो यदि हम थोड़ा बारीकी में जाएं कि लगे कि हमें कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, तो हमें कैसे उसका बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए? हाँ। कि मानो गलती कहीं है, गड़बड़ कहीं हो रही है, देख कुछ नहीं, इस पे विशेष प्रकाश डालिए।
0: हाँ, मतलब देखिए आप, मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं
2: जी।
0: मान लीजिए आपका डीजल का टैंक है, आप कोशिश करें कि बारिशों के दिनों में उसको पूरा भर के रखें, क्योंकि नमी रहेगी तो वो नमी पानी में परिवर्तित हो जाएगी और पानी आपके डीजल में मिल जाएगा, उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपके टायर आप देखते हैं, टायरों पे अगर बहुत मिट्टी चिपक गई है तो उसको आपको धो के रखना है, अगर कहीं कटे

0: फटे हैं तो उनको आप बदल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बाद में कभी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसी तरह से आपको इंजन ऑयल का लेवल देखना है, बैटरी के ऊपर मैंने जैसे अभी पूछा था आपने, उनके टर्मिनल्स के ऊपर आपको ग्रीस या जेली लगा के रखनी है, एयर फिल्टर को क्लीन करके रखना है, एयर फिल्टर के बिना नहीं चलाना है। अगर आपकी इंजन के नीचे जो कटोरी सी लगी रहती है उसके अंदर पानी है तो उसको आपको निकाल देना है। जहां तक संभव हो, मान लीजिए आपकी पीटीओ की शाफ्ट है या कोई लिंक है, वहां आपको ग्रीसिंग और ऑयलिंग जरूर करनी है। और दूसरा, बैटरी वगैरह को अगर संभव हो बारिशों के दिनों में तो आप कवर कर रखिए, जिससे कि उसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है। तो हमें ये देखना है कि, और मैं ये भी कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो और संभव हो तो आप ट्रैक्टर के ऊपर हुड या जो तरपाल की छत होती है उसका इस्तेमाल भी आप अवश्य करें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इसका बैटरी का पानी है, इंजन ऑयल है और ब्रेक ऑयल है, स्टेयरिंग के अंदर जहां भी आपको ऑयलिंग करनी है वो आप अवश्य करें, देख लें कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अगर हम चुनौती के रूप में देखें तो एक ये सवाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अगर हम कृषि से जोड़ के देखते हैं कि आज नीरा देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन वो ट्रैक्टर खेत में चला रहे हैं,
2: बिल्कुल,
1: और मनोरंजन की दृष्टि से उन्होंने उस पर ही कोई टेप रिकॉर्डर लगा लिया। अब ऐसा कई बार सुनने में आता है कि मशीन में या ट्रैक्टर में कुछ गड़बड़ हुई और हमारा ध्यान है हमारे टेप रिकॉर्डर पर, उस पर नहीं जा रहा है, तो इसमें डॉक्टर साहब आपकी क्या सलाह है?
0: नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अभी आपने बोला था सावधानी हटी और दुर्घटना घटी,
1: जी
0: ये बहुत कॉमन है। मैं टेप रिकॉर्डर क्या मोबाइल के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि बहुत समय ऐसा होता है कि हम मोबाइल के ऊपर अपना ध्यान दे देते हैं जिस कार्य को हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ये ऐसा नहीं कि कम ऊर्जा के हैं। मान लीजिए अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आदमी की ही ऊर्जा से हो रहा है उसके अंदर इतना खतरा नहीं होता। जब भी हम ऊर्जा का स्रोत बढ़ा देते हैं तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो उतनी ही ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान दे के करना है कि जब आप काम कर रहे हैं तो पूरा अटेंशन के साथ करना है, आपको फोकस रहना है। और इसमें ट्रैक्टर एक बहुत अलग चीज है, इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट या इक्विपमेंट या मशीन लगी होती है पीछे लगी होती है, तो आपको पीछे बार बार देखना पड़ता है कि वो ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए आपकी अटेंशन, आपका ध्यान वो अच्छी तरह से रखना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जरूरी है कि वैज्ञानिक की सोच यदि किसान भाई तक पहुंचे तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जो ये पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही है जो ओजस्वी बनकर के कृषि में योगदान दे रही है, उसको ये संदेश दें और रोकें कि वो काम आवश्यक नहीं है, जिस चीज के लिए ट्रैक्टर बनाया गया है उसका प्रयोग उसी में किया।
0: और जो आप काम कर रहे हैं पहले उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं।
2: और अमित, ये इतनी छोटी सी बात है और इतना इसका जो दुष्परिणाम है वो इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घंटों लग जाते हैं खेत में जब मशक्कत करते हैं, वैसा नहीं है कि मिनटों का काम है। तो ऐसे में जो किसान भाई बहन है वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा साथ में मनोरंजन भी होता रहे, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी इस तरफ से हट जाएं, लेकिन बस यही है, कहने का अर्थ यही है कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें, और साथ ही साथ जिस काम, जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान जो है वो आवश्यक है।
1: बिल्कुल, लगातार
0: बातचीत हमेशा काम पर बनी रहनी चाहिए, कान से आप सुनते रहिए कोई बात नहीं, पर दृष्टि जो है आपकी वो काम पे रहनी,
2: उसमें मगन नहीं हो जाना चाहिए।
1: बातचीत तो ये विषय और लग रहा है कि अब तो बहुत ही समझ में आने लगा है कि किस विषय पे आगे हम और बढ़ना चाहते हैं इस पे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहे।
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आजकल जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। आज हम बात कर रहे हैं बरसात में कृषि यंत्रों का रखरखाव और सुरक्षा पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार।
7: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बातचीत चल रही है हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी, और हम चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, किसान भाई बहन हैं, यदि उनका भी कोई ऐसा प्रश्न है, कोई समस्या है जो कृषि यंत्रों को लेकर के है, तो वो हमें स्टूडियो में सीधे कॉल कर सकते हैं। तो वो एक बार नीरा उन्हें भी बता देते हैं कि क्या फोन नंबर है।
6: तो अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011, और टेलीफोन नंबर है 2342-1081 और 83 पर आप डायल कर सकते हैं।
7: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बात रही विशेषतः ट्रैक्टर को लेकर, लेकिन ट्रैक्टर के पीछे जितने भी यंत्र चलने वाले हैं उनमें कई ऐसे हैं कि जिनमें अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक का प्रयोग होता है, बिजली का प्रयोग होता है। जैसे लेबलर हम देखते हैं तो उसमें लाइट लगी होती है, या कोई कैमरा होता है, या कहीं दूसरी ओर रखे हुए स्टैंड से भी वो कनेक्ट होता है। तो ऐसे में जो और अन्य मशीनें हैं उनमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
8: देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो बिजली का और पानी का बहुत संबंध रहता है। ठीक है, अगर नमी रहेगी तो आप कंडक्टर हैं, मतलब आपके अंदर से जो बिजली का फ्लो हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो भी बिजली के उपकरण हैं उनके अंदर पानी ना जाए सबसे पहले, और अगर वो पानी गया और वो दूसरे लोहे की धातु के साथ मिला तो वहां पे वो करंट आ जाएगा। तो ज्यादातर हर डीसी करंट होता है, फिर भी वो कई बार हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश करें कि जो भी बिजली के उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम कर सकें तो उनके ऊपर कोई पॉलीथीन वगैरह लगा लें और उनको अच्छी तरह से बांध दें, जिससे कि उसके अंदर पानी ना जाए।
7: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ कोई श्रोता जुड़ने हैं, जानते हैं क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
9: जी, मेरा नाम ये परमेश्वर साहब, जिला सीतामढ़ी बिहार चौपार गांव से बोल रहा हूँ।
7: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
9: हेलो।
7: हाँ जी, हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
9: सर, आवाज आपकी नहीं आ रही उतनी। तो मेरा कहना ये सर कि नए नए छोटे छोटे मशीन जो दिखा रहे हैं हल जोतने के लिए
7: जी,
9: खेतों के लिए, क्या वो कामयाब है क्या जी, छोटे मोटे किसान के लिए?
8: हाँ हाँ,
9: ये जानना चाहते हैं सर।
8: हाँ हाँ, कामयाब है, क्योंकि कई बार अभी जो छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं उनमें से कई जो हैं वो बैटरी के साथ चलते हैं। मान लीजिए आपने निलाई गुड़ाई करनी है तो छोटे यंत्र हैं, हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर भी डेवलप हुए हैं, और प्राइवेट कंपनियां भी डेवलप कर रही हैं, आप उनका खरीद सकते हैं और वो कामयाब हैं। ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो जो है मनुष्य शक्ति को रिप्लेस कर रहे हैं, या आप चलाएंगे खुद लेकिन उसके अंदर बैटरी की शक्ति उपलब्ध है, तो उससे चलाना बहुत आसान हो जाता है और आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आप ज्यादा कार्य कर सकते हैं।
7: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा जाता है कई बार कृषि प्रदर्शनियों में और कृषि विज्ञान मेले में हम तो गए हैं, तो वहां भी हमारे किसान भाई बहन आते हैं, कल्टीवेटर जो चलाते थे पहले हाथ से और भैंसे और बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन आज उसे बिल्कुल
8: बैटरी ऑपरेटेड काफी आ गए हैं, या इंजन में भी छोटे छोटे इंजन लगाकर भी कई उपकरण बने हैं जिससे कि बहुत आसानी हो गई है किसान भाइयों को।
6: जी डॉक्टर साहब, जब हम रख रखाव की बात करते हैं, और यहाँ लगातार बात हो रही है बिजली से चलने वाले उपकरणों की और जो बिना बिजली के चलते हैं, तो दोनों के रख रखाव में क्या अंतर आता है, ये आपसे पूछेंगे। लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका।
7: अभी शायद इनका कॉल कट गया है, पुनः आएगा जब बात करेंगे। अभी जो नीरा ने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि किस प्रकार से हम दोनों चीजों को यदि देखते हैं किसान भाई बहन की दृष्टि से, तो क्या इनमें अंतर है, क्या हमें रखरखाव की अलग विधियां अपनानी चाहिए।
8: आपने अच्छा सवाल पूछा, अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मतलब जो धातु से बने हैं उसके अंदर जंग लगने का खतरा है, हमें सिर्फ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि जंग ना लगे, साफ सफाई रखनी है, मैंने कहा जंग रोधक जो है आपको पेंट करना है या उसके ऊपर और तरह का पेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कल्टीवेटर बाहर पड़ा है तो आप एक ग्रीस या पुराने ऑयल का उसके ऊपर लेप कर दें तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, या कोई और तरह की आपके छोटे छोटे उपकरण है उस तरह से हम उसको जंग से बचा सकते हैं। और

0: कोशिश करें कि अगर हम उसको छत के नीचे रख दें, ढक दें किसी चीज़ से जो पानी के संपर्क में ना रहे, तो वो उससे हम लोग उनका बचाव कर सकते हैं। तो मोटी बात यह है कि आपको सफाई करनी है अच्छी तरह से, धुलाई करनी है, सुखाना है और उसको अच्छी तरह से रखना है। अब जमीन पे भी रखें तो ऐसी जगह रखें जहां नमी ना हो, क्योंकि नमी आएगी तो फिर लोहा उसके संपर्क में आकर आपके लिए समस्या करेगा। जहां तक बिजली के उपकरणों का मैंने बताया, मान लीजिए आपकी मोटर है या कोई और उपकरण इस तरह के हैं जिसको कि आप जो बिजली चालित हैं, हमें देखना है कि वो पानी से बचें, चाहे हम उसके ऊपर पॉलीथीन लगाएं या कुछ और एक छोटा सा घर बना के रखें। अगर हमारे उपकरण छोटे, जैसे अभी एक किसान भाई ने पूछा था कि बैटरी ऑपरेटेड है, तो उनको हम अपने घरों में रख सकते हैं सेफली, जिससे कि वो पानी के संपर्क से बच जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और वो लंबे समय तक आपका काम करेंगे। आपने ये भी अच्छा पूछा कि बिजली के उपकरणों को चलान, मैं एक और चीज बता दूं, क्योंकि जब नमी होती है मिट्टी मिट्टी के अंदर, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें नंगे पैर कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि अगर हम नंगे पैर काम करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो एक कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर से बिजली चली जाती है। अगर हम चप्पल पहन के रखेंगे या अगर आप कोई सूखा डंडा ही पकड़ के रखेंगे तो वो आपको एक अर्थिंग का आपको सहायता करेगा, अर्थिंग की। कई बार हम क्या करते हैं कि मैंने एक बार ये भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे हमने कोई प्लग लगाया, तारें अंदर घुसाई, तो हम कोई भी टहनी तोड़ के उसके अंदर लगाते हैं, पर अगर हम कोई ताजी टहनी लेते हैं तो उसके अंदर नमी है, वो भी आपको बिजली पास कर देगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल सूखी लकड़ी का ही प्रयोग करना है और नंगे पांव इस सीजन में जब तक बरसात है, आपका जो फर्श है वो थोड़ा सा नमी लेके रहता है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और दूसरा, आप नंगी तारें ना रखें, जहां तक संभव हो आप तारों पर टेप लगाएं, क्योंकि कई बार नंगी तारें आपस में मिलकर स्पार्क कर देती हैं और उससे बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
2: मैम। जो मैम सर जो बता रहे हैं यंत्र के बारे में, वो क्या पहाड़ी क्षेत्र में अवेलेबल है क्या, उत्तराखंड?
1: जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: उत्तराखंड।
1: जी क्या नाम है आपका
2: सर?
1: जी
0: हाँ, देखिए आपका जो सवाल है कि हिली जो रीजन है उसके लिए किस तरह के यंत्र उपलब्ध हैं, एक तो मैं आपको कहूंगा जो आपके पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उन्होंने भी कुछ जो उपकरण बनाए हैं, या जो स्टेट गवर्नमेंट की साइट के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे एक सब्सिडी की लिस्ट रहती है, जो यंत्र सब्सिडी के अंतर्गत रहते हैं उसको भी आप एक बार देख सकते हैं।
1: जी
0: ठीक है, तो उनके अंदर आप देख के उनको चुनाव करके फिर आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी आपके घर के पास कृषि विश्वविद्यालय है एक बार, या केवी के हैं, उनके अंदर अगर आप एक बार जाएंगे तो आपको इन यंत्रों की जानकारी मिल सकती है, या आप और जगह से भी खरीद सकते हैं, इस तरह के यंत्र उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, खरीदारी की बात हो ही रही है तो ये भी बता दीजिए, जब हम इस तरह के यंत्र उपकरण जो है वो खरीदते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखें?
0: देखिए, जब भी आप यंत्र खरीदें तो एक तो ये देखना है कि आपको आपके कहीं उस इलाके के अंदर कुछ लोग उस तरह का यंत्र यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तभी आप उस तरह का यंत्र खरीदेंगे, और क्या उसका डीलर या कंपनी के इंजीनियर वहां आपके आसपास उपलब्ध हैं। अगर वो उपलब्ध हैं तो कभी भी आपको अगर कोई मरम्मत करानी है, कहीं कुछ ठीक करना है, कोई स्पेयर पार्ट लेना है, तो आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, आपको देखना है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या वो BIS से उसको मान्यता प्राप्त है। या चौथा, आप ये भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर क्या वो सब्सिडी की लिस्ट में है, क्योंकि वो सब्सिडी की लिस्ट में जो होते हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, प्रमाणित होते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे। तो आप तीन चार चीजों का अगर ध्यान रख के खरीदेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
3: जी डॉक्टर साहब, कृषि यंत्रों की बात चल रही है और आज के समय में देखा जाए जहां कहीं ना कहीं सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ हमारे किसान भाई बहनों का देती है, और जहां तक ड्रोन दीदी अब आजकल आ रहे हैं सब, हमारी ऐसी महिलाएं हैं, बढ़ रही हैं, कृषि क्षेत्र में योगदान बढ़ रहा है, तो ड्रोन एक ऐसा कृषि यंत्र है कि जिसका रख रखाव अगर अन्य की अपेक्षा से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसके विषय में आपकी क्या विशेष टिप्पणी रहेगी?
0: जी, उसके अंदर भी बैटरी लगती है और उसका बैटरी का उपयोग, उसके कुछ ड्यूटी साइकिल्स होते हैं, तो हमें उन सबका ध्यान रखना है, उनकी रिचार्जिंग, उनका रख रखाव, जो उसके ऊपर पंखे लगे हुए हैं उस तरह के, उनका सबका रख रखाव करना है अच्छी तरह से। और वो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो टेक्निकली उसको आपने जहां से खरीदा है थोड़ा उनसे भी आप मदद लीजिए, क्योंकि कई बार ये लोग ये जो चीजें हैं ये बहुत प्रिसाइज रहती हैं, तो उसके अंदर हम कई बार अपने आप नहीं कर सकते, बट आप पीरियोडिकल जैसे आप समय समय पर उसकी सर्विसिंग वहां से भी करा सकते हैं।

0: में हम ये देख लें कि कोई मॉइस्चर ना बचे उसके अंदर, कोई नमी ना बचे, और उसके बाद अगर संभव हो तो कोई पेंट कर लें और उसके बाद उसको आप अच्छी जगह पे रखें जहां वो बरसात से बच सके। इससे आपका ये लंबे समय तक आपका काम करेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि भाई मौसम खरीफ का चल रहा है, तो ऐसे में जो कृषि यंत्र हैं वो वही होंगे जो खरीफ की फसलों में इस्तेमाल हो रहे हैं और वही किसान की दृष्टि में होंगे और सामने घेर में रखे होंगे या घर में रखे होंगे, लेकिन जो रबी की फसलों में हमने पहले इस्तेमाल कर लिए या हमें बाद में इस्तेमाल करने हैं वो अब हमारी दृष्टि से थोड़ी दूर
0: हो।
1: तो अब यहाँ देखना है जो थ्रेसर है हमारा, तो उसको अभी हमने खड़ा कर दिया, बाद में जब निकाला पता लगा कि ये खराब कैसे हो गया, तो इसको भी आप अभी लगे हाथों जरूर हमारे किसान भाई के साथ साझा करें।
0: देखिए थ्रेशर का काम हो चुका है, अब थ्रेशिंग हो चुकी, तो वो अब खड़े हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था अभी कि अगर हम थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये देखना है, फिर मैं ये कहूंगा कि उसकी पूरी फसल के अवशेष उसके अंदर से बिल्कुल निकाल देने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके हवा मार के उसको खड़ा करना है। जितने भी उसके आप नट बोल्ट देख लीजिए, कोई ढीला तो नहीं हुआ, कोई मिसिंग तो नहीं हो गया, उनको बदल लीजिए क्योंकि अगले सीजन में आपको इसका लाभ मिलेगा। जितनी भी बेल्टें हैं उसकी, उनको देख लीजिए, उनकी टाइटनेस देख लीजिए कि उनके अंदर उतना तनाव होना चाहिए। उसके बाद जो और चीजें, एक बार आप अच्छी तरह से उसको घुमा के देख लें उसके ड्रम को, कहीं कोई चीज लग तो नहीं रही, कोई अटपटी आवाज तो नहीं आ रही, एक कहीं कुछ आ रही है तो एक बार आप उसका निरीक्षण कर लें अच्छी तरह से, कहीं कोई उसका कुंड जो है वो ढीला तो नहीं हो गया या निकल तो नहीं गया। अगर कोई उसका आपको रिप्लेस करना है, उसको बदलना है, तो वो सब भी आप कर लें। उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि उसको एक साफ जगह पर, सूखी जगह पर, ढकी हुई जगह पर खड़ा करिए।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते कार्यक्रम में एक मिनट में हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्षा का समय चल रहा है, इस वर्षा के समय में जो कार्य हमारे कृषि यंत्र कर रहे हैं उनमें क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए।
0: देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बिजली का इस टाइम बहुत ज्यादा, अगर आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है उपकरण के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार आपका इलेक्ट्रोक्यूशन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो झटके लग जाते हैं, करंट लग जाते हैं, कई बार पंप चलाने के लिए आप नीचे जाते हैं उस समय आपको जो है नमी होती है, आप नंगे पैर चले गए, वहां बिजली का फ्लो हो गया, तो इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत हो जाती हैं। जब भी आप काम करेंगे, विजिबिलिटी जो आपका दिखने का क्षमता है वो भी थोड़ा कम हो जाती है जब आपकी बरसात पड़ रही होती है। कई बार जो स्नेक बाइट, सांप से काटने, डसने की बहुत समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि कई बार अभी जैसे आप लोग देखते होंगे कि बारिशें जब होती हैं तो उनके बिलों में पानी चला गया, ये जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, कहीं पे कोई ढेर पड़ा हुआ है फसल का या अवशेषों का ढेर पड़ा हुआ है उसके अंदर छुप जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो जिससे कि सावधानी रखेंगे तो लंबे समय तक आप लोग अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे।
2: जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आज का जो विषय था बरसात में कृषि यंत्रों का रखरखाव और सुरक्षा, डॉक्टर आदर्श कुमार हमारे साथ थे और पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। आप हमें लिख सकते हैं, उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा kkbongold@gmail.com पर।
1: लेते हैं अनुमति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
2: नमस्कार,
0: धन्यवाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

0: पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब से कुछ देर में शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। म्यांमा के रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही दो नावों के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों नाव जून के अंत में म्यांमा के पश्चिमी राज्य रखाइन से रवाना हुए थे। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या यात्री सवार थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जगन्नाथ जी, उनकी पहंडी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, वो रथ पर आसीन नहीं हुए थे, लेकिन इस बीच जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बाद तीनों रथों में जो पार्श्व देवी देवता उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरी गोवर्धनधारी, पांडु नरसिंह, लक्ष्मण, अंगद, नरसिम्हा, कार्तिकेय, नटराज, नृत्यरत गणेश आदि ये देव, तथा माँ बिमला, वनदुर्गा, वराही, चामुंडा, भुवनेश्वरी, हरचंडी, जय दुर्गा, सरमंगला, उग्रतारा आदि देवियों को भी सहायक देवी देवता के रूप में रथों पर विराजमान कराया जाता है। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस तरह पहंडी का क्रम संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद विधि अनुसार जो परंपरा रही है सदियों की, पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती वो अपनी सेवा देने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वो पधारे हैं। एक के बाद एक तीनों रथों पर वो भगवान की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान से समूचे जगत के लिए कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्रम अभी चल रहा है। उनका जो ये सेवा है ये पूरी हो जाने के बाद फिर वहाँ से आज्ञामाल आएगी और गजपति महाराजा के पास संदेश लेकर कि आपका अब समय हो चुका है, इसके लिए अभी समय है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं, भीड़ इतनी है। इस बीच किसी किसी मूर्छित श्रद्धालु को स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सहायता करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए पास ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद है, अग्निशमन विभाग वो लोग भी मौजूद हैं और पुलिस, आरपीएफ और ये सारी सशस्त्र सेनाएं ये भी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। सब कुछ सकुशल चल रहा है। घंट ध्वनि, जय घोष, जय जगन्नाथ, हरि बोल की गूंज के बीच ये वातावरण एक मानो एक अद्भुत लहर उठ चुकी है और मेरे सामने तीनों रथ जो सुसज्जित हैं, अभी गजपति महाराजा के पास संदेशा आएगा। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी। आप लोगों ने जैसे सुना, अंजलि जी बहुत ही भावुक हो गई है। ये समय ऐसा है, ये माहौल ऐसा है।

0: ये वातावरण ऐसा है कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े चक्राकार नयन को देखकर कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है। वो अपने आप को भुला देता है। वो यही देख रहा है कि वो दुनिया में सिर्फ वो अकेला है और उसके सामने उसके आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, आसपास कोई और नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के मिलन का दृश्य बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। आप पहली बार आई हैं रथ यात्रा में?
1: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
0: इससे पहले आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आई?
1: नहीं, मैंने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।
0: तो देखिए, ये अंजलि जी का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आज के इस अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के तिथि में उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें दर्शन दिया। और जैसा कि अंजलि जी ने वर्णन किया, उनके पास शब्द की कमी पड़ रही है, वो अपने भाव प्रकट करने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी, आपका जीवन सुखमय हो, जगन्नाथ जी आप पर यही आशीर्वाद करें। धन्यवाद,
1: जय जगन्नाथ।
0: तो देखा आपने, ये एक भक्त के मन की भावना थी, उन्हें शब्दों की कमी पड़ रही थी। वो यहाँ आकर जगन्नाथ पुरी में पहुंचकर कैसे अपने आप को भुला देती हैं, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर कैसे अपने आप को धन्य मानती हैं। तो अब मेरे सामने तीनों रथ सुसज्जित हैं, जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं, शंकराचार्य जी अपने भगवान के दर्शन कर सभी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, समूचे विश्व के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से।
2: थैंक यू मजीथिया जी। एक्चुअली दिस इज द आफ्टरनून सेशन ऑफ आवर कमेंट्री, लाइव कमेंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश। मजीथिया जी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ द थ्री कार्स आर ऑलरेडी रेडी, दे आर इन रेडी पोजिशन, दो ऑल थ्री ऑफ देम आर एब्सोल्युटली wet to the skin, as you say, but this has had no deterring effect on the assembly. The crowd is as eager to participate in the Rath Yatra as they were early in the morning. But morning or afternoon, the rains continue unabated, but this has not been able to do any dent to the enthusiasm of the crowd, of the substantial crowd which has assembled here to see the annual Rath Yatra of the Lord of Lords, that is Jagannath. So as I was telling you, this time special precaution has been taken from the side of the government to prepare everything in such a way so that there is no untoward incident, because last year there was one such untoward incident for which the government was a little maligned, and this time they have taken special care, and the services provided also they include some of it. Majithya ji has already talked about. Fire brigade is there, health services like Red Cross and ambulance services are always available. In fact, the moment there is a casualty, that there somebody falls down because of extreme heat, but there is no heat today, it is only rains. So in case anyone loses consciousness, there is an ambulance which is allowed to pass through the crowd in such a beautiful way, so that there is nothing that comes in the way of the ambulance, and the patient is immediately taken care of, and the sanitation part is also taken up care of. And police has taken special care this year. About 220 platoons of police personnel have been deployed for the Puri Rath Yatra this year. About 12,000 security personnel, including Odisha Police, Home Guards, and Central Armed Police Forces, CAPF, like BSF and CRPF, are already there. And specialized units also, like elite units such as National Security Guard, NSG, and Commandos and Rapid Action Forces, RAF, that is, they are also pressed into service. They are on duty, and whenever required, their help can be sought after.

0: छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना। तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा। तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है। प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं। ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है। इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं। यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है, आगे चलकर भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। जिस प्रकार पंच तत्वों से बने मानव शरीर या मानव रथ निर्माण होता है उसी प्रकार पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार रथ के निर्माण में भी पांच तत्वों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, धातु, वस्त्र, जरी और रंग आदि जंबूरा ये सब प्रयोग में लाया जाता है जिससे रथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इन पांच तत्वों में से बालू यानी लकड़ी ही रथ निर्माण का प्रमुख कारक है। रथों के निर्माण में साधारणतया शाल, असन, भौरा, अर्जुन और फांसी आदि लकड़ियों का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। महाराणा गुणाकार छद्माकार वंशानुक्रम से ये रथों का निर्माण कार्य करते आए हैं। जो शास्त्रीय विधि से रथ का निर्माण करते हैं रथ खला में मुख्यतः लकड़ी का काम होता है और जबकि अन्य कार्य अलग अलग जगहों पर होते हैं। ये पारंपरिक शैली से शास्त्रानुमोदित विधि से रथों के निर्माण कार्य संपन्न किया जाता है। रथों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक से।
1: टेलिंग यू फ्रेंड्स द जगन्नाथ एज वी सी हिम हैज अ लॉट ऑफ स्पेशलिटी अबाउट हिम बट मोर अबाउट इट अ लिटिल लेटर। We have a guest in our studio. She is a lady. We are having in the studio, and we will have a little interview with her, and we'll talk to her about her experience here. Madam, your name?
2: My name is Sumandar. I'm basically from Jammu and Kashmir, but settled in Gujarat, Ahmedabad.
1: Gujarat, Ahmedabad. Is this your first time that you are coming to Puri?
2: No, this is my third time I am coming to Puri, but this is my first time for Raghunath Yatra, Rath Yatra.
1: Oh, I think. What's your take on this Rath Yatra, which is so famous that we call it the cynosure of all festivals here?
2: It is something which is miraculous, and it's happening only with the grace of God. It cannot happen without the grace of man and his desire. So many people coming in here, so many people coming for the darshan. It is something which cannot be expressed in words. It's only that once you are here, you can feel that it is in the air, the purity, the God, the divinity, it is in the air.
1: Madam, did you have these religious feelings early in life or somebody inspired you to?
2: My father, he was a very big fan, or you can say devotee of Jagannath Puri, but unfortunately, before he could not come and visit Puri. We are basically from Jammu and Kashmir. It was a long distance from Kashmir to this point. But he used to tell me stories about Jagannath Puri. So since I was a kid, I had a desire to be here.
1: Now that you are here in Puri, what's your experience? Is it exactly the way you considered Lord Jagannath should be? Or do you find him a little different from other gods?
2: He's little mischievous, I should say. But he's there for everybody.
1: How do you find him mysterious?
2: Mysterious in

0: He does a special role. The role is that of Chera Pohara. And that he acts as a sweeper, cleaning the chariots of the Lord. This is a ritual in vogue since the historical Kanchi expedition, where Lord Jagannatha and Lord Balabhadra had redeemed the honor of the king. And because the king happens to be the chief servitor of the Lord, and the gods fought on his behalf and wrested the princess of Kanchi from her unwilling father king so that she could become the legal spouse to Gajapati of Puri. And besides, the two large eyes of the Lord are said to be representing sun and the moon, and he commands over all lesser gods. And the chief speciality of this Lord, our Lord Jagannatha, can be said to be lying in upholding family virtues and proving beyond doubt that gods are within touchable distance of human beings. The Lord's Leela or divine game is at its best during the Kar festival. This is the occasion where the Supreme Lord or Purushottama Jagannatha comes to meet his bhaktas in the open. The enthusiasm of millions of bhaktas of his to have a glimpse of their favorite deity can be said to be the best spiritual show on earth. And faith is supposed to be the greatest healer, and at no other juncture in human history the time was more appropriate for man to repose his faith in the Almighty Lord, as we have heard in recent times when we had the corona pandemics, or for the last so many years, about 155 years in the history of the temple, Jagannath worship has not been able to be done because of foreign aggression. With this, I will like to hand over the mic to Majithia ji for commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य महाराज तीनों रथों पर भगवान के दर्शन करने के साथ साथ जनता के लिए, समूचे विश्व के लिए प्रार्थना की है भगवान से कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो. उसके पश्चात वहाँ से आज्ञा माल लेकर गजपति महाराजा के निवास पहुँचे, और गजपति महाराज कुछ ही देर पहले हमारे सामने से एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुँचे हैं. वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे. जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं. इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे. ये उनका पारिवारिक हक है. भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है. यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं. अभी अभी वो आए हैं. पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे, फिर सुभद्रा जी के रथ पर, और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे. इस छेरा पहरा जो विशेष नीति है और जिसका अधिकार गजपति महाराजा को प्राप्त है, ये सदियों पहले गजपति कपिलेंद्र देव के समय से इस परंपरा का प्रारंभ

0: Singer of Janana in Odisha was Bani Kantha. It was conferred on Nimai Charan Harichandan. More about this later. I would like Majithia ji to continue the commentary in Hindi and talk to you about the progress of the Rath Jatra.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं देख पा रहा हूं बलभद्र जी के तालध्वज रथ पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करने में लगे हैं. तालध्वज रथ के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद, वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर. उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने के मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे. इसमें अभी समय है. मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पुरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, यहां जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे. जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चूड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे. अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा. अब आप सोच रहे होंगे, ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी. आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा. उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है. 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे. रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे. इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है. जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पुरी आए हुए थे. उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पुरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया. आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए, और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं. जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची. तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई. फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए.

0: थे लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो वहां रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे, हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पुरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनैतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
3: There is an urgent need for us.
4: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
3: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा

0: सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for the mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today.
2: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
1: Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that the government's endeavour is to build an India where borders are not only secured but also the most connected. He said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. Mr. Singh was addressing the Border Road Organization BRO Tech Symposium in New Delhi. The Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or Class 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the apex court

0: गले।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न तथा प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो अपने पंचकुला यूनिट के लिए इन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। वरिष्ठ अभियंता रिक्तियों की संख्या 1, वरिष्ठ सहायक अभियंता भूतपूर्व सैनिक रिक्तियों की संख्या 5, वरिष्ठ सहायक अधिकारी भूतपूर्व सैनिक पद 1 और परियोजना अभियंता रसायन शास्त्र पदों की संख्या 1। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.bel-india.in। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं 1 पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध 1 पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा 1 पद, प्रबंधक अकादमिक 1 पद, प्रबंधक प्रत्यायन 1 पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना 1 पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता 1 पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन आवेदन प्रक्रिया नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 MHz ऑन FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट करिश्मा राय।

0: Yes, and we begin a program with the news headlines at this hour.
1: भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया.
0: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्रेस ऑन द सेम पाथ.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया.
0: इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू प्रमोट ग्रीन एंड सस्टेनेबल रेल मोबिलिटी.
1: बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.
0: एंड इन क्रिकेट सेकेंड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू बी प्लेड इन कार्डिफ दिस इवनिंग. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Artificial Intelligence Appreciation Day. Well, Karishma, today, July 16th, we are celebrating AI Appreciation Day, a day dedicated to recognizing how artificial intelligence is shaping our lives.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, लेकिन इसके साथ ही हमारे श्रोताओं के लिए भी यहां पर एक सवाल है कि आज आपने बिना जाने कितनी बार AI का इस्तेमाल किया.
0: And you know what, Karishma, I asked my phone for directions this morning.
1: और कल रात मुझे अपने स्ट्रीमिंग ऐप पर फिल्मों के सुझाव मिले, ये भी AI है.
0: Exactly. So whether it's helping us navigate traffic, translating languages, filtering spam emails, answering questions through chatbots, even suggesting the perfect playlist, AI has quietly become part of a daily routine.
1: और यह कमाल की बात है कि जो चीज कभी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी, अब वह डॉक्टरों, शिक्षकों, किसानों, कारोबारियों और यहाँ तक कि कलाकारों की भी मदद कर रही हैं.
0: And let's talk about healthcare first, Karishma, shall we? AI is helping doctors detect diseases earlier, analyze medical scans faster, and even speed up research for new medicines.
1: और शिक्षा के क्षेत्र में AI सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बना रहा है. छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, जबकि शिक्षक AI टूल्स का इस्तेमाल करके रिसर्च और लेसन प्लानिंग को आसान बना सकते हैं.
0: Yes, Karishma, and businesses are using AI to automate repetitive tasks and improve customer service, while banks rely on it to detect fraud in real time.
1: बिल्कुल सही कहा, और इसके साथ ही श्रोताओं, किसानों को भी फायदा हो रहा है. AI पावर टूल्स फसल की सेहत पर नजर रख सकते हैं, मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि सिंचाई के लिए सबसे सही समय क्या है ये भी बता सकते हैं.
0: Of course, Karishma, and we can't forget the creative world. Writers, designers, musicians, video editors, and software developers are increasingly using AI to brainstorm ideas, speed up workflows, and handle routine tasks.
1: बिल्कुल, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि AI एक शक्तिशाली सहायक है, ना कि इंसानी रचनात्मकता या निर्णय लेने की क्षमता का विकल्प.
0: Absolutely, Karishma. AI has impressive capabilities, but it also has its limitations, and it can sometimes generate incorrect information, misunderstand context, or reflect biases from the data it has been trained on.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही इंसानों के बिल्कुल उलट AI में भावनाएं, सामान्य समझ या जवाबदेही नहीं होती है, इसलिए इंसानी निगरानी जरूरी है, खासकर हेल्थ केयर, कानून और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में.
0: So, Karishma, AI Appreciation Day isn't just about celebrating technology. It's also about understanding its strengths, its limitations, and how we can use it responsibly.
1: और यह बात आज के समय में खास तौर पे अहम हो जाती है, क्योंकि गलत जानकारी, प्राइवेसी, नैतिकता और नौकरियों के भविष्य को लेकर बातचीत लगातार बढ़ रही है. हालांकि AI की अहमियत समझने का मतलब उसकी कमियों को भी पहचानना है.
0: Absolutely, Karishma, but AI can still produce incorrect information, reflect biases is present in the data it is trained on, and struggle with context or human judgment, and it lacks emotions, common sense, and accountability, making human oversight essential, particularly in sensitive areas such as healthcare, law, and finance.
1: और श्रोताओं, इसके साथ ही भारत में AI देश के डिजिटल भविष्य का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है. इंडिया AI मिशन जैसी पहलों के जरिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने, कुशल टैलेंट तैयार करने और ऐसे AI के निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है जो सुरक्षित, समावेशी और सभी के लिए फायदेमंद हो.
0: Yes, Karishma, and I'd like to tell our listeners that India is at a pivotal stage in its development journey with artificial intelligence, AI, emerging as a key enabler. For India, AI functions as a strategic national tool to drive the democratization of technology, ensuring access, inclusion, and equity at scale. And this technological revolution has opened vast opportunities for advancements across every domain of human endeavor.
1: और ग्लोबल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस फोरम में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत चर्चा को आकार देने में उसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इसी बढ़ती वैश्विक भागीदारी के तहत इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया गया था।
0: And addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Narendra Modi has said, "We are entering an era where human and intelligent system co-work, co-create and co-evolve."
2: We are entering an era where humans and intelligent systems co-create, co-work and co-evolve. AI hamare kaam ko aur adhik smart, efficient aur impactful banayega.
1: तो इसके साथ ही अभिषेक, यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल ये भी है कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की कोई एक समस्या हल कर सकते हो तो वो क्या होती। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो पक्का अपनी कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट को व्यवस्थित करना होगा।
0: एब्सोल्युटली करिश्मा, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन हियर टुडे, एज वी सेलिब्रेट एआई एप्रिसिएशन डे, लेट्स रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट एम्पावर्स पीपल, सपोर्ट्स क्रिएटिविटी and helps solve real-world challenges. The future of AI isn't just about smarter machines, it's about making smarter choices and how we use them. So stay curious, stay informed, and keep exploring the possibilities.
1: और इसके साथ ही अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
0: Yes, Prime Minister Narendra Modi today extended greetings to the Kutchi community on the occasion of Ashari Beach, the Kutchi New Year. And in a social media post, Mr. Modi invoked the traditional Kutchi song and said that whenever the Kutchi settles after achieving success, the spirit of Din Din Kutch resonates. The Prime Minister said that Ashari Beach reflects the enduring cultural heritage and strong sense of the Kutchi community.
1: और पूरे सौराष्ट्र में कच्छ ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां एक विशिष्ट और रंग बिरंगी सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास छुपा हुआ है। यहां नए साल की शुरुआत भी बेहद अनोखे अंदाज में होती है। आज आषाढ़ी दूज का पावन पर्व है, यानी कि आज से कच्छवासियों का नव वर्ष शुरू हो रहा है।

कच्छ और कच्छ से बाहर रहने वाले सभी कच्छी लोग आज असाढ़ी दूज से शुरू होने वाले कच्छी सावन 2083 के नए साल का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ स्वागत कर रहे हैं। दशकों पहले इस दिनों का एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता था। नए साल के नए सिक्के जारी किए जाते थे, नया पंचांग निकाला जाता था और विभिन्न आकर्षणों के साथ शहर में नगर यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही शाही दरबार सजता था जिसमें सभी नगरवासी भाग लेते थे। राजशाही के दौर से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। कच्छ के मुख्य मथक भुज में पिछले दो वर्षों से आयोजित होने वाले सांसद कार्निवल ने इस उत्सव में एक नया आकर्षण जोड़ दिया है। भुज के ऐतिहासिक हमीरसर तालाब के किनारे आज शाम आयोजित होने वाले इस कार्निवल में 47 से अधिक झांकियां और 1200 से अधिक कलाकार कच्छ के गौरवशाली वैभव को उजागर करने वाली प्रस्तुतियां देंगे। इस मौके पर हमीरसर के तट को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया है। मुख्य मथक भुज के अलावा जिले के अन्य शहरों, गांवों तथा जिले के बाहर भी

0: अच्छी नव वर्ष का यह जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। आषाढ़ी दूज के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कच्छ हो या कच्छ से बाहर, जहां भी कच्छी समुदाय के लोग रहते हैं, वे इस दिन को नए साल के रूप में बेहद खास तरीके से मनाते हैं। इस पावन अवसर पर कच्छ में कई स्थानों पर रथ यात्राओं का भी आयोजन किया गया है। परिक्रमा के लिए भूज से परेश मारू।
1: आशानो आ प्रकाश सुख समृद्धि वर्षे रहसो न दिल मा विश्वास।
2: Yes, and the hill shrine of Sabarimala opens today for its monthly rituals, allowing devotees to offer prayers until June 21st. We have more from a Thiruvananthapuram correspondent.

0: The Sabarimala temple will be open till 21st evening. Heavy rush is expected this time as auspicious Ramayana Madis also coincide with the opening. In the meantime, virtual queue system is implemented to manage crowd at Sabarimala. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: Saranamayyappa Swami, Saranamayyappa.
2: वहीं हैदराबाद में आज बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई। यह उत्सव पूरे एक महीने तक चलेगा। आषाढ़ महीने के दौरान महिलाएं मंदिरों में देवी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं और बोनालू अर्पित करती हैं। एक रिपोर्ट।
3: The Ashada Masam Bonalu Festival, a symbol of Telangana's culture and traditions, began today with grandeur at Golconda Fort in Hyderabad. The celebration started with the offering of the first bonam to Golconda Sri Jagadamba Mahankali. The first bonam, consisting of 11 bonams, was offered to Jagadamba Mahankali. On behalf of the state government, the golden bonam set out from Langar House towards Golconda Fort. Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar and ministers Ponnam Prabhakar, Konda Surekha offered Pattu Vastralu to the goddess. This festival will continue for nearly a month from today until August 13. During the four Sundays of the month of Ashadam, Bonalu are celebrated with great splendor at the Golconda Sri Jagadamba Mahankali, Sikindrabad Ujjaini Mahankali and Lal Darwaja Simhavahini temples in Hyderabad. Devotees offer Bonalu and fulfill their vows. Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
4: Indian Council of Medical Research, ICMR, study has demonstrated that drone-assisted transport of tuberculosis, TB, sputum samples can reduce diagnosis time and patient expenses. We have a report.
5: The study was conducted by ICMR as part of its flagship iDrone initiative in Yadadri Bhuvanagiri district of Telangana in collaboration with AIIMS BB Nagar and the district TB office under National TB Elimination Program. The study compared the conventional system of patient travel for TB diagnosis with a drone-enabled model. The study enrolled 840 participants and found that the median turnaround time for TB diagnosis decreased from 15 days to 5 days following the introduction of drone-based sample transport. Diagnostic delays were also significantly reduced, enabling earlier confirmation of disease and facilitating faster clinical decision-making. It showed that sputum samples can significantly improve access to diagnostic services for people living in remote areas, offering a substantial reduction in the financial burden borne by the patients. Priya Mondal for Parikrama.
2: मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट को एक नई पहचान मिली है। अब यहां सीधे विदेश की उड़ान भी भरी जा सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता अभिनय गोयल।
6: मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को कल रवाना किया। यह सेवा प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
7: यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात सबको सर्वसुलभ होना चाहिए। हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है।
6: एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह उड़ान सप्ताह में चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। इस नई सेवा से इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब तक अबू धाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई से होकर जाना पड़ता था जिससे 7 से 8 घंटे लगते थे। नई सीधी उड़ान से ये सफर करीब

0: 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस हवाई सेवा से व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: Chief Minister Dr. Pramod Sawant called upon the youth, women and aspiring entrepreneurs to shape the future through innovation, modern technology and continuous skill development. He was speaking at the state-level World Youth Skills Day program organized by the Directorate of Skill Development at the Kala Academy in Panaji.
2: Chief Minister Dr. Pramod Sawant urged young people, women and aspiring entrepreneurs to make the best use of innovation, emerging technologies and new opportunities to build successful careers and businesses. Addressing the state-level World Youth Skills Day program at Kala Academy in Panaji, the Chief Minister stressed the importance of skilling, reskilling and upskilling in today's rapidly changing world. The Chief Minister said the Go government is committed to creating a highly skilled workforce by modernizing industrial training institutes across the state. He informed that around 180 crore rupees are being invested in upgrading ITIs with modern infrastructure and training facilities. On the occasion, the Chief Minister inaugurated the Artisan Fair, showcasing the products and innovation by students, artisans and self-help group. The exhibition will remain open to public till the 17th of this month. The program highlighted the importance of skill development in driving employment, entrepreneurship and economic growth in Goa. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
3: उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम के तहत चलाए गए पौधारोपण महाअभियान में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि यह महायज्ञ धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। प्रदेश भर में चलाए गए पौधारोपण महाअभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
4: गोरखपुर में इस महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और प्रदेश में वनाच्छादन का भी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। पौधारोपण महाअभियान में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ आगरा में पौधारोपण किया। कानपुर नगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पौधा लगाया। प्रदेश में इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इसको मिला दें तो प्रदेश में इस साल अब तक लगभग 40 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: Yes, and
3: और अब चलेंगे खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
5: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: Yes, and moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex added 1 point to close at 77,187. The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 dropped 0.4% and small-cap 100 index fell by 0.1%. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program.

0: program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
0: यस, एंड के वी सुब्बन्ना पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2005. ही वाज एन एक्लेम्ड इंडियन ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड कल्चरल आइकन इन द कन्नाडा लैंग्वेज. ही इज ग्लोबली सेलिब्रेटेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ रूरल कर्नाटका बाय ब्लेंडिंग लोकल ट्रेडिशंस विद वर्ल्ड सिनेमा, लिटरेचर एंड थिएटर. In 1949, Subbanna founded the Nilana Kanatheshwara Natya Sangha, or Ninasam, in his native village of Hegodu, Karnataka. And under his leadership, the small amateur group evolved into a world-famous theatre institution and school. And bridging the local and the global through Ninasam, he introduced rural audiences to Kannada adaptations of classical international playwrights like Shakespeare, Moliere, and Brecht alongside modern Indian plays.
1: तो इसके साथ ही केवी सुबन्ना का मानना था कि कला और संस्कृति समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है और उन्होंने जीवन भर इसी उद्देश्य के लिए कार्य भी किया. भारतीय रंगमंच और कन्नड़ संस्कृति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. और इसके साथ ही श्रोताओं, आज भारत के महान हॉकी खिलाड़ियों में शुमार धनराज पिल्ले का जन्मदिन है. उनका जन्म 16 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1968 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था. अपनी अद्भुत गति, शानदार खेल प्रतिभा और आक्रामक शैली के दम पर धनराज पिल्ले ने भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई. उन्होंने अपने करियर में 4 ओलंपिक, 4 हॉकी विश्व कप, 4 एशियाई खेल और 4 एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है. धनराज पिल्ले ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की और कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में टीम को यादगार जीत दिलाई. उनकी कप्तानी में भारत ने 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 32 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था. उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही 2002 में उन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित किया गया था.
0: Yes, and we also remembering Borun De, who was a highly eminent Indian historian and academic who specialized in modern Indian history, the Bengal Renaissance and the British constitutional history. He is best known for building several of India's premier academic institutions and serving as a leading authority on the 17th and 18th century social and economic history. He was the founder director of the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, and the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies. He served as the first professor of social and economic history at the Indian Institute of Management, IIM, Kolkata. He chaired the West Bengal Heritage Commission and worked as the honorary state editor for the West Bengal District Gazetteers. He held leadership roles across major cultural organizations, including serving as the vice president of the Asiatic Society and as a trustee for the Victoria Memorial. And he has authored numerous historical research papers and books, most notably Secularism at Bay, Uzbekistan at the Turn of the Century.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की सशक्त अभिनेत्री सुरेखा सीकरी की पुण्यतिथि है. सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में हुआ था. उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और रंगमंच, सिनेमा तथा टेलीविजन तीनों माध्यमों में अपने दमदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया. उन्होंने तमस, मम्मू, बधाई हो, नसीम, सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी चर्चित फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई. इसके अलावा टेलीविजन पर भी बालिका वधू में निभाया गया उनका किरदार दादी सा का आज भी घर घर में लोकप्रिय है.
0: एंड शी वॉज ऑफकोर्स अ प्राउड ग्रेजुएट ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NST 1968 एंड स्पेंड ओवर अ डेकेड परफॉर्मिंग विद NST रेपर्टरी कंपनी, एस्टैब्लिशिंग हरसेल्फ एज अ फॉर्मिडेबल स्टेज टैलेंट बिफोर ट्रांजिशनिंग टू द स्क्रीन अलॉन्ग साइड अ

0: और इसके साथ ही आज प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और प्रशासक जगदीश चंद्र माथुर की जयंती है। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी रंगमंच और नाट्य साहित्य के प्रमुख हस्तक्षात्रों में गिने जाते हैं। उनके चर्चित नाटकों में कोणार्क, पहला राजा, शारदिया और दशरथ नंदन शामिल हैं, जिन्होंने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे और आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में भी अपना योगदान दिया। और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक को। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी

0: मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सर्ही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval said BIMSTEC member nations have significantly advanced cooperation in combating terrorism, transnational organized crime, cyber threats, and maritime security challenges. He added that BIMSTEC countries are poised to combat new and emerging threats together. Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in class 5 or 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the Apex Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. The launch marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. In Odisha, the world-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated today amidst elaborate rituals and unprecedented security arrangements. Despite incessant rain since morning, lakhs of devotees have remained

हम अपनी जिंदगी में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कभी सड़क पर, कभी अनजान रास्तों पर। कई दफा लोग हमारे सफर के साथी होते हैं, कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए, और हमें बेशुमार यादें दे जाते हैं, और उनके साथ वो सफर जिंदगी भर याद रहता है। जहां आज हम निकलेंगे यादों के सफर पर आपके साथ, जिसमें होंगी 80 और 90 के दशक की फिल्मों की बातें और बेहतरीन गाने। कहां पर? यहीं गाते गुनगुनाते पर, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। शो है गाते गुनगुनाते, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप तमाम सुनने वालों के लिए है।

फिल्म कुदरत की अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी और राजेश खन्ना इस फिल्म में लीड रोल में थे। 1981 में बनी ये फिल्म पुनर्जन्म पर बेस्ड थी।

फिल्म के गीत आज भी रूह को ताजा कर देते हैं। फिल्म की कहानी कैसी भी हो लेकिन इसका म्यूजिक बहुत शानदार रहा। फिल्म में लता जी का गाया एक गाना था, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। इस गीत की जो धुन थी आरडी बर्मन ने अपने पिता एसडी बर्मन के एक पुराने बंगाली गाने की धुन से इंस्पायर होकर बनाई थी। ये धुन चेतन आनंद को बहुत ज्यादा पसंद आई मगर इसको फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए इजाजत तो चाहिए थी। तब आरडी बर्मन चेतन आनंद को लेकर अपनी मां मीरा देव बर्मन के पास गए उनसे परमिशन लेने के लिए। मीरा जी ने खुशी खुशी इजाजत दी तब ये धुन फिल्म कुदरत के इस गीत में इस्तेमाल हुई। गीत बेहद पसंद किया गया, बिना का गीतमाला में 12वें नंबर पर था और 25 हफ्ते चलने के बाद सरताज गीत बनकर वहां से हटा। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: join the mega plantation drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: This program was presented by Vinita Thakur and produced by Kumar Gaurav. It was brought to you by the News Services Division of Akashwani.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी CETA, व्यापार निवेश और नए अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध कई दशकों से लगातार मजबूत होते रहे हैं। दोनों देश व्यापार निवेश शिक्षा प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध लगातार सशक्त हो रहे हैं। वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.96 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगभग 3.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। इससे पता चलता है कि दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस साझेदारी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। 15 जुलाई 2026 से भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी CETA और सामाजिक सुरक्षा समझौता औपचारिक रूप से लागू हो गया है। ये समझौता केवल शुल्क कम करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, पेशेवरों की आवाजाही को सुगम करना और नए आर्थिक अवसरों का सृजन करना है। आइए सुनते हैं इस समझौते के संभावित लाभों पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा।
2: 15 तारीख से भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर वहाँ पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है।
1: इस समझौते के लागू होते ही पहले ही दिन देश के 20 से अधिक बंदरगाहों, हवाई अड्डों, इनलैंड कंटेनर डिपो, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक इकाइयों से 50 से अधिक निर्यात खेप ब्रिटेन के लिए रवाना की गई। इनका कुल मूल्य 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। उनके अनुसार इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को बाजार में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन तथा प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में आयोजित बिजनेस प्लेनरी सेशन में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार यानी CETA को लेकर क्या कहा।
2: India today does not

0: wish to negotiate weak agreements, substandard, small transactional relationships. In fact, the UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about traded goods and services. It's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other.
1: आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये समझौता क्या है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाला समझौता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त बाजार उपलब्ध होगा। यह भारत के लगभग पूरे निर्यात मूल्य को कवर करता है। कृषि क्षेत्र के लिए यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 1437 कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय किसानों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। योग्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसमें स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और इन्वर्टर जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की संभावना है। रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए भी 1206 शुल्क श्रेणियों में शून्य शुल्क बाजार उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को मिल सकता है। सेवाओं के क्षेत्र में भी यह समझौता विशेष महत्व रखता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का योगदान 50% से अधिक है, वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में यह हिस्सा 70% से भी अधिक है। ऐसे में आईटी, वित्त सेवाओं, शिक्षा, पेशेवर सेवाओं और डिजिटल कारोबार के लिए नए अवसर तैयार होंगे। समझौते में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रमाणन, पेपरलेस प्रक्रिया और आधुनिक सीमा शुल्क व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। इसी के तहत भारत ब्रिटेन CETA का पहला डिजिटल मूल प्रमाण पत्र ECOO 2.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया है।
1: स्पष्ट है कि ये समझौता केवल शुल्क कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार को अधिक सरल, तेज और आधुनिक बनाने का प्रयास भी है। लेकिन इसका लाभ किन किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा? किसानों, छोटे उद्योगों, महिलाओं, युवाओं और पेशेवरों के लिए इसमें क्या अवसर है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
3: भारत ब्रिटेन CETA का प्रभाव केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने की उम्मीद है। सबसे पहले बात वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम प्रधान उद्योगों की। इन क्षेत्रों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त बाजार मिलने से निर्यात बढ़ सकता है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह समझौता नए अवसर लेकर आएगा। भारतीय अस्पताल ब्रिटेन के अस्पतालों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर काम कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ब्रिटेन के शिक्षण संस्थान भारत में अपने परिसर खोल सकेंगे। वहीं भारतीय संस्थानों को ब्रिटेन में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और शिक्षा से जुड़ी नई तकनीकों यानी एडटेक के क्षेत्र में काम करने के अवसर मिलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई देगा। भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए ब्रिटेन में काम करना पहले से अधिक आसान हो सकेगा। इसके साथ ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCCs को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आसान शब्दों में कहें तो बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में केवल बैंक ऑफिस का काम ही नहीं बल्कि रिसर्च, नई तकनीक विकसित करने, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम भी भारत से करा सकेंगी। इससे उच्च कौशल वाले रोजगार और निवेश के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए भी यह समझौता नए अवसर लेकर आता है। इसमें व्यापार, नवाचार और उद्यमिता में महिलाओं तथा कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही श्रमिक अधिकारों, लैंगिक समानता और बेहतर कार्य परिस्थितियों को भी महत्व दिया गया है। आईटी और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन का बड़ा बाजार खुलने की संभावना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME को सरल सीमा

0: शुल्क प्रक्रिया, डिजिटल दस्तावेज और कम अनुपालन लागत का लाभ मिलेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को अधिकतम 5 वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। सरकारी खरीद के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन के लगभग 90 अरब पाउंड के सरकारी खरीद बाजार तक पहुंच मिलेगी। कुल मिलाकर यह समझौता व्यापार के साथ साथ निवेश, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार को भी नई गति देने की क्षमता रखता है। विश्लेषण के लिए करिश्मा राय।
1: भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये भविष्य की आर्थिक साझेदारी का एक मजबूत आधार भी है। एक ओर ये भारतीय निर्यातकों को दुनिया के प्रमुख बाजारों में बेहतर पहुंच देता है, तो दूसरी ओर निवेश, डिजिटल सहयोग, नवाचार और पेशेवर सेवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार करता है। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रखे गए हैं। इसमें किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, महिलाओं, युवाओं, स्टार्टअप, पेशेवरों तथा सेवा क्षेत्र सभी के लिए अवसरों की कल्पना की गई है। इस प्रकार भारत ब्रिटेन CETA दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ साथ विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा आर्थिक संकटं सम्मुखीकरणाय बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रेषु दृढ़ क्षेत्रीय सहयोगस्य भारतेन महती अनिवार्यता प्रख्यापिता। यत्र सीमाः न केवलं सुरक्षिताः अपितु सुसंपर्कयुताः स्युः, तत्र विकासः राष्ट्रीय सुरक्षा च एकेन एव मार्गेण प्रवर्धते इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः सप्रश्रयम् अवोचत्। नवम कक्षायां तृतीय भाषा नियमस्य प्रवर्धनेन छात्रेषु मानसोद्वेगं विलोक्य पंचम षष्ठ कक्षयोः एव तस्य समावेशाय सर्वोच्च न्यायालयस्य श्लाघनीयो परामर्शः। पुण्यभूमौ पुर्यां सुदृढ सुरक्षा वलये वैदिक मंत्रोद्घोषैः सह श्री जगन्नाथ रथयात्रायाः मंगलमयः शुभारंभः। अपि च भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एकदिवसीय स्पर्धा अद्य सांप्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय दृढ क्षेत्रीय सहयोगस्य अनिवार्यतां प्रत्यपादयत्। तेन सबलं प्रोदीरितं यत् बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रैः परस्पर कल्याणाय एकीभूय संकल्पाः करणीयाः। सः अद्य नवदेहल्यां समुपस्थितानां बिम्स्टेक देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखाणां पंचमं सम्मेलनं संबोधयनासीत्। श्री डोभालेन स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति समग्रं जगत् विविध संघर्षैः भूराजनैतिक अनिश्चितताभिः च ग्रसितं वर्तते। तेन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु विघ्न निवारणाय आर्थिक आह्वानानां निराकरणार्थं च बिम्स्टेक सदस्य देशानां मध्ये सहयोगस्य आवश्यकता समुपस्थापिता। भारतस्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् प्रशासनस्य अयं श्लाघनीयो प्रयासो वर्तते यत् तादृशस्य नूतन भारतस्य निर्माणं भवेत् यत्र राष्ट्रस्य सीमाः न केवलं सुरक्षिताः स्युः अपितु ताः सुदूर क्षेत्रैः च सह सर्वोत्कृष्ट संपर्क

अनशने निरतो वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य अथ न्यायाधीशस्य तेजस कारिया इत्यस्य खण्डपीठाभ्याम् दृढ़ व्याहृतम् यत् प्रशासनीय चिकित्सकैः श्री वांगचुकस्य स्वास्थ्य स्थितेः नियमितरूपेण परीक्षणं करणीयम्। केन्द्र प्रशासनस्य देहली प्रशासनस्य च पक्षतः उपस्थापितः महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायपीठस्य पुरतः न्यवेदयत् यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनं देशाय बहुमूल्यं वर्तते, अतः वांगचुकस्य नियमित चिकित्सकीय परीक्षणे प्रशासनस्य कापि विप्रतिपत्तिः नास्ति अपितु पूर्ण सहमतिः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां प्रवासाय निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिता। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंद नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे सप्तशताधिक चतुर्दश सहस्र कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य स्वकीयं एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीनदेशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य साम्प्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और अब आइए सुनते सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187। निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स। Most Asian stock market indices close in negative zone and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार आज सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 77,187 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंक नीचे आया। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil, over to you for the first story.
1: Yeah. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार किया। सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि बाद के समय में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई बाजारों से मिले असंतोषजनक संकेतों के बीच निवेशकों का सतर्क रुख देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex added just 1 point to close at 77,187. The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 dropped 0.4% and small-cap 100 index fell by 0.1%. Earlier markets opened on a positive note and traded with modest gains during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half. Investor sentiment remained cautious amid geopolitical uncertainties, elevated crude oil prices and weak cues from Asian markets.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयरों में 1.8% से ज्यादा, एचसीएल टेक में 1.7% और बजाज फाइनेंस में 1.6% का उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई तथा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 0.9% से अधिक की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, realty dropped 0.9%, financial services as well as hospitals dropped 0.6%, and PSU banks lost over 0.5%. In contrast, consumer durables jumped 1.1%, IT as well as focused IT rose 0.6%, and auto added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,224 companies declined, shares of 2,012 companies advanced, while shares of 205 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.56 पर बंद हुआ।
0: And Puneet, as we just read, and you know, the markets were mostly driven by global cues. So what is your assessment of, because we see it's not so much as domestic cues which are affecting the markets these days, it's basically all the cues are coming from the global markets and whatever is happening at the geopolitical front.
2: Anubhav, you're right. We see a lot of activity or uncertainty in global markets right now, and you will see that the markets are really volatile across the world. Actually, in comparison to India, these markets are very volatile. Indian market is quite resilient. It's quite stable. It's not moving much in the last few weeks. We see a lot of volatility in geopolitical situations. We see a lot of economic news coming. So US had a piece of news recently, yes, with the inflation actually came down in USA. And we were expecting it to go up, but actually the real numbers came out to be much lower than expected. But in some other parts of the world, particularly Korea and Japan, we saw that inflation shot up. So clearly the situation in the global economy is quite unpredictable right now, and the markets are also behaving in that manner. Given this situation, or given this environment of uncertainty, I think Indian markets have been quite stable. We have seen a steady rise. We saw a sudden fall last week, but then the markets regained. So I think if you really look at the numbers, you look at the broad trends, the markets are going nowhere. They go one step forward and they come back, because I guess they're trying to figure out where we are headed over the next 2-3 months. Meanwhile, we have the earnings season now coming up, and that will really determine where we head next.
0: So you're saying, when you say that the markets are not really heading anywhere, you know, it's like one step forward, one step. So in a way, actually, look at, if I mean, the way I look at it, it's actually good news, because if they're not moving forward, much forward, they're not even going back that much. So overall, if you have a, you know, you can remain calm and composed and, you know, just be there, stay put. It's not such a bad news.
2: It's not such a bad news, because the investors, you know, they're taking comfort from the fact that they can stay invested. Otherwise, there would have been some kind of panic. We of course, continue to see very large scale selling by the foreign investors who are selling worldwide. And today, in fact, I'm sure later in the news, you will read about what happens in the Korean market.
0: Yes,
2: And they fell very sharply. So FII is also in a state of flux right now. Given that there are steady fund flows in India, and we are seeing stability. Again, I would say that this is a period of consolidation for Indian markets. See, we are quite attractive now in terms of valuations compared to many other Asian markets, many other US segments or the market segments. So my guess is that we will take a couple of months to stabilize and then probably take a cue from there.
1: Puneet, agar bhartiye arthvyavastha ko lekar ke aur bhartiye share bazaar ko lekar ke hum baat kare, to filhal bhartiye bazaar ke liye ek bada jokhim आपको लगता है कि कोई हो सकता है, खासतौर पे ऐसे समय में जब निवेशक बहुत ही सतर्क रणनीति अपना रहे हैं, तमाम जो चुनौतियां हम देख रहे हैं जिनकी अभी हमने कुछ देर पहले बात की, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं?
2: निखिल, देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो हालात चल रहे हैं और वहां पर ऑयल प्राइसेस अभी कंट्रोल में आ गए थे, फिर अचानक दोबारा से बढ़ गए, और हम देख रहे हैं कि भारत में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी रिलेटेड है. अभी हमारे पास कुछ हेडरूम है, कुछ कंफर्ट है, और हम उसको और अपने को मजबूत बना सकते हैं. मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा चाइना के ऊपर. अभी हाल में चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं, 2 या 3 दिन पहले आए हैं नंबर, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने, जबकि वहां पर देखिए गवर्नमेंट डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना, पर उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जबकि उनका लक्ष्य 5% था. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और यदि भारत में हम 4.5-6% के साथ की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
0: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड.
1: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था, या कुछ बदलाव आया है?
2: बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा लगा रहे हैं, उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं. आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है. अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इनफ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है, और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे.
0: पर जब हम भरोसे की बात करें, जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting, is because of geopolitical situations. When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India's progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
2: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
0: Yeah.
1: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
2: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोज की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोज अब कम हैं, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं,
1: लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है।
2: उसमें गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक, एक संकेत होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे, अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है, लार्ज कैप जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
0: सो लाइक यू सेड, इफ द रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इज एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आर रिटेल इन्वेस्टर्स, यू नो दैट, लाइक यू सेइंग इन द बिगनिंग एवरीबडी वुड लुक फॉर एट लार्ज कैप्स बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, बट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दैट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी,
2: दैट शोज मैच्योरिटी, दैट शोज कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन लार्ज, यू नो, नंबर ऑफ
0: इन द इंडियन स्टोरी एज वेल। Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 50

0: 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
1: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था, जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था। इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही, जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है। उधर यूरोपीय बाजार में आज नकारात्मक रुख देखा जा रहा है। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैग 40 0.9%, जर्मनी का डेक्स 0.8% से ज्यादा और लंदन का फुटसी 100 0.3% नीचे आ गया था। पुनीत, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा, 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पे ध्यान हमें रखना जरूरी है, तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें?
2: देखिए, कोरिया का जो शेयर बाजार रहा है पिछले 2 वर्षों में वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है। पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी। तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत, मैं कहूंगा, तेजी रही और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप, मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं उसकी एक दो कंपनी है, बड़ी कंपनी, और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ और इसीलिए वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है। आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा, थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था, उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया। तो इतना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है, लेकिन नैरो मार्केट है। उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार हैं वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं, पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है, क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है। FII पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, हमने इनकी बात करी, ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी, वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा। तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है और मुझे लगता है कि कमजोरी रही।
1: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है, जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है खासतौर पर पूंजी जुटाने के लिए,
2: और वो तो बहुत नेगेटिव है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, जैसे कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन लाना चाहते हैं। वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर, ग्रोथ कम करना चाहती है, तो वो हमारे लिए बेहतर है, पर डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा।
0: पुनीत, लाइक यू सेड, यू नो इंडेक्सेस लाइक द साउथ कोरियन कोस्पी एंड अदर, वेयर if we talk about South Korean KOSPI, the weightage of certain companies which are associated with chip manufacturing, you know, that very big percentage or very, the weightage is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
2: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, KOSPI, for instance, has weightage of 55% from just 2 companies.
0: Yes.
2: Only 2 companies contribute 55% to the index weightage.
0: Yeah.
2: So what kind of money would one invest in that economy?
0: Yeah.
2: Because you are concentrated investment only in 2 companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there, and there are substantially large companies. So I think in long term, foreign investors or all kinds of investors.

0: Investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in. In other markets, which are narrow markets, they may make money in the short term. No?
1: Yes.
0: So they tried to make hay in the last couple of years.
1: Yeah.
0: But I think in the longer term, they will definitely come to India. And,
1: right.
0: and what we saw was last 2 years, they pulled money out of India. They
1: yeah.
0: put it in those momentum markets.
1: Yeah.
0: But eventually, for the long-term growth, they will have practically no choice other than India to invest in.
1: Well, that's good okay. news. And let's move on to the US markets now. Wall Street ended on a positive note yesterday as easing inflation data and a strong start to the second quarter earnings season boosted investor sentiment. Among the major indices, the NASDAQ Composite Index rose 0.6%, the S&P 500 advanced 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average edged up 0.3%. On the economic front, the Producer Price Index PPI declined 0.3% in June, according to data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics. And the next news from Nikhil.
2: जी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और 3 मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
0: निखिल, देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम,
1: जनधन
0: अकाउंट्स,
1: आधार
0: और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंटरपीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि छोटे छोटे गांव में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे, वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं, जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में, जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे, बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन। और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो।
2: इसमें स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बहुत बड़ी भूमिका। देखिए, ये बात तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप ऐप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो इसको जो एक मैं कहूँगा एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था। उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने। पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स की कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
2: जी,
0: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं कि, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पे पड़ा है।
1: पुनीत, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल inclusion index and when we're talking about financial inclusion, financial literacy, how big a role and how crucial is it when, you know, we talk about we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047. How crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
0: So Anubha, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty.

0: ये कहूंगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न्स अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खासतौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
1: यानी कि हर एक बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, उस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, एब्सोल्युट। और उस रिसर्च करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
1: बिल्कुल पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 points, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस close in negative zone, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: अशोक जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल सेमिकॉन 2.0 से जुड़े फैसले के बारे में क्या कहा।
2: सेमिकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
1: अशोक जी, अभी हमने केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव को सुना, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मेमोरी चिप की कमी से जूझ रही है, तो भारत की इस अहम सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सेमिकॉन 2.0 की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
3: देखिए, मैं कहूंगा बहुत जरूरी मुद्दा है भारत के लिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में अप एंड डाउन जिसके बोलते हैं होते रहता है। ये इंडस्ट्री करीबन 60-70 ईयर से चल रही है। ये जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर का, इसको कहते हैं कि लॉन्ग गेस्टेशन, मतलब लॉन्ग हॉल
1: जी।
3: इसको चिप की इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाने में ही 3-5 साल लग जाते हैं, और वो फैक्ट्री बनने के बाद में ये 20-25-40 साल तक चलते रहती है। तो ये जो कमी असर है चिप का, मेमोरी और जीपीयू वगैरह, उसको बाजू में अगर हम रखे तो हर जगह, जैसे मोबाइल फोन, कार, टीवी, इक्विपमेंट, अस्पताल, मेडिकल, डिफेंस, सब में इस चिप की जरूरत है। और आज हम भारत में इस जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 95% से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब विदेशों से हम मंगाते हैं इसको
1: जी।
3: और अभी ये जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम फेज 2 जिसे बोला जाएगा, कल लॉन्च हुआ है। ये हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी थी भारत सरकार की, सेमिकॉन फेज 1 और सेमिकॉन 1.0, उसका एक्सटेंशन माना जाएगा। और इस फेज में अभी फेज 1 का फाउंडेशन लेकर के तेजी से आगे बढ़ने का उद्देश्य है
1: जी।
3: जिससे हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं, लेकिन चिप बनाने के लिए, निर्माण के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और इसी दिशा में यह नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। हम देख रहे हैं कि इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एड होगी जिसे हम कहते हैं
1: जी।
3: देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, तो हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा, और इसी दिशा में इसी साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि हम इसमें आत्मनिर्भर बने।
1: सेमिकॉन 2.0 के जो कल, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो कल घोषणा की गई है, इसके मुख्य बिंदु क्या है।
3: फेज 1 में हमारा $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था कंट्री में, प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी। अब फेज 2 में इसे आगे लेना

0: जिसमें पूरा इकोसिस्टम करना है, इसका मुख्य मुद्दा पूरा इकोसिस्टम रेडी करना है, और दूसरा है पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो मैं कहता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा इंग्लिश अल्फाज में बात
1: जी,
0: करूं
1: जी.
0: तो फेज वन में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है, और फेज टू में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, और वो करने के लिए हमें जो गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटिन्यूटी है, कमिटमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3C या 4C बन गए इसमें।
1: जी.
0: और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, मतलब जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATM भी कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में दी एक मशीनरी जो मुद्दा है, मशीनरी और मटेरियल्स, मशीन्स और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है
1: जी.
0: और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है, जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। और उसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस पॉलिसी से जो आउटकम होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, डिजाइन होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे, उसका हमें जोड़ना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी है PM, मैं ये कहूंगा कि हमारी ये जो पॉलिसी है इसके साथ में हमको इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी देखना होगा एज अ होलिस्टिक व्यू, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना है इंडिया में, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। तो हमारे जितना भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को फीड करेगा और इंडिया में वैल्यू एडिशन होगा। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है हमारा सेमिकॉन 2.0 का।
1: जी, और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलिए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन 2.0 के 6 मुख्य स्तंभों के बारे में क्या कहा।
2: सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स में। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब, उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा इसमें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती है उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है, और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: आपने अभी बात की कि जो ये मिशन सेमिकॉन 2.2 है, इसका एक बहुत अहम, इसका जो एक पिलर या स्तंभ कह सकते हैं, वो है मशीन और मटेरियल से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो मिनरल्स और जो गैस समेत जो कच्चे माल की मैन्युफैक्चरिंग और जो R&D है, जो कंपनियां इनमें शामिल होंगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसे आप किस तरह देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है कि उन कंपनियों को जो कि कच्चे माल के मैन्युफैक्चरिंग में और R&D में जो शामिल होंगी उनको इंसेंटिवाइज करना आप कितना अहम मानते हैं?
0: मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहले तो अगर हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस सेमीकंडक्टर क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, तो ये सब हमें करना पड़ेगा। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री अच्छी है, थ्राइविंग, जैसे इस मटेरियल हम बनाते हैं, लेकिन वो सब सेमीकंडक्टर ग्रेड में आज नहीं है, और वो करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। कुछ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी और वो टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार करना पड़ेगा। वो इसीलिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईडी, मतलब भारत सरकार ने ये एक बेनिफिट दिया है, जिससे कि जो इंडिया के बहुत सारे कॉरपोरेट जो आज केमिकल्स, गैसेस, मटेरियल बना रहे, वो अपने प्रोसेस अपग्रेड करेंगे और सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं 99.9999%, मतलब 6.9% और 7.9% तक लाना है, वो इसको कर पाएंगे। और ग्लोबल कुछ लोग जो कंपनीज है उनको भी इंडिया में हम इस तरीके से ला सकते हैं।
1: आपने क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक सहयोग की बात की, तो ISM के जो दूसरा चरण है उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट विदेशी सहयोग पर भी फोकस करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को, जो विदेशी मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भारत में अपने यूनिट्स लगाने के लिए आकर्षित करना, और यहां कुछ सबसे

0: एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की कोशिशें शामिल हैं। तो ये जो हम ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माणकर्ता हैं और जो सप्लायर हैं, इनको भारत में लाने के लिए कोई खास इंसेंटिव देंगे? और ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर ISM 2.0 को किस तरह की प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है?
1: सेमीकंडक्टर डिजाइन में हम काफी आगे हैं, क्योंकि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दो पार्ट्स है, दो पहलू है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो डिजाइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास में जो टैलेंटेड पूल है, ये विश्व का 20% टैलेंटेड पूल इंडिया में है, डिजाइन हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम काफी पीछे हैं, क्योंकि हमने ये किया नहीं पहले काम। इसलिए अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्थिर नीतियां है, मतलब स्टेबल पॉलिसीज, और कुशल मानव संसाधन टैलेंट, और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं, और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। एक कंपनी है जैसे माइक्रोन, उन्होंने तो खुद का प्लांट लगा दिया। टाटा ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया ताइवान कंपनी से। इस तरीके से वो आगे बढ़ा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कंपनीज को प्रोत्साहित करें, और वो काम इससे होगा। और जो ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, ये पॉलिसी सेम है, अगर ग्लोबल लोग आते हैं उनके लिए भी सेम बेनिफिट दिया जाएगा। ये जो कैपेक्स का बोला है सब्सिडी 30% 40% जो भी है वो उन्हें भी मिलेगा, और इंडियन कॉर्पोरेट अगर ज्वाइंट वेंचर करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं, उन्हें भी ये मिलेगा। तो ये इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक मुद्दा इसमें, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, 17-18-19 सितंबर को दिल्ली में होगा। इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती हैं। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी, अपने प्रोडक्ट सॉल्यूशन करेंगे, वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है सेमिकॉन इंडिया, इसके तहत भी हम प्रमोशन करते हैं इन पॉलिसीज का।
0: जी, आपने बात की स्किल्ड वर्कफोर्स की, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो डिजाइन है उसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है। टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सेमिकॉन 2.0 में किस तरह के प्रावधान हैं? क्या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमारे संस्थान है उनसे टाई अप किया जाएगा? किस तरह के इसमें प्रावधान है?
1: देखिए, भारत की ये तो सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास टैलेंटेड पूल है, और मैंने भी जस्ट जिक्र किया था कि हमारे पास 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर है। इस पॉलिसी में एक पिलर है हमारा टैलेंट डेवलपमेंट का, इस पॉलिसी में जो सरकार ने अनाउंस किया है
0: जी।
1: तो इसके साथ में इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब उद्योग और शिक्षण संस्थाओं में सहयोग किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग बनाई जाएगी और आधुनिक प्रयोगशालाओं को बनाया जाएगा, जिसमें कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक प्रोग्राम चल रहा था जैसे C2S, चिप टू सिलिकॉन, इसके तहत ऑलरेडी 350 से ज्यादा इंस्टीट्यूट को इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट टूल्स का लाइसेंस दिया गया है, वो भी चिप बना रहे हैं, और हमारे कुछ स्टूडेंट चिप बना के अगले चरण में वो चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ किया जाएगा। तो इस तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो इंडस्ट्री बॉडीज है जैसे सेमी और IESA, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमी एसोसिएशन, इनके भी टैलेंट डेवलपमेंट के, उसके बोलते वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लगे हुए हैं। NIELIT NELET, जो कि MIT का एक आर्म है, और हमारा जो AICTE है, ये सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं कि जिसमें कोर्स करिकुलम अपग्रेड हो गए और लैब बनाए जाएंगे, प्रयोगशाला जिसे कहते हैं, और उसमें ट्रेनिंग किया जाए।
0: जी, इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा? दूसरे जो क्षेत्र हैं विकास में, उन क्षेत्रों में विकास को सपोर्ट करने के लिए इस फैसले का क्या रोल होगा?
1: देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक सिर्फ सेमीकंडक्टर उद्योग नहीं रहा, इसके साथ में जब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगती है तो मशीनें लगती है, केमिकल गैसेस है, लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, ये सब विकसित हो इसके साथ में हो जाते हैं। और ये जो पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, इससे हमें लगता है कि करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर, मतलब 4,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कल आदरणीय मंत्री जी ने अपने ब्रीफिंग में ये बताया था, और हम भी उसी तरह डायरेक्शन में देख रहे हैं एज ए इंडस्ट्री बॉडी। और ये जो नए उद्योग लगेंगे तो इसके साथ में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और उसके साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, रूल ऑफ थंब, कि फॉर 1 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देयर इज अ 10 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से करीबन 2-3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगे, और मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब उसमें करीबन 20 लाख के करीबन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को इसमें रोजगार का अवसर मिलेगा।
0: जैसा भी हमने बात कर रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से 1.27 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज अनाउंस किया है, पर सेमिकॉन 2.0 की सफलता के लिए प्राइवेट सेक्टर

0: का रोल कितना जरूरी है, कितना अहम है?
1: इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है। सरकार तो एक इनिशियल इनपुट और हेल्प दे रही है जिससे कि ये इंडस्ट्री चल पड़े, तो इसमें मैं कहूंगा सरकार का रोल जो एक कैटलिस्ट है, लेकिन पूरा मेन रोल इसमें प्राइवेट सेक्टर का है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये हमारा एक फाउंडेशन इंडस्ट्री है और इसे हमें विकसित करना होगा, ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है ये
0: जी।
1: तो प्राइवेट सेक्टर को भी उस और देश की सॉवरेनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसी में प्राइवेट सेक्टर का ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कहा जाएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट
0: जी। अशोक चांदक जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ढलते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ एक बार फिर सजी है सांझ ढले की महफिल। और आज की इस महफिल की मेजबान हूं मैं, यानी विभा, शुभ संध्या। तो चलिए अगले कुछ पलों के लिए चलते हैं उस सुनहरे दौर में, जब हर गीत में सादगी थी, हर धुन में अपनापन था और हर आवाज सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें ढलती शाम का सौंदर्य भी है और प्रेम की मीठी सी तड़प भी।

0: सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा अभी जा
1: जा जा जा जा जा तू जा
0: जा।
2: अभी आपने सुना साल 1960 की फिल्म काला बाजार का मधुर गीत, आवाज आशा भोसले और मनाडे साहब की, और संगीत सचिन देव बर्मन का। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ, और अब बारी है एक ऐसे गीत की जो अपनी चुलबुली अदा और हल्की फुल्की शरारत के लिए दशकों से सुनने वालों की पसंद बना हुआ है, और ये गीत है साल 1951 की सुपरहिट फिल्म अलबेला, जो अपने समय की सबसे सफल संगीत प्रधान फिल्मों में गिनी जाती है। और गीत लीजिए, सुनिए।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद पेश है एक ऐसा गीत जिसमें भारतीय लोक संगीत की सौंध ही महक है, गांव की सहजता और अपने प्रिय से मिलने की मीठी सी चाह।

और अब आज की सांस चले का आखिरी गीत। भाई रिश्तों में रूठना मनाना भी तो प्यार की ही एक खूबसूरत रंग होता है, है ना? और यही रंग बड़ी सादगी से दिखाई देता है साल 1961 की फिल्म आस का पंछी के इस गीत में। ये बताता है कि प्यार में छोटी छोटी नाराजगियां भी रिश्तों को और गहरा बना देती हैं।

0: आज सांझ ढले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद। और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रखरखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशीय तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। रेलगाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका लक्ष्य युवाओं को अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए आवश्यक हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है।
2: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में भी लागू की जाएंगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान भी करेगी। इसके अलावा इन इंक्यूबेशन सेंटरों के संचालन, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, नवाचार गतिविधियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए हर वर्ष संचालन संबंधी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नीति के तहत इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों के माइलस्टोन आधारित वित्तीय सहायता भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने साल भर चलने वाली हीरक जयंती कार्यक्रमों के कैलेंडर और कॉलेज के डिजिटल आर्काइव्स के QR कोड का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पिछले 6 दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का विकास कर रहा है।
3: कॉलेज में अपनी अपनी फील्ड में इस भावना को जरूर इस दिन के कोने में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं। आज राष्ट्र देवो भव का मतलब जिसने समझ लिया, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। और इस पावर फीलिंग में हम सब जुड़ जाते हैं, एक एक भारतीय जुड़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति देश के प्रधान मोदी जी ये करते हैं तो हम 140 करोड़ भारतीयों को उस पे गर्व होता है।
1: श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास विकसित करने की योजना बनाई गई है। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेज की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय ने NIRF रैंकिंग में 101वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 39वां स्थान प्राप्त किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण किया है। रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है। इन सुविधाओं में आरामदायक फर्नीचर, बेहतर लाइटिंग और वेंटिलेशन, आसान एक्सेस और पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल जैसी चीजें शामिल भी की गई हैं। JMI के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर साइमा सईद ने कहा कि यह कदम छात्रों के लिए आधुनिक, समावेशी और छात्र अनुकूल लर्निंग का माहौल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण करेगी। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके अपने घरों के नजदीक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर विशेष बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली का लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण, मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक QR कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। इस पहल में लोक निर्माण विभाग का लगभग 1400 किलोमीटर का दायरा शामिल है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज त्यागराज स्टेडियम में पुनर्स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का निरीक्षण किया और शहर में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में 1000 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के पुनर्स्थापन और 500 नई वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 400 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों का पुनर्स्थापन पूरा किया जा चुका है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज भलसवा स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS आवास परियोजना का निरीक्षण कर मरम्मत और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री सूद ने कमरों के आकार, नई फ्लोरिंग और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस परियोजना में 7400 से अधिक EWS फ्लैट शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का वादा और गारंटी है, उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये आवास योजना के साइज को बड़ा किया गया है, उसी को मैच करने के लिए इन पुराने बने मकानों में ऑल्टरेशन करने के बारे में हमने चर्चा की। हम प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी थे, उनका सपना दिल्ली के गरीबों को सम्मानजनक आवास देने का था, वो अवश्य पूरा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
5: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। जांच के दौरान एक मजबूत वित्त नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसे कई बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच से ये भी पता चला है कि नकद निकासी और कई छोटी छोटी धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से संदिग्ध लाभार्थियों को धनराशि भेजी गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्ग वाली 110 कार्टन अवैध शराब और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजौरी गार्डन में अवैध शराब की तस्करी में शामिल था। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अपने 3 निर्वाचित पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें निर्मला देवी शर्मा, कृष्णा देवी राघव और सुल्ताना आबाद शामिल हैं। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्य योजना को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में शामिल हुए। त्यागराज नगर में रथ यात्रा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने हौसखास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 48वीं वार्षिक रथ यात्रा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रख रखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है और इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आइए सुनते हैं रथ यात्रा पर रेडियो रिपोर्ट।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पुरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा,

लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्नवेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गजवेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आंकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के

0: कथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है, भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे

थे, आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने को होस्ट प्रशांत के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रशांत, फुटबॉल विश्व कप का महाकुंभ अब अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया और रविवार को अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके अलावा और किन खेल खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी?
1: नवीन स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में अपने लिसनर्स को इंग्लैंड के कार्डिफ के मैदान में ले चलेंगे, जहां इस समय दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत और इंग्लैंड आमने सामने है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने नया इतिहास रचा, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं नवीन, आगामी एक दिवसीय और T20 वर्ल्ड कप के नए क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर भी बात होगी।
0: शांत, क्रिकेट के मैदान से निकलकर हम अपने लिसनर्स को जापान लिए चलेंगे, जहां बैडमिंटन कोर्ट पर पीवी सिंधु लगातार शानदार प्रदर्शन कर रखी हैं और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
1: लेकिन नवीन, आज की सबसे पहली खबर रहेगी बॉक्सिंग के कोर्ट से, जहां भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए हैं।
0: तो अगले 15 मिनट तक बने रहिए मेरे और प्रशांत के साथ और नजर उन तमाम खबरों पर जिसके साथ आपको इंतजार रहेगा। खेल प्रेमियों को क्या है उनका सरोकार आपसे।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से नवीन, जहां भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। नवीन, अगर पुरुषों के अंडर 23 वर्ग की बात की जाए तो विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण, जबकि वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। विश्वनाथ ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जापान के डाइची इवाई को और गंगा ने कजाकिस्तान के जुलाटन बुरान बेग को 3-2 से हराया। नवीन,
0: वहीं प्रशांत, वंशज ने बहादुरी दिखाई लेकिन उन्हें उज्बेकिस्तान के इल्मे खुमजून एर्गोशेव के हाथों 1-4 चार अंक से हारकर मैच अपने हाथ से गंवाना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लेकिन अगर अंडर 19 पुरुष फाइनल की बात करें तो भारतीय बॉक्सरों ने प्रशांत जबरदस्त कोशिश की, लेकिन सिर्फ हमें सिल्वर मेडल ही मिला। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य उज्बेकिस्तान के एलियोर रुस्तमोव से 5-0 से हार गए। वहीं 90 किलोग्राम वर्ग में शुभम राजपूत को उज्बेकिस्तान के अजदबेक सुल्तान बोएव के हाथों 0-0 के मुकाबले 5 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि लगातार भारत बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करता आ रहा है और जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि भारत आगे और शानदार प्रदर्शन करेगा और कई पदक अपने नाम करेगा।
1: बिल्कुल नवीन,
0: इससे पहले अगर बुधवार की बात करें, कल की बात करें, तो इंडोनेशिया में हुए फाइनल में अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन हुआ। अंडर 19 और अंडर 23 श्रेणी में कुल 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। और अब आपको हम लिए चलते हैं सीधा कार्डिफ, जहां पे इसमें दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है और भारत ने ताजा समाचार मिलने तक क्या स्कोर बना लिया है प्रशांत?
1: 38वें ओवर में नवीन 7 विकेट पर 201 रन बना लिया है भारत ने।
0: 38वें ओवर में भारत के 201 रन बन चुके हैं, 7 विकेट प्रशांत गिर चुके हैं। शुरुआत मैच की बहुत अच्छी हुई थी और हमें लग रहा था कि भारत एक लंबा स्कोर करेगा, लेकिन एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए। जिस तरह से ईशांत का विकेट गिरा और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब लग रहा था कि शायद हैट्रिक भी हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल नवीन, और भारत टीम जो है इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ भी उतरी है। KL राहुल के स्थान पर ईशान किशन को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया है।
0: वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की

0: टीम में भी दो बदलाव किए गए हैं। शाकिब महमूद और एटकिंसन को जॉस्टन और लियाम डासन की जगह टीम में शामिल किया गया है। और भी कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं प्रशांत
1: जी, बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नवीन 8000 रन पूरे कर लिए हैं। रोको ने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में यानी आज के मुकाबले में ही किया है नवीन। यह भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक रन जोड़ने के मामले में तीसरे नंबर की जोड़ी बन गई है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सबसे आगे हैं
0: जिन्होंने सभी फॉर्मेट पे कुल मिलाकर 12,400 रन जुटाए हैं। थोड़े और आंकड़ों की प्रशांत अगर बात करें तो तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लगभग 11,000 रन जोड़े हैं और इसी लिस्ट में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी चौथे स्थान पर रखी है।
1: बिल्कुल, और तीनों फॉर्मेट में इन्होंने करीब 7,500 रन से ज्यादा रन जुटाए और वीरेंद्र सहवाग और मौजूदा जो कोच है भारत के गौतम गंभीर ने भी 7,000 से ज्यादा रन जुटाए हैं इस फॉर्मेट में नवीन।
0: भारतीय टीम की बात करें तो पहला मैच भारत ने 1-0 से जीत लिया है। दूसरे मैच में भारत लगातार कोशिश कर रहा है। 12 ओवर इस समय लगभग बचे हैं प्रशांत, 201 रन है, कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि इस समय भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज इस समय मैदान पर हैं। उम्मीद हमें ईशान किशन से थी, उम्मीद हमें और भी बहुत सारे बल्लेबाज से थी, लेकिन शायद वो खरे नहीं उतरे हैं।
1: बिल्कुल नवीन, और अभी इस वक्त श्रेयस अय्यर जो कि T20 भारत के कप्तान भी है वो एक तरफ से डटे हुए हैं और बहुत मजबूती देकर भारत को 200 के पार पहुंचा है, और अगर भारत 250 तक पहुंचती है नवीन तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है।
0: प्रशांत, खेल प्रेमियों को और खासकर अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो उन्हें अक्षर पटेल और उनके जोड़ीदार वॉशिंगटन सुंदर पे आज एक खासी नजर उनकी रही होगी, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में एक शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार दोनों ही बल्लेबाज नहीं चले।
1: बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 गेंदों का सामना कर 2 रन बनाए और अक्षर पटेल महज 1 रन ही बना सके, और उधर शिवम दुबे जो खाता भी नहीं खोल सके, लगातार T20 में अच्छा प्रदर्शन रहा है नवीन शिवम दुबे का, लेकिन एक दिवसीय में वो छाप नहीं छोड़ सके हैं अब तक।
0: मुझे लग रहा है टीम प्रबंधन ने यहां कुछ अलग तरह से टीम उतारी है और कुछ अलग तरह से बैटिंग ऑर्डर रखा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर से एक पायदान ऊपर आएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा पिछले मैच में तो शिवम दुबे को नीचे खींचा गया। शायद इससे ऐसा लगता है कि उन पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा हो, क्योंकि लगभग 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा हमारी नजर रहेगी एक और क्रिकेट से जुड़ी खबर पर, वो है कि ICC ने कल नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनका ऐलान एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक के बाद किया गया।
1: नवीन, वनडे और T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से T20 में सुपर 10 से तय होंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला गया है। सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट,
0: विशाल।
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी एक दिवसीय और T20 के लिए नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2027 का एक दिवसीय विश्व कप और 2028 का T20 विश्व कप नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमों के साथ नया 3-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा। इसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे, वहीं T20 विश्व कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें रैंकिंग की आखिरी 3 टीमें राउंड रोबिन फॉर्मेट में आमने सामने होंगी और एक टीम दूसरे राउंड में पहुंचेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें ही होंगी। 6-6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ टीम तीसरे राउंड यानी सुपर 7 में पहुंचेगी। इसके बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इनकी विजेता टीमें फाइनल खेलेंगी। वहीं 2027 में एक दिवसीय विश्व कप में कुल 14 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इन 14 टीमों में से 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमें राउंड 1 खेलेंगी, जिसमें सिर्फ एक टीम अगले दौर में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमें 2 ग्रुप में खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 3 और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर एक टीम सुपर 7 में पहुंचेगी। सुपर 7 की 7 टीमें राउंड रोबिन मुकाबले खेलेंगी, जहां से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल के जरिए चैंपियन तक का सफर तय करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रशांत, एक नया फॉर्मेट आया है क्रिकेट के मैदान पर, अब देखना होगा कि ये जो नया फॉर्मेट है ये किस तरह से दर्शकों को, खेल प्रेमियों को लुभाता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं।
1: बिल्कुल।

0: नवीन, जो नए जो एसोसिएट नेशन है उनको भी बराबरी का मौका मिले और अच्छा प्रदर्शन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत ही लोकप्रिय और रोमांचक बनाने के मद्देनजर इसको ऐसा किया गया है नवीन।
1: और प्रशांत, लगता है कि खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और खेल नीरस ना हो जाए, क्योंकि जितना क्रिकेट इस समय देखा जा रहा है और जितना क्रिकेट इस समय हो रहा है खासकर क्रिकेट नेशन देशों में, तो उससे लगता है कि कहीं कहीं लोकप्रियता कम हो रही थी और शायद ये बदलाव क्रिकेट के लिए भी अच्छे होंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और अब नजर करते हैं सीधा हम फुटबॉल यानी कि फीफा विश्व कप पे। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है।
0: नवीन, अर्जेंटीना 86 मिनट तक कोई गोल नहीं कर सकी, 0-1 से पिछड़ रही थी। इसके बाद आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने अपनी किस्मत बदल दी और 2 गोल दागकर जीत हासिल की। अब फाइनल में उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा।
1: अगर हम अर्जेंटीना के खेल पे नजर डालें, पिछले क्वार्टर फाइनल में नजर डालें और सेमीफाइनल की बात करें, तो प्रशांत लगता है कि अर्जेंटीना का डिफेंस जो है वो कमजोर हो गया है। अर्जेंटीना के खेल की बात करें तो लगातार उनका अटैकिंग खेल होता है, उनके लगता है कि गोलकीपर को छोड़कर उनके 10 के 10 खिलाड़ी दुश्मन टीम पे आ जाना चाहते हैं और गोल करना चाहते हैं, और शायद यही कमी रह जाती है। अगर स्पेन के साथ मुकाबले की बात करें तो स्पेन ने उनके डिफेंस को भेदते हुए गोल कर दिया और लगातार 87 मिनट तक उन पर प्रेशर बना रहा।
0: जी बिल्कुल।
1: सुनते हैं इस पर रिपोर्ट सरफिरोजी की और फिर और कुछ जानकारी इस मैच के बारे में।
2: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अटलांटा में एंथनी गॉर्डन के 55वें मिनट के गोल से इंग्लैंड फाइनल की ओर बढ़ता दिख रहा था। हैरी केन के लंबे पास पर अर्जेंटीना का डिफेंस पूरी तरह क्लियरेंस नहीं कर सका और एंथनी गॉर्डन ने बॉक्स से आसान फिनिश किया। ये टूर्नामेंट में गॉर्डन का पहला गोल था और इस गोल के साथ ही इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया है। इसके बाद अर्जेंटीना ने अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया। टीम को 86वें मिनट में कॉर्नर मिला। लियोनेल मेसी ने शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडिस को दी। फर्नांडिस ने करीब 25 गज की दूरी से शॉट लगाया। इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी ने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने दाईं ओर से बॉल बॉक्स में भेजी। सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर लोटारो मार्टिनेज डिफेंडरों से आगे निकले और शानदार हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। अर्जेंटीना ने 7 मिनट के भीतर मैच पलटते हुए 2-1 से बढ़त बना ली और फिर मुकाबले को अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
3: Argentina will play Spain on Sunday.
2: Sarfirozi Sportscan.
0: नवीन, इस विश्व कप में अर्जेंटीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और अर्जेंटीना का यह 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा और टीम इससे पहले 1930 हो, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है और अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप जीत चुकी है। अब उसके पास लगातार दूसरी बार और कुल 4था खिताब जीतने का मौका होगा।
1: और प्रशांत, स्पेन की बात करें तो फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल के अंतराल के बाद फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने प्रवेश किया है और स्पेन फीफा विश्व कप के एक ही संस्करण में 6 बार क्लीन शीट रखने वाले इतिहास की पहली टीम बन गई है। और खास बात यह कि 2018 से 2021 के बीच 37 मैचों की अजेय लय के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। और अब बात बैडमिंटन की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सुनते हैं करिश्मा की रिपोर्ट।
4: 2019 की BWF चैंपियन सिंधु ने दूसरे राउंड में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के खिलाड़ी पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने सिर्फ 35 मिनट का समय लिया और 21-16, 21-14 से मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही चीन के खिलाड़ी हान के खिलाफ सिंधु का रिकॉर्ड भी बेहतर होकर 8-1 हो गया। पहले गेम में हालांकि शुरुआत धीमी रही, लेकिन बाद में सिंधु ने अपनी लय हासिल की और अपना दबदबा बनाते हुए 21-16 से पहला गेम अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में भी वही लय बनाए रखी, 8-0 की बढ़त हासिल की और हान यू को वापसी का कोई खास मौका नहीं दिया। हालांकि चीनी खिलाड़ी ने कुछ समय के लिए

0: अंकों का अंतर कम किया, लेकिन सिंधु ने समय बनाए रखा, मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और शानदार जीत दर्ज की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं भारतीय पारी पर। 40 ओवर में भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना लिए हैं।
2: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। ये अंक आपको हमें कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है sportscan.air@gmail.com। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2रा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव,

0: अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्था

0: शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेल

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
2: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था। आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है
1: जी।
2: और काफी हमने प्रगति की है और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है एक साल में, 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
1: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटीज जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल इंप्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैं मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रो है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया और उसका अप स्केलिंग किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
2: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उसपे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाए, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसपे फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशंस सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एल नीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटी

0: कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप, कहां पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनिनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने एलनिनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे। हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दूध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा। तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है। और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारे यहाँ जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी उस सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं, एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सोयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे दिल्ली चेन्नई मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की अस्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister, Dr. Mansukh

0: बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन की संसद ने सर्ही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के रक्षा सचिव एयर वाइस मार्शल संपत थुआंकुंथु से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और फिनलैंड ने आज आर्थिक और वित्तीय सहयोग मजबूत करने, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण तथा उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रिक्का पुर्रा के साथ बैठक की। श्री गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और उद्योग में सहयोग मजबूत करने के लिए फिनलैंड की राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत फिनलैंड संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के अवसरों पर भी विचार किया। श्री गोयल ने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री साकारी पोइस्तो से भी भेंट की। उन्होंने निवेश, नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप और व्यावसायिक साझेदारी में भारत फिनलैंड सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने एआई, 6G, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज सुबह किए गए हमलों में उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के अमरीकी हमलों में 35 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पहली बार राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों पर भी हमले हुए। अमरीकी हमलों में सेमनान प्रांत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ईरान में पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अमरीका को हुरमुज जलडमरू मध्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अल्जीरिया की राजधानी के पास एक अनाथालय में लगी आग में 11 बच्चों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। अल्जीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्वी उपनगर मोहम्मदिया में स्थित 2 मंजिला शिशु देखभाल संस्थान में आज सुबह आग लग गई। बचाव दल ने चलने फिरने में असमर्थ 5 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जबकि कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबोना ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कोरित्स्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन की संसद ने सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जैसे सुबह की पहली धूप, बारिश की भीगी हुई खुशबू या किसी पुरानी तस्वीर को देखते ही चेहरे पर आ जाने वाली मुस्कुराहट। पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की भी तो यही खास बात है कि ये वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर कोई नई याद, कोई नया एहसास साथ ले आते हैं। आज की इस महफिल में बातें होंगी इश्क की, यादों की, मोहब्बत की, इंतजार की, मुलाकातों की, जो जिंदगी की किताब में हमेशा ताजा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सदाबहार नगमों का एक खूबसूरत सफर इस बेहतरीन से गीत के साथ।

अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते शब्दों से ज्यादा खामोशियों में समझ आते हैं? पुराने गीत भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कम अल्फाज में दिल की पूरी बात कह जाते हैं, और शायद इसी वजह से बरसों बाद भी ये धुनें हमारी यादों का हिस्सा बनी रहती हैं। और जब कभी हम इन धुनों को सुनते हैं तो माजी के उन्हीं किस्सों में डूब जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो मोहब्बत की उसी सादगी और उसी खूबसूरती को अपने सुरों में समेटे हुए हैं।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन कुछ शामें जरूर होती हैं जब हर हवा का झोंका किसी की याद दिलाता है, और जब साथ हो पुराने हिंदी फिल्मी संगीत का तो हर लम्हा जैसे थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

कभी कभी कोई धुन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं पर ठहर गया हो। एक पुरानी सड़क, एक चाय की प्याली और रेडियो की हल्की सी आवाज और दिल में बसती हुई कोई मीठी सी याद, यही तो जादू है इन फिल्मी गीतों का। चलिए अब सुनते हैं एक और यादगार नगमा।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये हर दौर में अपने से लगते हैं, चाहे माँ बाप की पसंद हो या आज की पीढ़ी की नई खोज। अच्छी धुन और अच्छे अल्फाज कभी अपनी चमक नहीं खोते। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश की तरफ।

दोस्तों, रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनमें यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कुछ लोग साथ देते हैं और तो कुछ सिर्फ यादों में रहते हैं, लेकिन एक अच्छा गीत दोनों के बीच की दूरी को पल भर में मिटा देता है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत। और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,000 किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। इंडिया हैज क्रॉस्ड द 1 बिलियन मार्क इन सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉ मनसुख मांडविया सेड, इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम 19% इन 2015 टू 68.4% इन 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और अब आइए सुनते सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन फ्लैट नोट, सेंसेक्स सेटल्स एट

0: 77,187. Nifty drops 6 points. Most Asian stock market indices close in negative zone and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार आज सपाट कारोबार के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 77,187 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी 6 अंक नीचे आया. अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil, over to you for the first story.
1: Yeah. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार किया। सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि बाद के समय में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई बाजारों से मिले असंतोषजनक संकेतों के बीच निवेशकों का सतर्क रुख देखा गया।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे। द सेंसेक्स एडेड जस्ट 1 पॉइंट टू क्लोज एट 77,187। The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 dropped 0.4% and small-cap 100 index fell by 0.1%. Earlier markets opened on a positive note and traded with modest gains during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half. Investor sentiment remained cautious amid geopolitical uncertainties, elevated crude oil prices and weak cues from Asian markets.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयरों में 1.8% से ज्यादा, एचसीएल टेक में 1.7% और बजाज फाइनेंस में 1.6% का उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई तथा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 0.9% से अधिक की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, realty dropped 0.9%, financial services as well as hospitals dropped 0.6%, and PSU banks lost over 0.5%. In contrast, consumer durables jumped 1.1%, IT as well as focused IT rose 0.6%, and auto added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,224 companies declined, shares of 2,012 companies advanced, while shares of 205 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.56 पर बंद हुआ।
0: And, Puneet, as we just read, and you know, the markets were mostly driven by global cues. So what is your assessment of, because we see it's not so much as domestic cues which are affecting the markets these days, it's basically all the cues are coming from the global markets and whatever is happening at the geopolitical front.
2: Anubhav, you're right. We see a lot of activity or uncertainty in global markets right now, and you will see that the markets are really volatile across the world. Actually, in comparison to India, these markets are very volatile. Indian market is quite resilient. It's quite stable. It's not moving much in the last few weeks. We see a lot of volatility in geopolitical situations. We see a lot of economic news coming. So US had a piece of news recently, yes, with the inflation actually came down in USA. And we were expecting it to go up, but actually the real numbers came out to be much lower.

0: than expected. But in some other parts of the world, particularly Korea and Japan, we saw that inflation shot up. So clearly, it's not a the situation in the global economy is quite unpredictable right now, and the markets are also behaving in that manner. Given this situation or given this environment of uncertainty, I think Indian markets have been quite stable. We have seen a steady rise. We saw a sudden fall last week, but then the markets regained. So I think if you really look at the numbers, you look at the broad trends, the markets are going nowhere. They go one step forward and they come back, because I guess they're trying to figure out where we are headed over the next 2-3 months. Meanwhile, we have the earnings season now coming up, and that will really determine where we head next.
1: So you are saying, when you say that the markets are not really heading anywhere, you know, it's like one step forward, one step. So in a way, actually, look at, if I mean, the way I look at it, it's actually good news, because if they're not moving forward, much forward, they're not even going back that much. So overall, if you have a, you know, you can remain calm and composed and, you know, just be there, stay put, it's not such a bad news.
0: It's not such a bad news, because the investors, you know, they're taking comfort from the fact that they can stay invested. Otherwise, there would have been some kind of panic. We of course, continue to see very large scale selling by the foreign investors who are selling worldwide. And today, in fact, I'm sure later in the news, you will read about what happens in the Korean market.
1: Yes,
0: and they fell very sharply. So FII is also in a state of flux right now. Given that there are steady fund flows in India, and we are seeing stability. Again, I would say that this is a period of consolidation for Indian markets. See, we are quite attractive now in terms of valuations compared to many other Asian markets, many other US segments of the market segments. So my guess is that we will take a couple of months to stabilize and then probably take a cue from there.
2: Puneet, agar bhartiya arthvyavastha ko lekar ke aur bhartiya share bazaar ko lekar ke hum baat kare, to filhal bhartiya bazaar ke liye ek bada jokhim आपको लगता है कि कोई हो सकता है, खासतौर पे ऐसे समय में जब निवेशक बहुत ही सतर्क रणनीति अपना रहे हैं, तमाम जो चुनौतियां हम देख रहे हैं जिनकी अभी हमने कुछ देर पहले बात की, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं?
0: निखिल, देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो हालात चल रहे हैं और वहां पर ऑयल प्राइसेस अभी कंट्रोल में आ गए थे, फिर अचानक दोबारा से बढ़ गए, और हम देख रहे हैं कि भारत में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी रिलेटेड है. अभी हमारे पास कुछ हेडरूम है, कुछ कंफर्ट है, और हम इसको और अपने को मजबूत बना सकते हैं. मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा चाइना के ऊपर. अभी हाल में चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं, दो या तीन दिन पहले आए हैं नंबर्स, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने, जबकि वहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है, डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना, पर उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जबकि उनका लक्ष्य 5% था. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और यदि भारत में हम 4.5-6% के साथ की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
1: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड.
2: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था, या कुछ बदलाव आया है?
0: बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा लगा रहे हैं, उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं. आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है. अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इनफ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है, और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे.
1: पर जब हम भरोसे की बात करें, जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting, is because of geopolitical situations? When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India is progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
0: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. I mean, inflation could have shot up like any

0: anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that. Yes. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
1: Yeah.
2: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
0: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोस की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोस अब कम है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं,
2: लेकिन उसमें गिरावट आ रही है। उसमें
0: गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक संकेत होता है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे, अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है, लार्ज कैप जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
1: सो लाइक यू सेड, इफ द रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इज एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आर रिटेल इन्वेस्टर्स, यू नो दैट, लाइक यू सेइंग इन द बिगनिंग एवरीबडी वुड लुक फॉर एट लार्ज कैप्स बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, बट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दैट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी,
0: दैट शोज मैच्योरिटी, that shows confidence that people have in large number of
1: in the Indian story as well. Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
2: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था, जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था। इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ रही महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही, जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है। पुनीत, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा, 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमरीका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पर ध्यान हमें रखना जरूरी है, तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें?
0: देखिए, कोरिया का जो शेयर बाजार रहा है पिछले 2 वर्षों में, वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है। पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई, और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी। तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत, मैं कहूंगा, तेजी रही, और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप, मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं, उसकी एक दो कंपनी है, बड़ी कंपनी, और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था, और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ, और इसीलिए वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है। आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा, थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था, उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया। तो इतना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है, लेकिन नैरो मार्केट है। उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार है वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं, पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है, क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है। एफआईआई पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, हमने इनकी बात करी, ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी, वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा। तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है, और मुझे

0: की कमजोरी रही।
1: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है, जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है खासतौर पे पूंजी जुटाने के लिए,
0: और वो तो बहुत नेगेटिव है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, जैसे कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो वो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन लाना चाहते हैं। वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर ग्रोथ कम करना चाहती है, तो हमारे लिए बेहतर है और डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा।
2: Puneet, like you said, you know, indexes like the South Korean KOSPI and other, where if we talk about South Korean KOSPI, the weightage of certain companies which are associated with chip manufacturing, you know, that very big percentage or the weightage is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
0: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, KOSPI, for instance, has weightage of 55% from just two companies.
2: Yes.
0: Only two companies contribute 55% to the index weightage.
2: Yeah.
0: So what kind of money would one invest in that economy?
2: Yeah.
0: Because you are concentrated investment only in two companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there, and there are substantially large companies. So I think in long term, foreign investors or all kinds of investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in other markets, which are narrow markets. They may make money in the short term, no?
2: Yes.
0: So they try to make hay in the last couple of years, but I think in the longer term they will definitely come to India. And what we saw was last 2 years they pulled money out of India, they put it in those momentum markets, but eventually for the long term growth they will have practically no choice other than India to invest in.
2: And the next news from Nikhil.
1: जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और तीन मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
0: निखिल, देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में, यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम,
2: जनधन
0: अकाउंट, आधार और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंटरपीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि छोटे छोटे गांव में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे, वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं, जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में, जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे, बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी. तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन. और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो.
1: इसमें स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बहुत बड़ी भूमिका. देखिए ये बात

0: तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप एप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो इसको जो जो एक मैं कहूंगा एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने, पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स की कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
1: जी,
0: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं, पर ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पे पड़ा है।
2: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ बिग a role and how crucial is it when you know we talk about we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047, how crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
0: So Anubha, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty. See, the financial inclusion wasn't really meant to, I mean, it of course it has benefited everybody,
2: yeah,
0: people in the upper strata of society with higher incomes, with more prosperity, but financial inclusion is a crucial differentiator for people at the bottom of the pyramid.
2: Yes.
0: It is they who have been able to utilize their money, save their money, invest their money and benefit from financial inclusion. The
2: right.
0: whole focus of financial inclusion has been to target people who have been excluded
2: yes.
0: from the formal financial system, and I think that is where the greatest achievement for these efforts has been, and the constant improvement in financial inclusion index showing that more and more people are getting better services, they are utilizing it more. If you look at the composition of index,
2: yes.
0: it's very interesting. It says quality, utilization, accessibility. So these are the three main features of financial inclusion.
2: Right.
0: I think it's made a huge difference to India's growth.
2: Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed how the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people.
3: सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। बदली हुई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर किया गया है, वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है। बदली हुई दरें आज से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2: पुनीत, हियर आई वांट टू टॉक बिकॉज लाइक निखिल जस्ट रेड दैट दिस इज एक्चुअली अ फोर्टनाइटली रिव्यू ऑफ फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्सेस, सो व्हाट इज फॉर द इफ वी हैव टू यू नो फॉर लिसनर्स वी हैव टू टेल आवर लिसनर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दिस फोर्टनाइटली रिव्यू एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी।
0: सो अनुभव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज बिकॉज इट टेल्स यू नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री बट एक्चुअली टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग विजावी पेट्रोल एंड डीजल एंड ATF डिमांड वर्ल्ड वाइड। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज for petrol, refined petroleum products. See, we import crude oil, but we are also one of the world's largest exporters of refined products
2: yes.
0: now. And government calibrates these taxes depending on the demand for these products. So, if I look at this news, it tells me that government is expecting more exports from India, more pressure for exports from India for ATF and diesel. And therefore, we have raised custom duties. We want to retain some products within the country
2: yes.
0: because there must be demand internationally. So, mostly these figures of these taxes are revised based on international demand and also underlines the fact that India has now become a major exporter of refined products.
2: And would you also say that, you know, as and when, if supposing whatever, whether these export duties increased or decreased, it's also to do with whatever is happening on the international front, because if the prices go up, then obviously we also import and so that's also to make sure that the domestic supplies remain intact and domestic users get priority over exports.
0: So to some extent, yes, we are trying to protect and you know, build our own reserves. But the truth is that India, while it imports a lot of crude oil, we are very comfortable vis-a-vis the refining capacities. In fact, we are net exporters of refined products. So that is not that much of a concern for us.

0: But it of course puts the taxes are in context of what is the demand internationally.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices were marginally up today as escalating Iran and U.S. tensions raised worries about a prolonged West Asia conflict. Brent crude was trading 0.2% up at $85.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.5% up at $80.02 per barrel when reports last came in. And let's take have a look at the gold and silver prices as well. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,41,870 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.9% down at 2,19,030 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% नीचे आकर 2,18,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे विषयों को इस कार्यक्रम में लिया। आपके अनुसार आज के समय में निवेशकों को किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए वो मतलब एक अच्छा निवेश कर सकें?
0: देखिए निखिल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेशक हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट हो करके, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, उसमें लुभा करके उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूंगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
2: यानी कि हर एक बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और उस रिसर्च करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
2: बिल्कुल, उन्हें जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस close in negative zone, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं।

0: की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen power trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को

हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कहते हैं कि रात जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे रात अपनी चादर को फैलाती है और तब कहीं दिल से हल्की सी आह खामोशी में सुनाई देती है। दिन भर की हंसी के पीछे छुपे वो अनकहे सवाल धीरे धीरे आंखों में उतर आते हैं और नींद से पहले एक कहानी बन जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब यादें भी दस्तक देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ चुपचाप रुला जाती हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो एहसास जो शब्दों में ढल नहीं पाए।

रात उन्हें अपने आंचल में लेकर चुपचाप सहला जाती है। जब सब सो जाते हैं तब हम भी थोड़े सच हो जाते हैं। न कोई दिखावा न कोई शोर, बस दिल और उसकी आवाज। कभी खुद से सवाल करते हैं और कभी खुद को ही जवाब भी देते हैं, और इसी खामोशी में थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। रात सिखाती है हमें कि तन्हाई दुश्मन नहीं होती। कभी कभी यही तन्हाई हमारी सबसे सच्ची सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगला गीत फिल्म कामचोर से।

जब शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती है और खिड़कियों की रोशनी एक एक करके बुझती है, तब कहीं भीतर एक छोटी सी दुनिया जागती है। वो दुनिया जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस एहसास धीरे धीरे करके दिल की सतह पर उतरते चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब वक्त भी जैसे ठहर जाता है। घड़ी की टिक टिक किसी अधूरी बात का जवाब लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है जो अब पास नहीं है, पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा साथ है। अभी रात में साथ चलती है कुछ सपने जो दिन में खो गए थे। रात उन्हें फिर से याद दिलाती है, फिर से थाम लेती है और कहती है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस सन्नाटे में हम अपने डर को भी सुन लेते हैं और हौसले भी, जो दिन की भीड़ में कहीं दब गए थे। जब सब सो जाते हैं तो दिल धीरे से कहता है, तुम अब अधूरे नहीं हो। और शायद यही वजह है कि हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रुदाली, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक

0: का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देशभर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरी नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिख दिया जाता है वो शायद उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाए, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही याद बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है खामोशी, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात जब सब सो जाते हैं तो रात शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे हर चीज को अपनी जगह पे रख देती है। बिखरे हुए दिन को समेटती है चुपचाप, थके हुए लम्हों को तकिए के नीचे सुला देती है। खिड़की से आती हवा कोई किस्सा नहीं सुनाती, बस पर्दों को हल्का सा हिलाकर याद दिला देती है सब ठीक है। जब सब सो जाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता, न जवाबों की जल्दी, न किसी को समझाने की कोशिश, बस एक ठहराव होता है, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर लिया हो। इस सन्नाटे में ना कोई अधूरी बात चुभती है, ना कोई पुरानी याद खींचती है, बस एक हल्की सी राहत होती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, आज के लिए इतना काफी। जब हम सो जाते हैं तब रात सिखाती है कि हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ लम्हों को बस यूं ही बीत जाने देना भी सुकून देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंकपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष

0: सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापु रामोरा मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in the programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagarh border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. In the afternoon, he will chair a meeting on border-related issues in West Bengal.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज है लता मंगेशकर की।

अथु में जयति। एक हल्की सी जगह, भीतर भीतर कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना कोई सवाल, ना शब्दों की भीड़, ना किसी को समझाने की कोशिश, बस एक सादा सा सुकून जो बिना वजह ठहरा रहता है। दिन भर की भागती सोच जब थक कर लौटती है तो उसी जगह धीरे से बैठ जाती है। ना कोई शिकायत होती है वहां, ना कोई अधूरी चाह, जैसे सब कुछ वैसा ही ठीक हो जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम खुद से दूर नहीं थे, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था, और जब वो साफ होता है तो पता चलता है सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई शोर नहीं करता, ना ही हमें पुकारता, बस एक हल्की सी जगह बनाकर हमारे लौट आने का धैर्य से इंतजार करता। अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

मैंने मन के सबसे भीतरी सलवट में एक जगह बचा कर रखी है, जहां कोई दस्तक नहीं पहुंचती, ना किसी रिश्ते का अधिकार। वहां कुछ अधूरी पुकारें हैं जो होठों तक आकर लौट गई थी। कुछ पन्ने हैं जिन पर नाम तो लिखे गए पर भेजे कभी नहीं गए। वहां एक कोना ऐसा भी है जहां मैं बैठी रहती हूं, अपने कई रूपों के साथ, कभी प्रश्न बनकर कभी उत्तर से दूर भटकती हुई। कुछ दृश्य हैं जो आंखों से उतर तो गए पर भीतर की मिट्टी में अब भी जड़ें फैलाए हुए हैं। मैंने उन्हें छिपाया नहीं, बस संसार की भीड़ से बचाया है। कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, बहती तो भीतर है पर उनका मार्ग किसी मानचित्र में दर्ज नहीं मिलता। और अगला गीत अब लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

किसी सांझ की भीगी देहरी पर मैंने कुछ अभिलाषाएं रख छोड़ी थी। न मांगी थी किसी भाग्य विधाता से, न हथेलियों की रेखाओं में जोड़ी थी। वे बस मेरी पलकों की तह में धीरे धीरे अंकुरित होती रही, जैसे निर्जन वन में कोई बेल बिना दर्शक के बढ़ती रही। फिर जीवन ने अपने निर्णय लिखे, मैंने भी बिना वाद विवाद पढ़ लिए। कुछ मोड़ों पर मुस्कानों के दीप जले, कुछ मोड़ों पर अपने ही स्वर गढ़ लिए गए। पर एक कोना ऐसा भी बचा जहां कोई ऋतु नहीं पहुंची, वहां आज भी कुछ आकांक्षाएं निष्कर्ष तक लौटती हैं। वे हार नहीं थी, बस नियति की मोहर उन्हें न मिल सकी। वे भूल नहीं थी, बस उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रही। कितनी ही कथाएं लिखी जाती हैं विजयों के स्वर्णिम पृष्ठों पर, किंतु जो मन के अंतराल में ठहरे वे कहां उतरती हैं इतिहासों पर। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मीना होंगी आपके साथ। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 2 रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष

करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार, एहसास और खूबसूरत धुनों से सजी इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा गीतों का ऐसा नजराना जो आपकी शाम को यादगार बना देगा। तो मुस्कुराइए, दिल को सुकून दीजिए और हमारे साथ इस संगीत भरे सफर का आनंद लीजिए।

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की खामोशी में अपना घर बना लेता है। जब दिल सचमुच किसी को अपना मान लेता है ना, तो हर दुआ में वही नाम शामिल हो जाता है और हर ख्वाब उसी की तस्वीर से सजने लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत इसी एहसास के अनुसार।

दोस्तों, अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है, कोई खूबसूरत एहसास है ना, तो आज उसे महसूस कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार दुनिया से नहीं डरता और वो बस अपने दिल की सुनता है।

जानते हैं दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हम कहते हैं नहीं, और दिल मुस्कुराकर कहता है यही तो प्यार है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो मोहब्बत के इसी मासूम इकरार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है।

जब किसी अपने का साथ मिल जाता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत दे दी हो। फिर दिल यही कह उठता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि जिसे चाहा था वही मिल गया। इन्हीं जज्बातों को सुरों में सजता हुआ गीत लीजिए पेश है।

0: बाकी के नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.5।

दोस्तों, मोहब्बत में सबसे प्यारी चीज होती है अपनेपन की एक आवाज। कभी किसी का नाम लेकर पुकारना, कभी किसी की आहट पहचान लेना, तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना। प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है। कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें, सारी दूरियां पल भर में मिट जाए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं। उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, लेकिन होंठ हमेशा खामोश रहते हैं। दिल में मोहब्बत का समंदर होता है, मगर इजहार की बारी आए तो मुस्कुराकर बात बदल देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि प्यार छिप जाएगा, लेकिन सच्चे जज्बात कब छिपे हैं भला। मोहब्बत की खुशबू तो बिना कुछ कहे भी महसूस हो जाती है। नजरों की भाषा, मुस्कुराहट का इशारा और खामोशी की धड़कनें सब राज खोल ही देती है।

जब नजरें झुकती है ना तो अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शायद वहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी। इन्हीं दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है अगला नगमा।

दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार शायद यही है कि किसी से कहा जाए, तुम्हारे होने से मेरी दुनिया मुकम्मल है और तुम्हारे सिवा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। तो आइए इसी बेइंतहा मोहब्बत के एहसास को सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:10। अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जानते हैं, रंग तो एक दिन ढल जाएगा, चेहरे की चमक भी कम हो जाएगी, मगर इंसान का किरदार, उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और उसका बर्ताव, वही हमेशा याद रहता है। हुस्न पर इतराने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर दिल जीतने वाले बहुत कम होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

जिंदगी की राहें चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ होना तो हर सफर आसान लगता है। मंजिल से ज्यादा उसके साथ चलने का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और रंगीनियां भी उस सुकून के आगे फीकी है जो हम सफर के साथ होने से मिलता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक सी नहीं रहती। कभी खुशियों के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तिहानों की आंधियां चलती है। ऐसे में जो हाथ नहीं छोड़ते हैं ना, जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ना, वही असली हम सफर कहलाता है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हम मोहब्बत के इसी खूबसूरत वादे को अपने सुरों में पिरोता है।

दोस्तों कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं ना तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक की धड़कन सुर बन जाती है तो दूसरे का एहसास गीत बन जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें कोई आगे नहीं चलता और कोई पीछे नहीं रहता। दोनों मिलकर जिंदगी की एक प्यारी सी धुन रचते हैं। जब सुर और गीत साथ हों तभी संगीत मुकम्मल होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार और भरोसा मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत किसी को रोकती नहीं है, बस इतना कहती है कि चाहे जितनी दूर चले जाओ, दिल से दूर नहीं जा पाओगे। कुछ रिश्तों की डोर ऐसी होती है जो नजरों से ओझल होकर भी टूटती नहीं है। कदम भले ही दूसरी राह पकड़ ले, लेकिन यादें हमेशा उसी मोड़ पर इंतजार करती रहती है। और जब किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो उसे यकीन होता है कि लौटकर आने का रास्ता दिल ही दिखाएगा। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। यह हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहाने कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत शोहरत और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग कहें इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की